मीडियम वेव 254.45 मीटर अर्थात 1179 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के वैसाख मास की 26वीं तिथि यानी कि 16 मई सन 2026। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। श्रोताओं नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेनसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेंस से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब 80 करोड़ डॉलर का व्यापार

0: पार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटन्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi arrived in the Netherlands late last night on the second leg of his 5-nation tour aimed at deepening India's strategic and economic ties with European nations. Mr. Modi was received by the Dutch Foreign Minister Toon Berendsen upon his arrival at Amsterdam Airport. Mr. Modi reached the Netherlands after a brief stopover in the United Arab Emirates, where he held talks with UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. At the hotel in The Hague, the Prime Minister was accorded a grand welcome with cultural and musical performances by the Indian diaspora. Dutch troops also greeted him ceremonially. Our correspondent covering the Prime Minister's Netherlands visit has filed this report. During the visit, the Prime Minister will hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten and will call on their Majesties, the King and the Queen. The visit carries significant

0: मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रीवा केंद्र। सुबह के 6:35 हुए हैं। किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है कृषि संकेत। आज का विषय है पशु पोषण।
1: किसान भैया बहिनी, पशुपालन व्यवसाय में पशु आहार के प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे देश में पशुअन के पोषण कृषि उपज पर निर्भर करत हवे। चारा अवदाना के कमी के कारण पशुअन का निम्न कोटि के चारा जैसन भूसा और कुट्टी आदि पर निर्वाह करेगा परत है। भारत में ऐसा निम्न कोटि के चारा दाना के उपलब्धता पशुअन के संख्या के अनुपात में काफ़ी कम हवे। पशुपालकन के लगे आवश्यकता के अनुसार चारा अवदाना उपलब्ध न हो के कारण पशुअन का भरपेट आहार नहीं मिल पावे, जैसे न केवल उनके उत्पादन बरूक प्रजनन क्षमता में कमी आवत ही। प्रायः यह देखा जाता है कि पशुपालक गाभिन और दुधारू पशुअन का तो पौष्टिक आहार देते हैं जो उन्हें बच्चा दें के बाद उन्हें अधिक दूध दे सकें, पर दुधारू पशुअन के बछवा बछिया का पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं पिवावा जाए, काहे कि अधिक दूध बेचे के लालच में पशुपालक ऐसन करते हैं। यह मेर जब पशु दूध दे बंद कर देते हैं तो उनके आहार कैती ध्यान नहीं दीन जाए। हमारे देश में पशु पोषक भंडार की कमी तो है, पर एकर अन्य कारण यह हुआ है कि हमारे पशुपालकन का पशु पोषण के बारे में पूर्व पार जनबही नहीं आए। पशुअन के प्रजनन क्षमता उनके आहार पर अत्यधिक निर्भर करती है। कुपोषण युक्त आहार से शारीरिक क्रियान के निता आवश्यक पोषक तत्व तो पूर्व मात्रा में प्राप्त नहीं हो, यानी ऐसा भोजन में ऊर्जा प्रोटीन वसा खनिज लवण की कमी रहती है। कौनो एक तत्व या एक से ज़्यादा तत्वों की कमी से शारीरिक क्रिया सुचारू ढंग से संपन्न नहीं हो सके, जैसे पशुअन के उत्पादन और प्रजनन में बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसन के हम जानी थे कि दुग्ध उत्पादन में कुल खर्चा के 60-70% पशु आहार पर होत है। पशुअन का वैज्ञानिक ढंग से अगर खबाबा जाए तो यह खर्चा का काफ़ी हद तक कम कर सके थे, जैसे किसानन के आमदनी में वृद्धि हुई। या एक माध्यम से पशुअन का विभिन्न अवस्थान में कब और कौने प्रकार से खबावा जाए, जैसे कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन लीन जाए। बछबा और बछियन का सही समय में सही मात्रा में आहार न दे से उनके शरीर के विकास में कमी, प्रथम बियान के उम्र में बढ़ोतरी, दूसरे बियान के बीच के समय में बढ़ोतरी और शरीर के कमजोर हो इत्यादि लक्षण सामान्यतः देखे जाते में उनकर कुल उत्पादकता में कमी आवत ही। छबा और बछियन का असंतुलित अपर्याप्त आहार दें के दुष्प्रभाव से पहचाने के आवश्यकता ही है। पशुपालन और डेयरी व्यवसाय से अधिक लाभ लें के निता बछबा बछियन का पोषण पर विशेष ध्यान दे के चाहिए, ताकि उन यौवन अवस्था में लगभग 70-75% परिपक्व शरीर के वजन प्राप्त कर लें। गाय भैंस के बच्चन के जन्म दे के बाद पहल दूध यानी खीस जौन होत है, जे में प्रोटीन वसा खनिज और रोग निरोधक तत्व प्रचुर मात्रा में होते में पशु के बियाय के 72 घंटा के भीतर तक यह दूध खीस कहा जात है। बछबा बछिया के जन्म के 1 घंटा के अंदर खीस का पिमामे का चाहिए। यह समय में नवजात बछबा बछिया के आहार नली खीस में उपलब्ध रोग निरोधक तत्वन का अवशोषण करके उनके रक्त धारा तक पहुँचे में सक्षम होती। खीस पिमामे से रोग प्रतिरोधक

क्षमता बढ़त ही सामान्य दूध के अपेक्षा खीस में लगभग 4-5 गुना प्रोटीन और 10 गुना विटामिन पावा जात है। ए मा अन्य महत्वपूर्ण पदार्थ जैसन कापर, लोहा, मैग्नीशियम और मैग्नीज पावा जात है।

कृषि संकेत में भी आप पशु पोषण के विषय में जानकारी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। लीजिए सुनिए रामचरितमानस से पाठ।

राक्षसों तथा पापाचारियों से आतंकित पृथ्वी तथा ब्रह्मा सहित देवताओं ने परम पिता की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। तब गंभीर आकाशवाणी हुई, हे मुनिसिद्ध और देवताओं के स्वामी, भयभीत न हो। तुम्हारे कल्याण के लिए मनुष्य रूप धारण करके मैं सूर्यवंश में अवतरित होऊंगा। अदिति तथा कश्यप ने कठोर तपस्या करके मेरा वरदान प्राप्त किया और वे ही कौशल्या तथा दशरथ के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर श्रेष्ठ चार भाइयों के रूप में मैं अपनी परम शक्ति समेत पैदा होऊंगा। आकाश में गूंजती ब्रह्मवाणी अपने कानों सुनकर सभी देवता आश्वस्त हुए।

अभी रामचरितमानस से पाठ का प्रसारण हो रहा था। ये आकाशवाणी रीवा है। पेश है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 7 बजकर 23 मिनट पर सुनेगा कार्यक्रम आज सवेरे। समाचार प्रभात सुनेगा सुबह 8 बजे। दिन में 11 बजे से होंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। आकाशवाणी के रीवा केंद्र से फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 7 बजकर 20 मिनट पर और सुबह 9 बजे। सुगम संगीत सुनेगा दिन में 10 बजकर 5 मिनट पर। किसान भाई अपना कार्यक्रम चौपाल सुनेंगे शाम को 7 बजकर 21 मिनट पर। इसके अंतर्गत सुनेगा लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम रंभस। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें मां भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें मां भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदे मातरम 150 के साथ जरूर भेजिए। #

वंदे मातरम 150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

0: किंग्स इति दलं सप्तस्तोभैः पराजितम्। सीएसके इत्यनेन प्रदत्तस्य 88.1% धावनांकस्य लक्ष्यम् आतिथीयेन एलएसजी इति दलेन 17 क्षेपणचक्रेषु सम्प्राप्तम्, यत्र केवलं 38 कन्दुकेषु मिचेल मार्शल इत्यस्य 90 धावनांकानां भूमिका निर्णायिका अभवत्। मार्शः उत्तमक्रीडकत्वेन पुरस्कृतः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल रात नीदरलैंड्स पहुंचे। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन ने हेमस्टरडम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। हेग में प्रवासी भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। डच सैनिकों ने भी उनका औपचारिक रूप से अभिनंदन किया। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। ये यूरोप का करीब 60 सबसे बड़ी औद्योगिक और तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मंच है। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया के साथ मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोलियम के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15

मिनट तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक में मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे का दूसरा पड़ाव। नीदरलैंड्स, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात से हुए कई समझौते। सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस पर गैंगटोक पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। भूशाला मामले में हाईकोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया स्वागत, बोले ब्रिटेन से वापस लाएंगे मां बागदेवी की प्रतिमा। और प्रदेश में गर्मी का कहर जारी, मौसम विभाग ने आज 37 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के बाद नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। यहां एम्स्टर्डम में विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने उनका स्वागत किया। यहां के बाद प्रधानमंत्री स्वीडन, नॉर्वे, इटली भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में 5 देशों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। कल श्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के साथ साथ $5 अरब के निवेश पर सहमति बनी है।
1: और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार संभालने के बाद आज पहली बार सिक्किम जाएंगे। गैंगटोक में राज्य स्थापना दिवस समारोह में वे मुख्य अतिथि होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1975 में राजशाही खत्म होकर यह भारत का 22वां राज्य बना था। धार की भूशाला पर हाईकोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने भूशाला को मां बागदेवी की आराधना स्थली माना है। डॉ. यादव ने कहा कि अब श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना का पूरा अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन में रखी मां बागदेवी की प्रतिमा को वापस भारत लाने के प्रयास किए जाएंगे।
2: इस बात का प्रसन्नता भी व्यक्त करता हूँ कि न्यायालय ने माना कि हाँ, ये भूशाला का स्थान था जहाँ राजा भोज ने माँ बागदेवी के स्थान के माध्यम से इस स्थान की महत्ता को विकसित किया था। मैं अपनी ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, मध्यप्रदेश वासियों को बधाई भी देता हूँ। स्थान को और अच्छे ढंग से गौरवान्वित करेंगे। जो बागदेवी की प्रतिमा विदेश में है, हम यथायोग्य प्रकार से कानून सम्मत तरीके से उसको लाने का भी प्रबंधन करेंगे।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल मंत्रालय में समीक्षा बैठक लेकर कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किए जाएं। उन्होंने स्वामित्व योजना के तहत जमीन की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर करने और ग्रामीणों को मुफ्त पट्टे देने का अभियान चलाने के

0: निर्देश दिये। डॉ यादव ने गांव में स्कूल, खेल मैदान और बेहतर सुविधाएं देकर शहरों की ओर पलायन रोकने पर जोर दिया। देवास के टोंककला में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट की जांच के लिए राज्य सरकार ने न्यायिक आयोग बनाया है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुभाष काकड़े इस एकल सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता करेंगे। आयोग घटना से जुड़े 5 बिंदुओं की गहन जांच करेगा और 1 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवा उद्यमियों अपर्णा और दिनेश से मुलाकात की। ये युवा उद्यमी रूडा नोट्स के संस्थापक हैं। उन्होंने कहा कि भारत में बने कागज के उत्पाद गुणवत्ता, कार्यक्षमता और टिकाऊपन में बेहतरीन हैं। मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अच्छी स्टेशनरी हमेशा से उनके दिल के करीब रही है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल शाम भोपाल के रविन्द्र भवन में नर्मदा चिंतन संगोष्ठी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण में प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। गुड़ी पड़वा से शुरू हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून तक चलेगा। अभियान के तहत कुएं, बावड़ियां, तालाबों को फिर से उपयोगी बनाने का काम जारी है। मुख्यमंत्री ने सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को समर्थ नर्मदा अलंकरण से सम्मानित किया। 3 मई को पेपर लीक होने के कारण रद्द हुई नीट यूजी परीक्षा अब 21 जून को दोबारा होगी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर पर उच्च स्तरीय बैठक में परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गई। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजों से असंतुष्ट छात्रों के लिए 2 चरणों में समीक्षा की सुविधा दी है। पहले चरण में 19 से 22 मई के बीच ₹700 प्रति विषय शुल्क देकर उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मांगी जा सकती है। दूसरे चरण में 26 से 29 मई के बीच गलती के सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। सभी आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे। हर चरण में सिर्फ 1 आवेदन मान्य होगा। प्रदेश में अब तक 11,54,000 से ज्यादा किसानों से 80,90,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। किसानों को इसके लिए 9,522 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान भी किया जा चुका है। राज्य सरकार ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत 1,32,000 हेक्टेयर में उद्यानिकी फसलें बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। सब्जी में 54,000, मसालों में 56,000 और फलों में 18,000 हेक्टेयर क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। किसानों को ड्रिप सिंचाई, पॉली हाउस, आधुनिक तकनीक की मदद भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा घर स्वीकृत हो चुके हैं। वहीं 98% से अधिक घरों का निर्माण शुरू हो गया है। 9 लाख से ज्यादा घर बनकर तैयार हो चुके हैं और लोगों को सौंपे जा चुके हैं। मंडला जिले के रामनगर में 2 दिवसीय आदि उत्सव का आज दूसरा और आखिरी दिन है। कल केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री ज्वेल ओराम ने इस उत्सव का शुभारंभ किया था। उन्होंने कहा कि आयोजन जनजातीय संस्कृति परंपराओं को जीवित रखने का बड़ा मंच है। राज्य सरकार ने सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर 1,01,00,000 रुपए का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान स्थापित किया है। इसके साथ 21 लाख का राष्ट्रीय सम्मान और 5-5 लाख के 3 शिखर सम्मान भी दिए जाएंगे। न्याय, सुशासन, कला, शौर्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले देश विदेश के लोग और संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं। नामांकन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। awards.mvspujain.com पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग एकेडमी की बॉक्सर माही लामा ने वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में जगह पक्की कर ली है। एनआईएस पटियाला में हुए ट्रायल में उन्होंने 2 मुकाबले जीते। आईपीएल में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से मात दी। आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में केकेआर और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। कल खंडवा में सबसे ज्यादा 45.1 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। 12 शहरों में पारा 43 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग ने आज 37 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, देवास के लिए तेज लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर, उज्जैन और मंडला में रात को भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। अब कुछ समाचार।

संक्षिप्त में, इंदौर में जलगंगा जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत गांव-गांव जल संरक्षण के काम हो रहे हैं। झाबुआ कलेक्टर ने पद्मश्री लोक कलाकार रमेश परमार और शांति परमार की कार्यशाला का भ्रमण किया। धार में 3 दिवसीय 11वें पद्मश्री फड़के संगीत समारोह का शुभारंभ कल शाम विक्रम ज्ञान मंदिर लालबाग परिसर में हुआ। पन्ना में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शहर के वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। खंडवा में शनिचरिया महोत्सव पर हजारों श्रद्धालु माँ नर्मदा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आगर मालवा के सुसनेर में युवा संगम रोजगार मेले में 33 युवाओं का प्रारंभिक चयन हुआ। अशोकनगर में संपर्क अभियान के तहत बिजली संबंधी सेवाओं के लिए घर घर शिविर लगाए जा रहे हैं। भोपाल में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने 72 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

मीडियम वेव फ्रिक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रीवा केंद्र। श्रोताओं, लीजिए सुनिए संगीत प्रभा। शुरुआत करते हैं 1942 ए लव स्टोरी इस फिल्म के गीत के साथ, जिसमें आवाज़ दी है कविता कृष्णमूर्ति ने।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आइए अब सुने फिल्म ताल का ये नगमा।

0: नमस्कार, सुप्रभात, अभिनंदन। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आज सवेरे, जहां दिन की शुरुआत होती है थोड़ी सी मिठास और ढेर सारी एनर्जी के साथ। तो दोस्तों, आज की सुबह एक नया पन्ना है, कल क्या हुआ उसे भूल जाइए और आज क्या करना है उस पर मुस्कुराइए। कहते हैं ना कि अगर दिन की पहली चाय कड़क और मुस्कुराहट सच्ची हो तो दिन अपने आप बेहतरीन हो जाता है। तो चलिए, इसी के साथ, एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ शुरू करते हैं नए दिन का। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। हेलो शगुन।
1: हेलो जया, एंड नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। वेल, वेलकम टू आवर प्रोग्राम आज सवेरे। मी एंड जया, वी आर ऑल स्माइल्स एंड वेरी थ्रिल टू स्टार्ट आवर प्रोग्राम एज जया सेड। एंड वेल, यस, वी आर बिगिनिंग विद द नेशनल इंटरनेशनल न्यूज। वी हैव ऑल्सो इंक्लूडेड सम वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज इन द फर्स्ट सेगमेंट ओनली, यू लाइक दम, वी आर 100% श्योर ऑफ दैट लिसनर्स। वी ऑल्सो हैव मेट्रो सिटी अपडेट्स, वील फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग इन द मेट्रो सिटीज एज वेल। एंड देन टुडे इट्स 16th of May 2026, we'll also find out and explore the history which is related to today. First, let us begin with the headlines.
0: तो संयुक्त अरब अमीरात और यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए हैं।
1: कंटिन्यूइंग विद दैट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव्ड इन द नेदरलैंड्स लेट लास्ट नाइट ऑन द सेकंड लेग ऑफ हिज 5-नेशन टूर aimed at deepening India's strategic and economic ties with European nations. Mr. Modi was received by the Dutch Foreign Minister Thum Berendsen upon his arrival at Amsterdam Airport. Mr. Modi reached the Netherlands after a brief stopover in the United Arab Emirates, where he held talks with UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. At the hotel in The Hague, the Prime Minister was accorded a grand welcome with cultural and musical performances by the Indian diaspora. Dutch troops also greeted him ceremonially. Our correspondent covering the Prime Minister's Netherlands visit has filed this report.
2: During the visit, the Prime Minister will hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten and will call on their majesties the King and the Queen. This visit carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. On Saturday, Prime Minister Modi will address the Indian communities and meet CEOs of leading Dutch companies. Several important agreements are expected to be signed, particularly in the field of semiconductor chips and AI, where Netherlands stands as a global leader. From the trade perspective, Netherlands is India's key economic partner, one of the largest export destination as well as investor in India. Both the countries have robust partnership and cooperations in the fields of water management, renewable energy, green hydrogen economy, agriculture technologies and health. This is Shushru Sharma for Akashvani from The Hague, Netherlands.
1: After concluding his visit to the Netherlands, Prime Minister Modi will travel to Gothenburg in Sweden tomorrow on the third leg of his 5-nation tour. Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. The two prime ministers will also address the European Roundtable for Industry, a leading pan-European business leaders forum, along with the president of the European Commission, Ursula von der Leyen. On the fourth leg of his visit, Prime Minister Modi will reach Norway on Monday for the third India-Nordic summit and bilateral engagements. He will call on King Harald V and Queen Sonia and hold bilateral talks with Prime Minister Jonas Gahr Støre. On Tuesday, Mr. Modi will take part in the third Indian-Nordic summit. On Tuesday, Mr. Modi will be joined by the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, Prime Minister of Denmark, Mette Frederiksen, Prime Minister of Finland, Petteri Orpo, Prime Minister of Iceland, Kristrún Frodastóttir, and Prime Minister of Sweden, Ulf Kristersson, for the summit. In the final leg of his visit, the Prime Minister will reach Italy on Tuesday. During the visit, Mr. Modi will call on the President of Italy, Sergio Mattarella, and hold talks with Prime Minister Giorgia Meloni.
0: सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में

0: परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और इसके साथ ही शगुन नीट UG की परीक्षा की तिथि की घोषणा हो गई है।
1: Right.
0: 21 जून को नीट UG की परीक्षा होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है।
2: वेल, इन जम्मू एंड कश्मीर द 3-डे हिस्टोरिकल एनुअल मुंगरी मेला विच इज ऑल्सो नोन एज शिव पार्वती मेला इट कमेंस्ड यस्टरडे एट सर डबर एरिया ऑफ ब्लॉक मुंगरी इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। सो द पिलग्रिम्स एंड नेटिव्स विजिटेड द शिव पार्वती केव श्राइन टू सीक ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा एंड मां पार्वती। सो इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट पीपल फ्रॉम भोमाग, पंचारी, Udhampur, Chennai and Ramnagar areas of the Udhampur district as well as from Riyasi, Ramban and Jammu districts converge Sir Dabar every year to celebrate this Mela and pay obeisance to Bhagwan Shiv in the naturally formed Shiv Parvati Cave Shrine, a wonderful sight. So there, local artists, including students from different educational institutions presenting scintillating cultural performances, they presented scintillating cultural performances on the first day. I was telling you about Shiv Parvati Mela.
0: और इसी तरह की कुछ अच्छी खबर भी है मेरे पास मध्य प्रदेश से, जहां श्योपुर जिले में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कल 2 और मादा चीतों को जंगल में छोड़ा गया है। और इसके साथ ही कूनो में स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले चीतों की कुल संख्या 16 हो गई है। और ये दोनों मादा चीते फरवरी 2026 में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों में शामिल हैं। इन्हें सफलतापूर्वक क्वारंटाइन अवधि पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया है। इससे पहले 13 मई को भी एक मादा चीते को जंगल में छोड़ा गया था। प्रोजेक्ट टाइगर के फील्ड निदेशक ने बताया है कि सभी चीते स्वस्थ हैं और जंगल के वातावरण में अच्छी तरह से ढल रहे हैं। उनकी निगरानी के लिए उन्नत रेडियो टेलीमेट्री प्रणाली और विशेष क्षेत्र दल तैनात किए गए हैं। और पता है शगुन, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 में अपने जन्मदिन पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में किया था।
2: यस, एग्जैक्टली। सो यू वर टेलिंग अबाउट बोथ द फीमेल चीतर्स, दे आर अमंग द 9 ब्रॉट फ्रॉम बोत्सवाना in February 2026. So they have been gradually released after successfully completing their quarantine period. So earlier one female cheetah was also released on May 13th, and you were telling about Project Cheetah launched by Prime Minister Narendra Modi in 2022. Now let's stretch our boundaries a little. Israel and Lebanon have agreed to a 45-day extension of their ceasefire after another round of talks in Washington. U.S. State Department spokesperson Tommy Pigott said the April 16 cessation of hostilities will be extended by 45 days to enable further progress after America hosted 2 days of highly productive talks between Israel and Lebanon, which concluded yesterday. So in a social media post, Mr. Pigott said that the U.S. State Department will reconvene the political track of negotiations on 2nd and 3rd of June. Now in sports. Over to sports now. In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will face Malaysian shuttlers Noor Izzuddin and Gosei Fei in semi-finals of Thailand Open in Bangkok today. Earlier, the Indian duo defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami 21-12, 21-13 in the quarter-final clash yesterday. Meanwhile, other ace Indian shuttlers including PV Sindhu and Lakshya Sen bowed out of the tournament. Sindhu lost 21-19, 18-21, 15-21 to world number 3 Akane Yamaguchi of Japan in the women's singles quarter-final.
0: और शकुन, ये जो प्रमुख खबरों की का सेक्शन खत्म करने से पहले हम बता दें कि आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरा करने जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के एक हिस्से के रूप में आकाशवाणी अगरतला केंद्र द्वारा कल शाम सुकांता अकादमी सभागार में एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रव्यापी समारोह के

0: मनवे में आयोजित इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन पश्चिम त्रिपुरा के जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर विशाल कुमार ने सीजीएसटी अगरतला कार्यालय के अतिरिक्त आयुक्त और श्री सैमुअल एस वाईफाई की उपस्थिति में किया गया। और जो संगीत संध्या में ना पंकज कुमार दास ने जो गिटार पर मनमोहक प्रस्तुति दी और जिनका तबला पर जो देवज्योति दास गुप्ता ने भी बहुत अच्छा संगम दिया है जो सुनने में बेहद रोमांचक था।
1: वेल यस, सो गाइडेड बाय द मोटो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट आकाशवाणीज एस्टैब्लिशमेंट ऑन जून 8, 1936 This celebration highlighted Akashvani's enduring legacy as the nation's most credible broadcaster.
0: और अब रुक करते हैं कुछ प्रमुख महानगरों का और जानते हैं कि वहां का क्या हाल है। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली के समाचारों का।
1: श्योरली,
0: तो सबसे पहले बताएं कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी कि डीएमआरसी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत को कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की है। सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने डीएमआरसी को 2 अत्याधुनिक हाइड्रोजन ईंधन वाली बसें उपलब्ध कराई हैं जिसमें बैठने की क्षमता 35 यात्रियों की होगी। इसमें बहुत सारे जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम है, सीसीटीवी कैमरे हैं और इस बस का जो किराया है ना शगुन, ये महज 10 से 15 रुपए के बीच में रखा गया है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यूपीआई और नकद भुगतान के विकल्पों के साथ इसमें यात्री टिकट खरीद सकते हैं और यह शटल बस सेवा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक उपलब्ध होगी। इसके अलावा दोपहर 3:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक भी बस सेवा संचालित की जाएगी। और इस बीच ये भी बताएं कि दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR का जो अभियान है वो 30 जून से शुरू होगा। निर्वाचन आयोग ने एक विज्ञप्ति में बताया है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र मतदाता को सूची में शामिल किया जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में न रह जाए।
1: Now we'll head to Chennai. Tamil Nadu government issued a gazette notification declaring Trichy East constituency as vacant in the wake of Chief Minister Joseph Vijay resigning the seat. He contested in 2 seats and retained the Perambur seat. According to the gazette notification issued by Appavu, the earlier speaker on May 10, he accepted Vijay's resignation as per Article 193B of the Indian Constitution and then declared the seat vacant from the date of resignation. The notification would be sent to the ECI and elections will be held for Trichy East within 6 months. Another update from Chennai. So at least 17 foreign nationals were detained at Chennai and Madurai airports for allegedly casting their votes in the recently held assembly elections in Tamil Nadu. So immigration officials detained them after noticing the indelible ink marks on their fingers during passport checks. While 15 of them were apprehended at Chennai airport over the past few days when they were about to return to their respective countries. 2 were detained at Madurai airport. The passengers were natives of Tamil Nadu and Puducherry.
0: और अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। तो महाराष्ट्र में आज से जनगणना 2027 के अंतर्गत घर सूचीकरण और आवास जनगणना अभियान शुरू होगा। राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित 33 प्रश्नों को पुनः अधिसूचित किया है जिन पर 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान के दौरान सर्वेक्षण किया जाएगा। जनगणना कर्मी प्रत्येक घर जाकर अपने आधिकारिक मोबाइल उपकरणों में स्थापित मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आवास की स्थिति, घरेलू सुविधाओं और संपत्तियों से संबंधित जानकारी एकत्र करेंगे। जिन नागरिकों ने अपने घरों के लिए स्वगणना पूरी कर ली है उनसे अनुरोध किया गया है कि सत्यापन और प्रक्रिया के सुचारू रूप से संपन्न होने के लिए वे जनगणना कर्मियों के साथ अपना स्वगणना पहचान यानी कि आईडी नंबर साझा करेंगे। राज्य सरकार ने नागरिकों को यह भी आश्वासन दिया है कि जनगणना के दौरान एकत्र की गई सभी व्यक्तिगत और घरेलू जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। एक और अपडेट है मुंबई से जो कि अच्छी भी है और बुरी भी है शगुन, क्योंकि दूरसंचार विभाग यानी कि DOT ने यह जानकारी दी है कि वर्ष 2025 में देश भर में लगभग 22,500 करोड़ रुपए के साइबर धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में धोखाधड़ी होना ये खराब चीज है और हाँ इतने मामले सामने आए, उनको पकड़े गए हैं कुछ चीजें, तो ये बात अच्छी है। तो कल मुंबई में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी DOT में के मुंबई LSA के अतिरिक्त महानिदेशक आशीष पाठक ने बताया है उसमें कि इनमें महाराष्ट्र से दर्ज 1100 करोड़ रुपए के मामले भी शामिल हैं और

0: 17 मई को मनाए जाने वाले विश्व दूरसंचार दिवस के अवसर पर श्री पाठक ने यह भी कहा है कि पिछले वर्ष 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन पर 30 लाख शिकायतें दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि जो डीओटी ने 34 लाख संदिग्ध मोबाइल नंबरों को डिस्कनेक्ट कर दिया है, 22 लाख फर्जी हैंडसेट को ब्लॉक किए हैं और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े 1697 लाख से अधिक व्हाट्सएप अकाउंट को निष्क्रिय किए गए हैं। इसके अलावा 59 लाख से अधिक संदिग्ध बैंक खातों को भी फ्रीज किया गया है, जिससे 1200 से अधिक संगठनों जिनमें बैंक और कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी शामिल हैं उसको जोड़कर 1000 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान को रोका गया है। ये अच्छी चीज हुई है इसमें। और इसके साथ ही नागरिकों से ये आग्रह भी किया गया है कि वे सतर्क रहें, संदिग्ध संदेशों, कॉल्स या फिर इसी तरह के संचार पर आंख बंद करके भरोसा ना करें।
1: यस एंड Well, we'll head now to Bengaluru, where the idea of an annual Bengaluru Drone Festival is gaining traction. So, Karnataka Minister for Electronics, IT and Biotechnology, Priyank Kharge, has expressed a strong commitment to encourage drone economy. The state, he informed, will adopt necessary infrastructure, policy and real-world adoption mechanisms to contribute significantly to India's drone economy. And this, actually, the Bengaluru Drone Festival, he says, can have drone racing, hackathons, exhibitions and display shows. He was actually speaking after a high-level meeting with the drone industry in Bengaluru yesterday. The minister also spoke about creating shared testing facilities, simplifying regulatory pathways and enabling a strong ecosystem for startups and industry to innovate and scale up their operations. The Karnataka Medical Education Additional Chief Secretary Mohammed Mohsin has announced that guidelines for a better and effective use of artificial intelligence will be released within his department.
0: और अब चलते हैं कोलकाता, जहां पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें विभिन्न मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों के बुनियादी ढांचे सुविधाओं का मूल्यांकन किया गया। और इस बैठक में स्वास्थ्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा निदेशक, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संगठनों के चिकित्सा अधीक्षकों और प्राचार्यों ने भी भाग लिया। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन और प्रगति पर भी चर्चा की गई।
1: हैदराबाद नाउ। वेल, द सिटी विटनेस्ड रोड शो इन हैदराबाद टू प्रमोट द फार्मा मैक्टेक एंड लैब नेक्स्ट Expo 2026. The Engineering Export Promotion Council of India held a roadshow. Actually, the expo will be held in September this year in New Delhi. It will showcase pharmaceutical machinery and laboratory equipment from across India. So the preparations, they were also held there, and the event will bring together manufacturers, exporters and global buyers. And well, India exports pharmaceutical machinery but imports more than it sells. The roadshow discussed new technologies like smart manufacturing and automation. So this was all about the metro cities.
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर जया और शगुन के साथ। कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं कि आज मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। राजधानी में आज मौसम हालांकि साफ रहेगा, लेकिन गर्मी का जो कहर है ना शगुन, वो जारी रहेगा। जो अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता
1: है। फ्रॉम हीट
0: और इसी तरह से मुंबई में भी आसमान साफ रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अगर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकता है, गरज के साथ चमक की भी संभावना है और बहुत ज्यादा तापमान नहीं है, हालांकि गर्मी वहां भी है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल।
1: Well, beginning with Chennai, it is expected to have partly cloudy sky and there is possibility of moderate rain or thunderstorm. Minimum temperature was 27 degrees Celsius. Maximum temperature will be around 33 degrees Celsius. Bengaluru is expected to have thunderstorm with rain. The minimum temperature was around 23 degrees Celsius. Maximum will be around 32 degrees. Hyderabad, again, it is expected to have partly cloudy sky with possibility of development of thunder lightning. The temperature, minimum temperature, will be around 29 degrees Celsius and it's quite hot. The maximum temperature will be around 41 degrees Celsius in Hyderabad. Jaya.
0: और अब श्रोताओं, वक्त आ गया है अतीत के पार उन प्रमुख घटनाओं को याद करने का जिन्होंने आज ही के दिन अपनी एक विशेष पहचान दर्ज

0: की है, आज 16 मई 2026 है और आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी मनाया जाता है। विज्ञान, संस्कृति और कला में प्रकाश की जो भूमिका है ना, उसका उसकी महत्ता को जानने के लिए हर साल 16 मई को यूनेस्को द्वारा यह दिवस मनाया जाता है।
1: Well, yes, hundreds of light, science, technology, educational and the other educational events, they take place across more than 40 countries. Well, yes, this is all about exploring global initiatives and access educational resources directly through the UNESCO International Day of Light portal as well. This date marks the anniversary of the first successful operation of the laser by physicist and engineer Theodore Maiman in the year 1960.
0: Yeah, और जो पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है ना, वो 2018 को मनाया गया था।
1: So let's tell our listeners about the theme as well. The focus will be on light for a sustainable future.
0: बिल्कुल।
1: Now let's start with the years. In the year 1929, the first ever Academy Awards were handed out in Hollywood, California, with about 270 people in attendance. In 1966, the political and social campaign known as the Cultural Revolution officially began in China with the publication of the May 16 notification issued by Mao Zedong.
0: और इसके कुछ दिन बाद आज ही के दिन 1975 में सिक्किम को औपचारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बनाया गया था और राजशाही इस दिन समाप्त हुई थी और ये 22वें राज्य के रूप में
1: Yes, 22nd state. In the same year, Jaya, Japanese mountaineer Junko Tabai made history as the first woman to reach the summit of Mount Everest. And this milestone stands as one of the most famous and inspiring events on this day.
0: और आज ही के दिन 1996 में भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी, जो पता नहीं कितने लोगों के प्रेरणा रहे हैं,
1: जी,
0: उन्होंने
1: so many.
0: पहली बार देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी।
1: In 1991, Queen Elizabeth II of the United Kingdom addressed a joint session of the United States Congress, becoming the first British monarch to do so.
0: और अब समय है उन प्रमुख व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं।
1: We are beginning with, well, first event, let me start with that, the birth centenary celebrations and a one-day national seminar on contributions of Acharya Sri Dinesh Chandra Joshi in the field of Sanskrit and Indian culture in New Delhi yesterday. The Ministry of Culture actually organized the birth centenary celebrations. The ministry said that several commemorative programs, academic seminars, cultural events, exhibitions and spiritual gatherings across the country have been held since the 11th of this month and it will last till 11th of April next year in honor of eminent Sanskrit scholar. It stated that despite the severe hardships of a remote mountainous region and limited resources, Acharya Joshi emerged as a radiant torchbearer of Indian culture through his scholarship, spiritual discipline and unwavering determination.
0: तो इसके साथ हम अब याद करते हैं कि आज किनकी जयंती है, पुण्यतिथि है या जन्मदिन है। तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं असम के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, अधिवक्ता और आदिवासी नेता भीमबर देवरी को। आज उनकी जयंती है और जिन्हें मुख्य रूप से असम को पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश बन गया है, उसमें विलय होने से बचाया था उन्होंने और वहां के स्वदेशी जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उन्हें विशेष रूप से याद किया जाता है। इसके साथ ही हम याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के शुरुआती सुनहरे दौर के एक अत्यंत सम्मानित और दिग्गज फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता रहे फणी मजुमदार को।
1: जी,
0: आज उनकी पुण्यतिथि है और उन्होंने केवल हिंदी ही नहीं बल्कि बंगाली, मैथिली, अंग्रेजी और चीनी, यानी कि सिंगापुर की जो बहुत सारी विभिन्न भाषाएं हैं, उनमें भी फिल्मों का निर्माण किया है और वैश्विक स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई। फणी मजुमदार को समाज का एक यथार्थ और संगीतमय ड्रामा को पर्दे पर बहुत खूबसूरती से उतारने के लिए याद किया जाता है। 1938 में न्यू थिएटर्स के बैनर तले बनी फिल्म स्ट्रीट सिंगर उनके करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। महान गायक अभिनेता केएल सहगल और खानन देवी अभिनीत इस फिल्म का गाना बाबुल मोरा नहर छूटो ही जाए आज भी अमर है।

तो जो फनी मजुमदार है ना, उनके फिल्मी केवल कहानियों के लिए नहीं बल्कि सदाबहार और सुरीली गीतों के लिए भी जाने जाते हैं। और आरती फिल्म का ये गीत भी बहुत ही आनंदमय है।

0: और आज जयंती है भारत की एक बेहद सम्मानित वृत्तचित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता, फिल्म इतिहासकार, शिक्षाविद और शोधकर्ता विजया मुले की। फिल्म जगत में उन्हें प्यार से अक्का यानी कि बड़ी बहन कहा जाता है और दूरदर्शन पर जो बचपन बिताने वाली पीढ़ी है ना, उन्हें हमेशा एक चिड़िया अनेक चिड़िया जैसे कालजयी और शिक्षाप्रद एनिमेटेड गीत की रचना के लिए याद रखती है।
1: दीदी दीदी वो देखो अनेक चिड़िया। अनेक चिड़ियों की कहानी सुनोगे? हाँ हाँ

0: एक अनेक और एकता विजय मुले द्वारा निर्देशित इस लिखित बेहद ही जो प्रसिद्ध शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म है और भारत सरकार ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र के लिए इसे तैयार करवाया था और इस फिल्म का ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण गीत है जो बच्चों को एकता विविधता में एकता की सीख देता है।
1: Rightly said. Well, she's Vijay Mule, recognized as one of the pioneers of the film society movement in India, remembered for her documentaries and educational communication as well.
0: और आज जयंती है पद्मश्री माणिक वर्मा की, वो भारत की एक अत्यंत प्रतिष्ठित और दिग्गज शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायिका थी।

0: So listeners, today it's also Vicky Kaushal's birthday, the actor. Well, he has worked across a range of genres.
1: क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हैं?
2: Yes sir.
1: क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है?
2: Yes sir.
1: Commandos, who are we?
2: Indian Army sir.
1: How is the Josh?
2: Hi sir.
1: How is the Josh?
2: Hi sir.
1: I said how is the Josh?
2: Hi sir.
3: श्रोताओं, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए जया और शगुन को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और AI के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर

0: 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
3: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महाआवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
4: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इजराइल और

0: लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में दो दिन की वार्ता के बाद ये समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोक सत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

किलो हर्ट्स, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा।

चिकित्सा विज्ञान में इतनी तरक्की कर पाए हैं। और मित्रों, कुछ दिवस ऐसे होते हैं जो प्रतिदिन मनाए जाने चाहिए। एक ऐसा ही दिवस हमने कल मनाया था, विश्व परिवार दिवस। परिवार जिसके बगैर समाज नहीं बन सकता, परिवार जिसके बगैर एक व्यक्ति की अहमियत को बताने का सबसे बड़ा जरिया है परिवार। परिवार जिसके माध्यम से समाज विकास के रास्ते खुलते हैं। हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 1994 को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस घोषित किया था और 1995 से ये सिलसिला हर साल मनाया जा रहा है। मित्रों, परिवार एक बहुत छोटी सी इकाई होता है, लेकिन ये वो इकाई होती है जिससे समाज बनता है और समाज से राष्ट्र। तो किसी भी राष्ट्र की बुनियाद अगर कही जाए तो वो होती परिवार में। परिवार के अभाव में मानव समाज के संचालन की कल्पना भी दुष्कर है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है या फिर है, उससे अलग होकर उसके अस्तित्व को सोचा ही नहीं जा सकता। हमारी संस्कृति और सभ्यता कितने ही परिवर्तनों को स्वीकार करके अपने को परिष्कृत कर ले, लेकिन परिवार संस्था के अस्तित्व पर कोई आँच नहीं आई है।

दोस्तों, परिवार कुछ लोगों के साथ रहने से ही नहीं बन जाता। इनमें रिश्तों की एक मजबूत डोर होनी चाहिए, सहयोग के अटूट बंधन होने चाहिए, एक दूसरे की सुरक्षा के वादे के और इरादे होने चाहिए। हमारा ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि इस रिश्ते की गरिमा को हम बनाए रखें। हमारी संस्कृति में, परंपरा में पारिवारिक एकता पर हमेशा से बल दिया जाता रहा है। परिवार एक संसाधन की तरह होता है, परिवार की कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं और इस संसाधन के कई तत्व होते हैं। एक पहुंचे हुए दार्शनिक दूलनदास ने कहा है, दूलन ये परिवार सब नदी नाव संजोग, उतरे परी जह तह चले सबे बटऊ लोग। जैनेन्द्र ने इतस्त में कहा है, परिवार मर्यादाओं से बनता है, परस्पर कर्तव्य होते हैं, अनुशासन होता है और उस नियत परंपरा में कुछ जनों की इकाई के हित के आपस में जुटकर चलने की वजह से ही हर सदस्य अपना आत्मदान करता है और जिसकी वजह से इज्जत खानदान की होती है और इसी खानदान में हम आगे अपने भविष्य को देखते हैं।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, परिवार वो कड़ी है जिसकी वजह से ही हर धर्म, जातियों और संप्रदायों में लोग आपस में जुड़ पाते हैं। आज के दौर में भले ही परिवार में ये देखा जाने लगा है कि छोटा परिवार लोग अपनाने लगे हों, लेकिन फिर भी संयुक्त परिवार वो आदर्श है जिसके छांव तले प्रत्येक व्यक्ति रहना चाहता है। संयुक्त परिवार में दो या तीन पीढ़ियां और कभी कभी इससे भी अधिक पीढ़ियों के व्यक्ति एक ही घर में अनुशासन के साथ एक ही रसोई घर में भोजन और जीवन की ज़रूरी चीज़ों का उपभोग करते हैं, एक ही परिवार के धार्मिक कृत्यों और संस्कारों में भाग लेते हैं। ये वो परिवार होते हैं जिसमें आदर्शों को लेकर, संभावनाओं को लेकर और व्यक्तित्व विकास की बातों को लेकर बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जिनकी वजह से इस परिवार को प्राथमिकता दी जाती रही है।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, जब आज का ये कठिन समय जिसमें मानसिक तनाव, अकेलापन और टूटते मानवीय रिश्तों की आहटें हमें सुनाई दे रही है, ऐसे भीषण दौर में परिवार न केवल रहने की जगह है बल्कि हमारे अस्तित्व, सुरक्षा और संस्कार और संवेदनाओं को समेटने वाली मजबूत छत बनकर भी हमारे सामने आता है। आज जब जीवन की आवश्यकताओं के लिए भागदौड़ इतनी बढ़ती जा रही है कि इस चक्कर में हम अपने आप को भी झोंक दे रहे हैं, ऐसे दौर में जहां आर्थिक संकट भी गहरा रहा हो, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी हम खोखले होते जा रहे हों, जिम्मेदारियों के बोझ तले दबते जा रहे हों, तो ये संकट केवल एक व्यक्ति पर नहीं टूटता। अकेलेपन से उपजा अवसाद पूरे परिवार को भी ख़त्म कर सकता है। ऐसे दौर में जब हम बहुत छोटे छोटे से फ्लैटों में, छोटे छोटे से पिंजरों में खुद को कैद करने लगे हों, हर तरीके से आर्थिक रूप से संपन्न होने के बावजूद भी भीतर से कंगाल हो रहे हों, तब परिवार की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। वृद्ध माता पिता उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं, बच्चों संस्कारों से दूर हो रहे हैं और पति पत्नी के बीच संबंधों की ऊष्मा ऊर्जा कम होती जा रही है। ऐसे दौर में परिवार के बीच मानसिक रोग, तनाव, असुरक्षा और आत्महत्याओं की घटनाओं की बाढ़ आ रही हो, ऐसे दौर में परिवार की नामक एक संस्था कि फिर से हमें उस संस्था की ओर लौटने की दरकार है।

दोस्तों, आज आवश्यकता इस बात की है कि परिवार को केवल उपभोग और सुविधा का केंद्र न बनाकर उसे आत्म जागरण का केंद्र भी बनाया जा सकता है। अहिंसा की प्रयोगशाला बनाई जा सकता है। अहिंसा का अर्थ केवल किसी को शारीरिक चोट पहुंचाना नहीं है, कठोर शब्दों से बचना है, अपमान न करना है, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना है, क्रोध पर संयम रखना है और सबसे बड़ी बात संवाद बनाए रखना है और क्षमा का अभ्यास करना भी अहिंसा ही है। यदि परिवार के भीतर भाषा की कटुता, अपमान और असहिष्णुता होगी तो समाज में शांति की कल्पना कैसे की जा सकती है? परिवार वो पहला स्थान होना चाहिए जहाँ पर बच्चा सहिष्णुता और करुणा का पाठ पढ़े, सीखे और जीवन में उतारे।

0: आकाशवाणी भोपाल से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को आप 9 बजे से 9:15 के बीच भी सुन सकते हैं। अभी 8:58 होने जा रहे हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के बाद नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। यहां एम्स्टर्डम में विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन ने उनका स्वागत किया। यहां के बाद पीएम स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार संभालने के बाद आज पहली बार सिक्किम जाएंगे। गैंगटोक में राज्य स्थापना दिवस समारोह में वे मुख्य अतिथि होंगे। धार की भूशाला पर हाईकोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने भूशाला को माँ वाग्देवी की आराधना स्थली माना है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में रखी मां वाग्देवी की प्रतिमा को वापस भारत लाने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल मंत्रालय में समीक्षा बैठक लेकर कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाए। प्रदेश में अब तक 11,54,000 से ज्यादा किसानों से 80,90,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजों से असंतुष्ट छात्रों के लिए 2 चरणों में समीक्षा की सुविधा दी है। सभी आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे और हर चरण में सिर्फ 1 आवेदन मान्य होगा। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। कल खंडवा में सबसे ज्यादा 45.1 डिग्री तापमान दर्ज हुआ और 12 शहरों में पारा 43 डिग्री के पार रहा। और आईपीएल में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से मात दी। आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में केकेआर और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। शुरुआत करते हैं फिल्म रॉकस्टार के इस गीत के साथ।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और आइए सुनते हैं फिल्म देवडी का नगमा, जिसे आवाज दिया श्रुति पाठक ने, संगीतकार हैं अमित त्रिवेदी।

फिल्म संगीत के सफर में बढ़ते हैं आगे और आइए सुनते हैं फिल्म जाने तू ये जाने ना की ये पेशकश, जिसे आवाज़ दी है राशिद अली और वसुंधरा दास ने। संगीतकार हैं AR रहमान, गीत लिखा है अब्बास टायर वाला ने।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए फिल्म माय नेम इज खान से, इसमें आवाज़ें अंदान स्वामी शंकर महादेवन और साथियों की। गीत लिखा जावेद अख्तर ने, संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

श्रोताओं, आप सुनिए विशाल भारद्वाज, रेखा भारद्वाज, शंकर महादेवन और साथियों के स्वर में फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला का ही गाना, जिसका संगीत दिया है विशाल भारद्वाज ने और गीत लिखा है गुलजार ने।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए फिल्म जोधा अकबर से, आवाज़ें हैं सोनू निगम और मधुश्री की। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीतकार हैं AR रहमान।

आइए अब कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म भाग मिल्खा भाग से। आवाजें हैं जावेद बशीर और श्रेया घोषाल की, संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

फिल्म संगीत के आखिर में सुनिए फिल्म फिलौली का नगमा, जिसमें आवाज दी है रोमी विवेक हरिहरन और शाश्वत सजीत ने भी।

इसी के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी रीवा है, जिले की चिट्ठी सुनिए आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कुछ ही देर में।

0: मशीनों की मदद से नए पेयजल स्रोत तैयार कर रहा है। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पूरी हो चुकी 5 नलजल योजनाओं को ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है। दूसरी ओर जिले में गेहूं खरीदी का काम भी पूरे जोर शोर से चल रहा है। प्रशासन किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाने के साथ साथ मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम भी कर रहा है। इस साल रबी सीजन में गेहूं बेचने के लिए जिले से 4738 किसानों ने पंजीयन कराया था। जिले के 5 प्रमुख उपार्जन केंद्रों पर अब तक 1346 किसानों से 60727 क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है। भुगतान की करीब 90% राशि यानी 14,42,00,000 रुपए सीधे किसानों के खातों में भी पहुंच चुके हैं। बड़वानी शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए नगर पालिका परिषद ने स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत खास अभियान शुरू किया है। नगर पालिका की IEC टीम घर घर पहुंचकर लोगों से स्वच्छता को लेकर फीडबैक ले रही है। इसी बीच जिले में लाडली उत्सव की खुशियां भी देखने को मिली। जिले के 1815 आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित कार्यक्रमों में लाडली बेटियों और उनके अभिभावकों का सम्मान किया गया। वहीं शिशु मृत्यु दर को लेकर जिला प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। कलेक्टर ज्योति सिंह ने मामलों की गहन समीक्षा करते हुए मृत शिशुओं के परिजनों से सीधे बातचीत की। उन्होंने इलाज के दौरान आई परेशानियों, स्वास्थ्य केंद्रों पर मिली सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। न्याय व्यवस्था को आसान और त्वरित बनाने की दिशा में भी जिले में बड़ा कदम देखने को मिला है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का निराकरण किया गया। लोक अदालत में लंबित 384 मामलों में से 294 प्रकरणों का समाधान हुआ और करीब 4,82,00,000 रुपए से अधिक की राशि के अवार्ड पारित किए गए, जिससे 588 लोगों को राहत मिली। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जिला मुख्यालय स्थित शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा संगम रोजगार मेला आयोजित किया गया। मेले में 326 युवाओं ने पंजीयन कराया। विभिन्न कंपनियों ने 68 युवाओं का चयन किया। जिले के कलेक्टर ने जलगंगा संवर्धन अभियान और जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने फॉर्म पॉन्ड, अमृत सरोवर, डगविल और वाटरशेड डेवलपमेंट के कामों की जानकारी ली। समीक्षा के दौरान लापरवाही सामने आने पर 3 सब इंजीनियर्स का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश भी दिए गए। जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले घर घर योग हर व्यक्ति निरोग अभियान भी शुरू हो गया है। आयुष विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में रोज सुबह ऑनलाइन और ऑफलाइन योग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले के 27 केंद्रों पर लोग योग के जरिए खुद को स्वस्थ रखने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा निवाली में दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क कृत्रिम हाथ पैर शिविर लगाया गया। शिविर में 28 दिव्यांगजनों का पंजीयन किया गया, जिनमें से 13 लोगों को मौके पर कृत्रिम हाथ और पैर उपलब्ध कराए गए। जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. गौतम टिटवाल का दौरा भी चर्चा में रहा। उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठकों के साथ विकास कार्यों का लोकार्पण किया। खास बात यह रही कि उन्होंने अधिकारियों के साथ कारों के लंबे काफिले की बजाय बस यात्रा की। ग्राम ओझर में आयोजित रात्रि चौपाल में उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। इन सब के बीच जिले की बेटी स्नेहा दावदी ने बड़वानी का नाम देशभर में रोशन कर दिया है। स्नेहा जिले की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है, जिनका चयन भारत के अंडर-18 टीम में हुआ है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर नई उपलब्धि हासिल की। अब वे जापान में होने वाली एशियन चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। जिले में जनगणना 2027 की तैयारियां भी रफ्तार पकड़ चुकी हैं। मकान सूचीकरण और गणना का काम तेजी से चल रहा है। कई प्रखंडकों और पर्यवेक्षकों ने समय सीमा में 100% लक्ष्य पूरा कर मिसाल पेश की है, जिसके लिए शासन द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। बड़वानी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: बड़वानी जिले की चिट्ठी का प्रसारण अभी आपने सुना। आलेख था शिवपाल सिंह सिसोदिया का और वाचन किया था दीपा सिंह ने। ये आकाशवाणी है, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
2: मीडियम वेव फ्रिक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रीवा केंद्र। सुबह के 10:05 हुए हैं। श्रोता लिए सुनिए सुगम संगीत। आगाज करते हैं इस भक्ति गीत के साथ, जिसे आवाज दी है पंडित जसराज ने।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: सुगम संगीत की अगली पेशकश सुनिए। उस्ताद मदी हसन की आवाज में, राग सहेरा में ये नगमा।

Vale. मेरे ख्याल खान साहब बरसों के बाद आज इनकी मेहरबानी मेरे साथ गजल बजा रहे हैं, वरना इनका काम क्या गजल बजाने का। दुर्पद धमार और बड़े ऊंचे गवियों के साथ बजाने वाले लोग हैं, लेकिन ये इनकी मेहरबानी। वाह वाह।

अभी आप सुन रहे थे ये सूफी गीत सबरी बंधुओं की आवाज में। आइए आप सुने ये अगला गीत मास्टर सलीम और श्रुति पाठक की आवाज में।

इसी के साथ सुगम संगीत अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी रीवा है, दिन के 11 बजने को है। अब सुनिए आकाशवाणी मध्यप्रदेश के कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से कुछ ही पलों में।

0: एच है 0902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। तो आइए मिलते हैं हमारे पहले श्रोता कॉलर से। हेलो जी, आज है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: जी जी बिल्कुल, बात आपकी गीत हमारे
0: जी। तो आज हमारा टॉपिक है कि हमारी जिंदगी की जो किताब होती है वो कई तरह के रंगों से भरी होती है। उसके हर पन्ने पे एक अलग ही रंग होता है, जिसमें प्यार का रंग होता है, मस्ती का रंग होता है, खुशी, दुख, दर्द, जुनून, दोस्ती का रंग भी उसमें शामिल होता है। तो हम ये चाहते हैं कि आज आप अपने जज्बात के इनमें से किसी भी रंग के एक एहसास के साथ जुड़ा अगर कोई आपका किस्सा है तो वो हमसे साझा कीजिए। पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन बोल रहे हैं?
1: गांधी पार्क मनपुरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, दीदी मनोज नामदेव।
0: मनोज जी नमस्कार और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: बस दीदी बढ़िया है, आपका कार्यक्रम रेगुलर सुनते रहते हैं। बिल्कुल दीदी, और कहें कि आकाशवाणी भोपाल से तो हमारे श्रोता अपार प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि बताया अब कैसे बता दूं मैं आपको।
0: वो हम आपके जज्बात समझते हैं, इसीलिए तो आज का विषय यही है कि अपने जज्बात के रंग का कोई उससे जुड़ा हुआ किस्सा या उससे जुड़ी हुई कोई बात हमसे शेयर कीजिए।
1: बिल्कुल दीदी, आपको मैं छोटा सा वाक्य बता दूं
0: जी।
1: कि दीदी जब मैं कहें कि छोटा था
0: जी,
1: तो इतना समझदार नहीं था, लेकिन मैं अपने जो पापा जी के साथ बैठा करता था। मेरे पापा जी क्या करते हैं, सिलाई वाली जो मशीन चलाते हैं दीदी
0: जी,
1: तो आपका जो रेडियो स्टेशन है वो सुनते रहते थे। तो पहले भोपाल भी आता था और हमारे पास में शिवपुरी है वो भी आता था, और हमारे पास में झांसी भी है वो भी सुनते थे। तो मैं सुनता रहा, बहुत दिन सुनता रहा, पर मेरे मन में एक कहें कि एक जिज्ञासा जगी कि इसमें ऐसा क्या होता है कि इसमें बढ़िया तो समय समय पर गीत आते हैं और समय समय पर इसमें कहीं की समाचार भी आते हैं, और आज दिख रहा है तो आज इसमें मैच भी आ रहा है
0: जी।
1: तो मैं सोचता रहा, अब मेरे मन में एक जुनून सा पैदा, उस दिन से ऐसा हुआ कि मैंने अब मन में ठान ली, या आपका क्या कहें कि कसम खा ली, कुछ भी मान लो, तो उस दिन से जुनून ऐसा पैदा हो गया, ऐसा जुनून सवार हो गया मेरे ऊपर कि जब तक मैं सुबह से शाम तक रेडियो अगर मैं अपने शॉप पर हूँ तो सुनता ही हूँ, अगर शॉप पर भी नहीं हूँ तो कहीं भी हूँ, रेडियो बिना मेरे को चैन नहीं पड़ता।
0: बहुत अच्छी बात है। और आपको एक बात बताएं कि ये जो जुनून वाला एहसास है ये एक ख्वाहिश होती है कि आपने ये बना लिया है कि हाँ मुझे रेडियो सुनना है, और ये ख्वाहिश, ये जुनून बारिश की उन बूंदों की तरह होती है मनोज जी, कि जिसे पानी की चाहत में हम तो भीग ही जाते हैं और वो जो प्यास है वो बरकरार रहती है, या ये कहें कि बढ़ जाती है। अब आपको भी वो प्यास रहती होगी कि अब हमें सुनना है कि अब हमारे रेडियो में कौन सा प्रोग्राम आने वाला है।
1: बिल्कुल दीदी और बताना चाहती कि अगर मैं रेडियो से नहीं जुड़ता तो काश अभी जहाँ हूँ वहाँ मैं नहीं पहुँच पाता। आधे से ज्यादा तो भूमिका रेडियो की है कि आज मैं यहाँ तक हूँ, कहीं की इतने श्रोता है मेरे, इतने श्रोता है कि अगर मैं चाहकर भी श्रोताओं से अगर मिलता या उनसे बात करता तो मेरा कहीं की जिंदगी निकल जाती, लेकिन श्रोताओं से कभी मुलाकात या बातचीत नहीं हो पाती। इसलिए मेरी जिंदगी में रेडियो का इतना महत्व है कि अगर मैं अपने मुंह से बताऊं तो शब्द कम पड़ जाएंगे।
0: वो हमें आपकी बातों से समझ में आ रहा है मनोज जी, आपको बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है रेडियो से, और हम चाहते हैं कि आपका ये प्रेम हमेशा बरकरार रहे। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा।
1: अगर आपका आकाशवाणी भोपाल की जितनी भी अनाउंसर है, अगर सभी का आशीर्वाद मेरे साथ रहा और मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओं को, तो आखिरी सांस तक रेडियो में छोड़ूंगा ही नहीं।
0: बिल्कुल, हम चाहेंगे भी नहीं कि आप छोड़ें हमारा साथ, लेकिन आशीर्वाद हमारा नहीं ईश्वर का रहता है, हमारा तो साथ है आपके साथ,
1: बिल्कुल
0: ना, जो हमेशा बना रहेगा। मनोज जी आपने कार्यक्रम में फोन किया, इतनी अच्छी बात हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद दीदी आपको भी, सभी टीम को
0: जी।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते, परिचय दीजिए अपना।
1: दीदी मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से।
0: बाबू यादव जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: धन्यवाद दीदी आपको।
0: जी आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जज्बातों के रंग की। हमारे जीवन के जो जज्बात हैं, जो एहसास हैं, कभी प्यार का, कभी खुशी का, कभी हमें

0: दुख होता है, कभी दर्द होता है। तो आज हम जानना चाहते हैं आपके एहसासों से जुड़ा कोई वाक्या, कोई किस्सा या कोई बात जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं।
1: ये देखिए, अगर जीवन में जज्बात नहीं है
0: जी,
1: तो जीवन का मतलब भी नहीं रहेगा। जज्बात तो होना चाहिए किसी बात का भी।
0: जी बिल्कुल सही
1: तो
0: बात है ये।
1: जज्बातों से जीवन में एक ऊर्जा मिलती है।
0: जी
1: तो हमें जज्बात को रखना चाहिए। और अगर मुझे जज्बात जो है अपने देशभक्ति के लिए, ईमानदारी के लिए है, मैं ईमानदारी में विश्वास करता हूँ। दीदी मैं दुकानदार हूँ
0: जी,
1: तो मुझे ये जज्बात है ईमानदारी का।
0: बहुत बढ़िया।
1: हाँ ये मैं अपने ग्राहकों से हमेशा ईमानदारी से बात करता हूँ, उनके प्रति मैं बहुत मतलब प्रेम रखता हूँ, चाहे वो कुछ भी रहे, मतलब मैं उनसे प्रेम करता हूँ क्योंकि वो मेरे भगवान हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये मेरा जज्बात है कि मैं उनसे प्रेम रखता हूँ और इसी बात से वो मुझसे खुश भी रहते हैं।
0: जी तो यहाँ ये खुशी का एहसास है आपका, आपकी ईमानदारी में छुपा हुआ।
1: जी कभी मैं बार्गेनिंग किसी बात में नहीं करता हूँ। सामान मांगा तो बोल देता हूँ भाई मांगा है
0: जी,
1: अब आपकी इच्छा लो ना लो, लेकिन मैं कभी बार्गेनिंग नहीं करता हूँ
0: जी
1: कि कुछ कम दे दूँ, कुछ कुछ किसी को बार्गेनिंग कर दूँ, ऐसी बात नहीं है। तो ईमानदारी मेरा जज्बात है
0: जी, और इस ईमानदारी के जज्बात से आपको खुशी मिलती है।
1: जी दीदी बहुत खुश रहता हूँ, मुझे कुछ छुपाना नहीं पड़ता है, मैं ईमानदार हूँ तो मुझे कुछ छुपाना नहीं पड़ता कि मैंने कल क्या किया था क्या नहीं किया था।
0: जी तो ये जो खुशी है ना बाबू यादव जी, ये बहुत बड़ा रंग है, बहुत महत्वपूर्ण रंग है हमारे जीवन का।
1: जी दीदी बिल्कुल, मैं उसी तो नाम से जाना जाता हूँ
0: जी,
1: अगला ईमानदार है।
0: और ये ऐसा जज्बात है, इसकी तलाश में सारी दुनिया लगी हुई है, और अगर इसको हम सही ढंग से ढूंढेंगे ना तो ये हमें हर कहीं मिल जाएगी। बस हमारे नजरिए का फर्क होता है और उस पर निर्भर
1: हाँ,
0: करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबका अपना अपना नजरिया है।
0: जी तो आपने अपना ये ईमानदारी वाला एहसास हमसे बांटा, इसके लिए बाबू यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जय बजरंग रेडियो सोता था, बस ट्रेन बंडा पे ले चले, मतलब कुछ चाय वाले बोल रहा दीदी, काफी पी लो।
0: आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉफी ऑफर की। जी आप अपना नाम एक बार फिर से बता दीजिए।
1: लक्ष्मण रेखवारा, हमने कही वेदी दी है, काफी पीते हैं, आप तो चाय पी लो।
0: हम चाय कॉफी सब पी लेंगे, आप इतने प्रेम से हमें पूछ रहे हैं तो हम भला ना कैसे कहेंगे लक्ष्मण जी।
1: हाँ
0: जी, तो आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, और इसका विषय हम आपको बता देते हैं। आज इस कार्यक्रम में बिखरे हैं जज्बात के रंग, हमारे जीवन से जुड़े हर एक जज्बात का एहसास, जो प्यार का हो सकता है, खुशी, दर्द, आपको कभी किसी ने तकलीफ दी हो तो उससे जुड़ा हम कोई किस्सा या कोई बात अगर आप हमसे बताना चाहते हैं उसे साझा कीजिए।
1: हाँ ये तो सही है, क्या हमारा छोटा भाई है जो मंजिला भाई, वो बिलर गया था थोड़ा, अब तो सही हो गया भगवान जी, बहुत परेशानी गई है। हाँ तो उसमें दिक्कत भाई है बहुत ज्यादा। हाँ,
0: तो आप उस समय तकलीफ में रहे होंगे।
1: हाँ बहुत ज्यादा तकलीफ में, एक दो साल
0: जी।
1: अब तो सही लेन पे आ गया है, एक दुकान बंद भी करना पड़ी थी उसके पीछे।
0: अच्छा। ना
1: तीन दुकाने थी, तो ये अब दो बच्ची है।
0: तो जब परिवार को देखना होता है उसमें कहीं कुछ परेशानी होती है तो अपने ही तो साथ देते हैं लक्ष्मण जी।
1: हाँ ये तो सही है,
0: है ना। और आप लोगों की लगन और मेहनत रही होगी उनको ठीक करने में कि वो आज ठीक हो गए हैं।
1: हाँ
0: है ना। तो ये
1: हाँ,
0: देखिए जीवन है तो सुख दुख

0: सब कुछ लगा हुआ रहता है हमारे साथ।
1: हाँ, सुख दुख आया जाएगा और जाएगा, चलता रहता है
0: जी। क्योंकि ये जो
1: बहुत हमने भी क्या है, बहुत तकलीफ में रहे, पटी पेंट पे रही, सब पे रही, दूसरे के काम भी किया, मगर अब भगवान ने बहुत अच्छा कर दिया है। अच्छा करोगे काम तो भगवान भी देगा साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जीवन की जो किताब है ना, उसमें अगर एक तरफ खुशी रहती है तो कहीं ना कहीं दर्द तकलीफ से भी हमारा सामना होता ही है, और उस ये पल हमें मिलते हैं कि हम कैसे उससे बाहर निकलते हैं, कैसे उनको संभाल पाते हैं हम जी। और आपने संभाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने हमसे इतनी बड़ी बात साझा की, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी।
1: नमस्कार,
0: नमस्ते, नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। क्या हम जान सकते हैं हमारी बात किससे हो रही है?
1: बिल्कुल जान सकते हैं। मैं फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बोल रहा हूँ।
0: फूलचंद पाल जी, आप हमारे नियमित श्रोता हैं।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ।
0: जी, मैं हूँ आकांक्षा
1: अच्छा, आकांक्षा जी, वाह बढ़िया
0: जी।
1: बढ़िया। आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
0: आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जज्बातों के एहसास की। हमारे जीवन में जो भी जज्बात हैं, प्यार का, दुख दर्द, खुशी, दोस्ती, जुनून, इन सब से जुड़ा अगर आपका कोई किस्सा है या कोई बात आप हमसे बताना चाहते हैं, वो हमसे साझा कीजिए।
1: तो बताइए, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा बोलने की। क्या बताया आपने?
0: देखिए, हमारी जो जीव हमारा जो जीवन है,
1: जी
0: उसमें कई तरह के रंग होते हैं। रंग मतलब
1: जी
0: एहसासों के रंग,
1: जी
0: जिसमें
1: जी
0: शामिल होते हैं प्यार का रंग, खुशी का रंग। कई बार
1: जी
0: हम पहली बार कुछ काम करते हैं या कोई हमें ऐसा मिल जाता है जिससे मिलके हमें बहुत खुशी होती है, तो वो हो गया खुशी का रंग। तो
1: जी जी
0: ऐसा कोई रंग आप साझा करना चाहते हैं हमारे साथ, तो वो बताइए।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने और बहुत बढ़िया आपने विषय रखा है। और जो विषय रखा है ये बिल्कुल हमारे आपसे ही लिमिटेड है जो है। जैसे हमारा आपका आकाशवाणी का नाता है, हम आपको नहीं जानते थे, आप हमको भी नहीं जानते थे, तो
0: जी
1: एक आकाशवाणी के माध्यम से जो है हम आपको जानते हैं और जितने श्रोता हैं उनको भी हम जानते हैं। बहुत अच्छा लगता है।
0: जी
1: और ये जान परिचय जो है केवल हमारी आकाशवाणी की ही देन है और उसी आकाशवाणी की वजह से ही हम सब एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। जी
0: ये तो हो गई आकाशवाणी की बात कि आकाशवाणी से आप जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। उससे आपको प्यार है, उससे बहुत सारे प्रोग्राम आप सुनते हैं उसके जरिए। लेकिन हम जानना चाहते हैं आपके जीवन के एहसास का रंग। कभी
1: अच्छा
0: कोई ऐसी खुशी आपको मिली है या कभी किसी ने ऐसा चोट पहुंचाई है कि आप अंदर से टूट गए हों, आपको अच्छा नहीं लगा हो, तकलीफ है? क्योंकि जीवन में तो ये सब लगा हुआ रहता है ना।
1: हाँ हाँ जी बात सही है बिल्कुल। बिल्कुल मुझे जो खुशी मिली है जीवन में वो शायद आप कहेंगे तो वो रेडियो से ही मिली है मुझे।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: और मुझे जितनी खुशी और जितना आनंद रेडियो सुन के आता है वो शायद कहीं नहीं आता है।
0: जी, ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि हमारे श्रोता ऐसे हैं।
1: जी जी जी जी बिल्कुल। मुझे बहुत आनंद आता है रेडियो के माध्यम से। जब मैं रेडियो सुनता हूँ, रेडियो के बारे में जब सोचता हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद मुझे रेडियो से ही मिलता है।
0: जी, फूलचंद पाल जी,
1: जी
0: देखिए, ये जो खुशी हमें मिलती है ना, तो ये ऐसी खुशी होती है मानो जिसे हम ढूंढ रहे थे वो यही है।
1: जी
0: और
1: जी
0: वैसे भी जिंदगी में आवाज देने वाले हमें बहुत मिल जाते हैं, मगर हम
1: जी
0: ठहरते वही हैं जहां अपनेपन और खुशी का एहसास होता है ना।
1: क्या बात है,
0: और
1: बहुत अच्छी बात।
0: मुझे आपसे बात करके यही लग रहा है कि आपकी वो खुशी, आपका वो एहसास आकाशवाणी ही है।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी
1: मैं बता दूं, जो मैं आकाशवाणी से लगभग लगभग जो है बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मेरा जो मेरी मन में जो खुशी है, मेरे मन में जो आनंद है वो आज भी निकम हुआ है, बहुत ज्यादा है।
0: और हम चाहेंगे ये कभी कम ना हो। आपका ये आनंद दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: तो आप हमसे जुड़े, हमसे इतनी अच्छी बात की, अपना एहसास हमसे साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है
1: जी। नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मनोज विश्वकर्मा, ग्राम पनारी, तहसील देवरी, जिला सागर, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
0: मनोज विश्वकर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: जी,
0: आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जज्बात के खूबसूरत एहसास की, वो जज्बात जिनसे हमारी जीवन की किताब का हर एक पन्ना भरा हुआ है।
1: जी,
0: उसमें आप जानते ही हैं, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी दुख होता है, तकलीफ होती है, कभी उसमें दोस्ती का रंग शामिल होता है। तो हम चाहते हैं कि आपका कोई एक ऐसा एहसास या कोई ऐसी बात हमसे साझा कीजिए जो आपके मन को छू गई हो या आपको कभी कुछ ठीक ना लगा हो, किसी भी तरह की बात।
1: मुझे तो ऐसा है जैसे कहीं, जब कहीं बाहर जाते हैं या कहीं से किसी से मिलते हैं अजनबी व्यक्ति से
0: जी,
1: तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति अपने से इतना खास या ऐसे जुड़ जाता है
0: जी,
1: जैसा अपन कभी सोचते भी नहीं थे कि इस प्रकार का व्यक्ति मिलेगा कभी।
0: जी
1: जी,
0: तो आपसे कभी ऐसे किसी व्यक्ति की मुलाकात हुई है?
1: हाँ, ऐसा हमारे एक मित्र है बिहार का, एक तो उससे हमारी ऐसी पहली दफा मुलाकात हुई थी और एकदम मुझे इतना वो हमारा करीबी बन गया
0: जी,
1: आपके परिवार जैसा हो गया।
0: मतलब वो अजनबी थे और फिर आपके करीबी हो गए
1: जी।
0: तो इस एहसास से आपको दोस्ती का रंग मिला
1: जी,
0: खुशी मिली
1: जी।
0: तो हालांकि वो आपसे बहुत दूर हैं, बिहार के आपके दोस्त हैं, तो दूरी बनी हुई है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार भी है।

0: जी बिल्कुल
1: जी, आपने हमसे इतना अच्छा एहसास साझा किया, उसके लिए मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी मेरी बात कैसे हुई मैडम?
1: मैं आकांक्षा बोल रही हूँ
0: जी। आकांक्षा
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: नमस्कार
1: जी। नमस्कार
0: नमस्कार, आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे।
1: जी जी जी जी जी,
0: हम जानना चाहेंगे हमारी बात किससे हो रही है।
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: राकेश जी शिमला से जी, बहुत जी, दूर से आपने हमें फोन लगाया है।
1: जी जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: कैसे हैं आप
1: जी? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ के, क्योंकि जो मुझे सबसे ज्यादा आकाशवाणी भोपाल का मुझे फोन करेगी सुने उतना पसंद है, तो जितना ये जो है बात आपकी गीत हमारे ये पसंद क्यों होता है, इस पे जो है अपने विचार रखने का अवसर मिल जाता है, तो इस पे मैं ज्यादा जुड़ता हूँ इस प्रोग्राम में।
0: बहुत बढ़िया। तो आज हमारा जो विषय है वो भी आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आज कार्यक्रम में बिखरे हैं जज्बातों के रंग। जज्बात जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, तो आप अपना कोई भी एक एहसास हमसे साझा कर सकते हैं, उस बारे में बता सकते हैं।
1: जी जज्बातों के रंग। जी जी जी बिल्कुल
0: जी।
1: तो मैं इस विषय

0: मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो जज्बातों के जो रंग होते हैं
1: जी,
0: इस क्योंकि मैं अपनी बात कहूँ तो अपने जीवन का मेरा एहसास ये है कि मैंने कभी अपने लाइफ में ये नहीं सोचा कि कभी जज्बातों पे मैंने अपने अपने पर हावी नहीं होने दिया। कैसे हावी नहीं होने दिया कि जैसे कि कई लोग मेरे से मित्र मिले हैं
1: जी,
0: तो उनने मेरे को ऐसी बात कही जो वो बात टूटने वाली थी।
1: हाँ, मतलब आपको तकलीफ पहुंचाई बातों से।
0: मतलब कैसी तकलीफ? उनका कहने का मतलब था कि भाई अभी तो शायद आपके जो है माता पिता है, अभी आपको सब आपके कर लेंगे कोई सेवा पाने, जब माता पिता नहीं होगी फिर क्या होगा, तो ऐसा क्या बोला गया था। तो मैं सुनता रहा
1: जी
0: इस चीज को
1: जी।
0: तो मैंने इस चीज को गौर से सुना तो मैंने क्या किया कि मैं इनको जो है बोलने दो, क्योंकि बोलने वाले तो बोलेंगे, हमें अपने लक्ष्य पे खर्च उतरना चाहिए क्योंकि बोलने वाले क्या नहीं बोलेंगे। तो मैंने इस चीज को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया
1: जी। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गलत बात को अगर हम अपने ऊपर हावी होने देंगे तो नुकसान हमारा ही होता है।
0: क्योंकि ऐसा क्यों बोलते लोग? देखो अब देखो, लोग अगर हेल्प नहीं कर सकते हैं किसी की, तो ऐसा मैं समझता हूँ कि ऐसा कभी बोलना नहीं चाहिए, कि ऐसा बोलना चाहिए कि चलो हम बाकी कुछ नहीं कर सकते लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे, हम कुछ आपके लिए कर सके। तो आपको इच्छा होगी जानने की ऐसा क्या हुआ आपका जो ऐसा लोग बोल रहे हैं।
1: अगर आप बताना चाहते हैं तो बताइए।
0: तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बचपन से ब्लाइंड हूँ, तो बचपन से ब्लाइंड हूँ तो लोग जब कोई भी आते थे, अरे पूछते थे कि भाई इनको कब से दिखाई देता, मैं कहा बचपन से, तो लोग बोलते हे भगवान ऐसा क्यों किया, और बाकी तो चलो ठीक है अभी तो आप लोग करेंगे तो फिर बाद में क्या होगा। तो मैंने सोचा कि बाद में जो होगा तो देखा जाएगा, लेकिन हम बात के लिए हम अपने आज को देना है, ना कि कल के बारे में सोचते हैं कि कल क्या होगा, कल जो भी होगा तो वो देखा जाएगा, लेकिन अभी हम जो आज में जी रहे हैं तो हम बड़ी खुशी से जी रहा हूँ मैं, बढ़िया से आज आकाशवाणी केंद्र से आपके माध्यम से लोगों से दोस्तों से बात हो रही है और अपने विचार बांटने का अवसर हमें मिल रहा है।
1: राकेश जी, आपकी ये बहुत अच्छी सोच है कि हमें आज में जीना है, आगे जो होगा देखी जाएगी।
0: जी जी बिल्कुल, मैं सभी को बोलता हूँ जितने मेरे ब्लाइंड साथी है, कई बार आकाशवाणी लखनऊ तो यह भोपाल में कहते रहते हैं कि मैं ब्लाइंड हूँ, मैं घर पे पड़ा रहता हूँ। मैं ये कह रहा था कि आप ऐसा मत बोलो कि मैं घर पे पड़ा रहता हूँ, जो भी है अब आज में जियो कि कल की, अब ये मत सोचो कि भगवान ऐसा क्यों किया, जो भी किया है, कहते हैं ना कि भगवान एक चीज अगर चिंता है तो दूसरी चीज देते हैं, लेकिन हम जो भी है आज में जियो और अपने ऊपर कभी कोई भी चीज हावी मत होने।
1: बिल्कुल, ये अपनी देखिए हर इंसान में कमियां होती हैं, अपनी कमी को भी हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है,
0: हावी नहीं होने देना बिल्कुल,
1: क्योंकि देखिए जीवन है, कभी धूप कभी छांव तो होती है, और हम सोच भी नहीं सकते कि जीवन में क्या क्या होना होता है,
0: क्या होता है। एक गाना है ना कि जैसे कि कविता कृष्णमूर्ति ने गाया कि थोड़ा सुख है थोड़ा दुख है, दुख में तो सुख है,
1: तो आगे सुख तो पीछे दुख है,
0: कि हमेशा नहीं कि हमें सुख मिले, अगर हम आपको सुख मिलेगा तो हम दुख का अनुभव कैसे कर पाएंगे।
1: बिल्कुल, और दुख नहीं आएगा तो हम सुख को कैसे पहचान पाएंगे, सुख का अनुभव कैसे करेंगे।
0: अगर मानो कि हमें सुख की अनुभव तब होगी ना, पहले हमें दुख सहना करना पड़ेगा फिर हम सुख की कदर कर पाएंगे कि सुख क्या है
1: जी।
0: लेकिन अगर हम सुख मिलेगा शुरू से लेकर अब तक तो फिर हमें सुख का अनुभव, तो फिर हम किसी की मजाक उड़ा सकते, किसी का दिल भी दुखा सकते। तो जब हमें दुख मिलेगा तो फिर हम दुख समझ पाएंगे, अगर हम सुख में जीते हैं तो हम दोस्तों को तकलीफ की, हम तो दोस्तों को फिर मजाक उड़ा पाएंगे
1: जी।
0: इसलिए कि थोड़ा थोड़ा दुख भी है, अगर थोड़ा दुख अगर होगा तो हम सुख का अनुभव कर सकते हैं और हम समझ भी सकेंगे, तभी तो हम दूसरों को समझ पाएंगे।
1: बिल्कुल, दूसरों को समझ पाएंगे और लोगों को समझा भी पाएंगे।
0: जी जी जी जी जी,
1: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा राकेश जी, आपने अपना एक अलग ही रंग हमसे साझा किया, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद। वो कहते हैं ना कि हम सोच भी नहीं सकते कि जीवन में ऐसे फंसाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाने

0: हेलो
1: नमस्ते, कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय दीजिए।
0: गोविंद जलोदिया खातेगांव।
1: गोविंद जी, कैसे हैं आप?
0: बस ठीक है, गर्मी बहुत पड़ रही
1: है। जी गर्मी तो है, मौसम गर्मी का है तो गर्मी तो होगी।
0: अरे पर बहुत ज्यादा ही मतलब है।
1: देखिए हम इंसान क्या होते हैं ना, ठंड होती है तो कहते भगवान कितनी ठंड है, अभी गर्मी है तो गर्मी में भी हम परेशान हैं। अच्छा, आज कार्यक्रम चल रहा है बात आपकी गीत हमारे।
0: हाँ।
1: इसमें हम बात कर रहे हैं जज्बातों के रंग की।
0: हाँ।
1: हम आपसे कोई एक ऐसा किस्सा या कोई ऐसी बात जानना चाहते हैं जिसने कभी आपको बहुत खुशी दी हुई हो या दिल को छू गई हो, या कभी किसी की बात से आपको बुरा लगा हो जिससे आप कह भी नहीं पाए। ऐसी अगर कोई बात है तो वो हमसे साझा कीजिए। गोविंद
0: तो
1: जी,
0: जो है मेरे को अभी तक याददाश्त ये है कि मेरी शादी हुई थी और मैंने वो पिक्चर है नी चुपके चुपके देखी थी, मतलब चोरी चोरी पिक्चर थी वो, तो
1: जी
0: पर चुपके किसी को मालूम नहीं पड़े, मतलब ऐसा।
1: अच्छा, चुपके चुपके आपने चोरी चोरी मूवी देखी थी।
0: हाँ।
1: अच्छा, आपकी शादी
0: तो
1: वाले
0: वो
1: दिन।
0: गाना भी था मन भावन के घर जाए।
1: तो ये था आपके जीवन का एक खुशी वाला किस्सा जो जुनून से भरा हुआ था। ठीक है, आपने इतना अच्छा।
0: जब अपन बात करते हैं नहीं तो उनको बड़ा वो रहता है कि यार वो बड़ा सिनेमा का बड़ा वो। मैं वैसे दीदी मैं सिनेमा में नौकरी करता था।
1: अच्छा, बहुत अच्छा।
0: खातेगांव में भी मैनेजर रहा मैं ताकि में।
1: जी ठीक है गोविंद जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: और इसी के साथ फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 11:58 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर वहां की जनता को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि भारत के विकास में सिक्किम का योगदान अमूल्य है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। राज्य सरकार ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत 1,32,000 हेक्टेयर में उद्यानिकी फसलें बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। किसानों को ड्रिप सिंचाई, पॉली हाउस और आधुनिक तकनीक की मदद दी जाएगी। 3 मई को पेपर लीक होने के कारण रद्द हुई नीट यूजी परीक्षा 21 जून को दोबारा होगी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। राज्य सरकार ने सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर 1,01,00,000 रुपए का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान स्थापित किया है। इसके साथ 21,00,000 का राष्ट्रीय सम्मान और 5,00,000 के 3 शिखर सम्मान भी दिए जाएंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 20 मई है। प्रदेश में अब तक 11,54,000 से ज्यादा किसानों से 80,90,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। किसानों को 9,522 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ के सदस्यों ने आज उज्जैन पहुंचकर ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर की भस्म आरती दर्शन में दर्शन लाभ लिए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। 12:12 अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और आपकी फरमाइश का पहला गीत ये रहा। फरमाइशी नाम और बाकी की जानकारियाँ गीत के बाद।

अमर अकबर एंथोनी फंक का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश का गाया हुआ। धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल थे आनंद बख्शी के। सुनने के लिए चिट्ठी लिख भेजी थी हमारे इन सभी साथियों ने, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा, औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप और राशि राजेश, इनकी चिट्ठी आई है। और अगला ख़त लिख भेजा है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया, अस्मा, सालिया, शोएब पोतरा, मुस्तवा खान, रऊब भाई और शाहिद भाई, साथ में हैं गांधी बाग आकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। इन सभी दोस्तों की फरमाइश हमने पूरी की और अब हम पूरी करने जा रहे हैं हमारे इन दोस्तों की फरमाइश। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता और कीसु तासु भगत, डोंगरगांव ज़िला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी, अनिष्का और तन्मय गजभिये ने कार्यक्रम के अगले गीत को सुनना चाहा है।

0: Delky feelings.
1: है दिल है मुश्किल, इस फिल्म का गीत आपने सुना। धुन बनाई थी प्रीतम ने, गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य, आवाज़ें थी अरिजीत सिंह, बादशाह जोनिता गांधी और नक्श अजीज की। और अब हम पूरी करने जा रहे हैं हमारे इन दोस्तों की फरमाइश। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति, सरोजनी और कुंती साहू। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता जी का गाया हुआ ये गीत।

इस गीत को रचा है गुलजार ने, संगीत तैयार किया है विशाल ने, फिल्म का नाम सत्या।

और अब हम आपको सुनवा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का वो नगमा जिसे गाया है भूपेंद्र सिंह ने, खयाम के संगीत निर्देशन में बोल हैं निदा फाजली के, और सुनने के लिए चिट्ठी लिख भेजी है हमारे इन सभी श्रोताओं ने देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री, प्रभाकर जोंघले और आरती जोंघले ने इस गीत को सुनना चाहा है गौतम नगर ज़िला नांदेड़ से। श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित आर्य ने ये चिट्ठी लिख भेजी है गोल बाज़ार बक्सर से। इन दोस्तों की फरमाइश ये रही।

0: वक्त के। और इसी नगमे के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2:30 पर भी आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150 मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242। सुनो ना।
3: हाँ।
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ,
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001।

0: 4242
1: ओ 8700104242 लो अभी फोन लगाता हूँ 8700104242 पर।

12:30 हुए हैं। ये समय है संग्रहालय से का। इसमें इन दिनों आप सुन रहे हैं पंडित विष्णु शर्मा की मूल अमर कृति पंचतंत्र पर आधारित कहानियाँ। आज इसकी तीसरी कड़ी का प्रसारण किया जा रहा है। आइए सुनते हैं।

0: नमस्कार श्रोतागण, आशा है आप सब सकुशल हैं एवं पंचतंत्र की महान कथाओं को सुनने के लिए व्यग्र होंगे, तो हम भी प्रस्तुत हैं। पिछली कथा में आपने सुना कि किस प्रकार अपने ही पैरों पर दमनक ने कुल्हाड़ी मारी। संजीवक और पिंगलक की मित्रता से सभी पशुगण दुखी थे। अब दमनक ने योजना बनाई कि किस तरह दोनों को अलग करें। करकट के संदेह करने पर दमनक ने कहा कि अगर योजना सुनियोजित हो तो वो अवश्य सफल होता है, जैसे कौलिक की कथा।
1: किसी नगर में कौलिक तथा रत्कार नाम के दो मित्र रहते थे।

0: शोभित था। अनेक देशों से आए दर्शनार्थी भी थे। तभी कौलिक ने सामने से एक विशाल हाथी पर चढ़कर एक अद्भुत सर्वलक्षण संपन्न सुंदरी राजकन्या को आते देखा। उसे देख उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया, होश खोकर धरती पर गिर पड़ा।
1: मित्र कौलिक उठो, क्या हो गया है तुम्हें? ये दशा कैसे हो गई तुम्हारी? तुम्हारे माथे पर भी पसीना आ गया है। उठो मित्र, उठो।
2: पानी, पानी, पानी।
1: ये लो पानी, लो लो। आराम से बैठो। कुछ स्वस्थ महसूस कर रहे हो?
2: हाँ मित्र, स्वस्थ तो हूँ, पर चैन नहीं है।
1: तुम इस तरह अकस्मात बेहोश कैसे हो गए?
2: मित्र, यदि तुम जानना ही चाहते हो तो मेरे दुख को सुनो। अगर तुम मुझे अपना मित्र समझते हो तो मेरी चिता सजाने का प्रबंध कर दो मित्र।
1: ये क्या कह रहे हो मित्र? अपने दुख का कारण मुझे बताओ। अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। मैं तुम्हारा कष्ट दूर करने का उपाय अवश्य करूंगा।
2: नहीं मित्र, नहीं, मुझे नहीं लगता मेरे दुख का कोई उपाय हो सकेगा। बस अब तुम विलंब न करके मेरे क्रियाकर्म की तैयारी करो।
1: मित्र कौलिक, चलो क्षण भर के लिए मैं मान भी लेता हूँ कि तुम्हारा कष्ट असाध्य है, फिर भी एक बार तो मुझे बताओ, जिससे अपने को अक्षम मानकर मैं तुम्हारे साथ अग्नि में प्रवेश हो सकूं, क्योंकि तुम्हारे बिना तो मैं एक पल भी नहीं जी सकूंगा।
2: सुनो मित्र, हाथी पर बैठकर जो कन्या मेले में दिखाई पड़ी थी, उसे देखने के बाद से ही कामदेव ने मेरी ये दशा कर दी थी। मैं उस राज कन्या के वियोग कष्ट को सहने में असमर्थ हूँ। मैं उसे अपनी बाहों में भींचना चाहता हूँ, और जानता हूँ यह असंभव है, अनुचित है, परंतु क्या करूँ? कामाग्नि से जल रहा हूँ, क्या करूँ मित्र, क्या करूँ?
1: मित्र, यदि इतनी सी बात है तो समझो भाग्य से हमारा कार्य बन गया। आज ही उसी राजकन्या से तुम्हारा मिलन हो सकता है।
2: क्या क्या कह रहे हो रथकार? जिस अंतापुर में वायु को छोड़कर किसी का जाना संभव नहीं, वहां राजकन्या से हमारा मिलन कैसे संभव? कहीं कहीं तुम मेरा परिहास तो नहीं कर रहे हो मित्र?
1: नहीं नहीं मित्र, अब तुम देखो मेरी बुद्धि का चमत्कार।
3: और फिर कौलिक को सांत्वना देकर रथकार ने उसी क्षण वरुण वृक्ष की लकड़ी से दो भुजाओं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, किरीट तथा कौस्तुभ से युक्त एक यंत्र संचालित गरुड़ का निर्माण किया। फिर उस गरुड़ पर विष्णु के रूप में कौलिक को बैठाकर उसे यंत्र संचालित करने की विधि को दिखाते हुए कहा,
1: इस यंत्र द्वारा रात्रि के समय तुम अंतःपुर में प्रवेश करके अपने वाक चातुर्य से अपने को नारायण के रूप में प्रस्तुत करो।
3: रथकार की बात को सुनकर कौलिक विष्णु रूप में राजकन्या के महल में जा पहुंचा।
4: कौन कौन है वहां झरोखे पर?
2: मैं विष्णु हूँ। राजपुत्री, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं क्षीर सागर में लक्ष्मी को छोड़कर चला आया हूँ। मेरे साथ परमानंद का अनुभव करो सुंदरी।
4: भगवान, मैं क्या इतनी भाग्यवान हूँ?

0: के दर्शन हुए, परंतु मैं मनुष्य योनि की हूँ, अपवित्र हूँ, और आप तीनों लोकों में सबसे पवित्र हैं, वंदनीय हैं, अतः आपसे मेरा मिलन कैसे हो सकता है प्रभु, कैसे?
1: सुंदरी, तुम ठीक कहती हो, किंतु तुम मेरी गोप कुल से उत्पन्न राधा हो, मेरी प्रथम स्त्री हो। अब तुमने यहां पृथ्वी पर जन्म लिया है, इसलिए तो मैं भी यहां चला आया।
0: यदि यही बात है तो भगवान चलिए, हम पिता महाराज के पास चलते हैं, वे सारी बातें जानकर प्रसन्नता से मुझे आपके हाथों में सौंप देंगे।
1: प्रियसी, तुम्हारा कथन उचित है, परंतु अगर तुम्हें मुझ पर संदेह है तो चलो प्रिय, हम गंधर्व विवाह कर लेते हैं, और यदि फिर भी तुम प्रस्तुत नहीं हुई तो मैं तुम्हारे पिता का सपरिवार सर्वनाश कर दूंगा।
0: प्रभु, नहीं नहीं प्रभु, आप क्रोधित ना हो प्रभु, आप जैसा आदेश करेंगे मैं वैसा ही करूंगी।
2: राजकन्या ने कौलिक से गंधर्व विवाह कर लिया, और उस दुष्ट कौलिक ने उसका कामदेव के शास्त्र के अनुसार उपभोग किया। प्रातः काल होने पर दूसरों की दृष्टि पड़ने से पहले ही अपने घर को लौट गया, अगले दिन पुनः राजमहल गया। इस प्रकार उस राजकन्या के साथ रहते हुए कौलिक का समय आनंद से बीतने लगा। शुरू शुरू में तो राजमहल में किसी को उसके आवागमन की भनक भी नहीं लगी, परंतु धीरे धीरे दास दासियों में सुगबुगाहट शुरू हो गई। कंचुकियों ने भी राजकन्या के खंडित अधर को देखकर आपस में खुसुर पुसुर करना प्रारंभ कर दिया।
3: अरे शैला, क्या मैं जो देख रही हूँ तुमने भी वो देखा?
4: अरे अरे, तनिक धीरे बोलो, कहीं ये बात महारानी के कानों में चली गई तो अनर्थ हो जाएगा। वैसे मैंने तो ये पहले ही भांप लिया था, अब तो राजकन्या के अंगों में पुरुष साहचर्योत्तर लक्षण है।
3: परंतु मुझे ये समझ नहीं आता, चारों ओर से सुरक्षित इस अंतापुर में ऐसी घटना कैसे संभव है?
4: देखो कंचुकी, मुझे लगता है कि हमें महारानी को इस घटना से अवगत कराना चाहिए, वो हम पर कितना विश्वास करती हैं, हमें उन्हें अंधकार में नहीं रखना चाहिए।
3: मुझे तुम्हारी बातें ठीक लगती हैं, चलो अब विलंब करना व्यर्थ है।
4: महारानी की जय हो।
5: शैला, कहो क्या संदेश लाई हो?
4: क्षमा चाहती हूँ महारानी, समझ में नहीं आता कि कैसे कहूँ, परंतु आपको सूचित करना भी आवश्यक है।
5: ऐसी क्या बात है, जो भी कहना है निर्भय होकर कहो, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है।
3: बात यह है कि हमने अपनी आँखों से तो कुछ नहीं देखा, परंतु कुछ संदेह है कि अंतापुर में राजकन्या के पास कोई पुरुष प्रवेश करता है, आपकी आज्ञा क्या है?
5: ये क्या कह रही हो, ऐसे लग रहा है मेरे कानों में किसी ने गर्म सीसा उंडेल दिया हो।
4: महारानी, हो सकता है कि ये सब सत्य ना हो,
5: मेरे पैरों के नीचे से धरती फिसल रही है।
3: महारानी,
5: मगर ये बात सत्य है तो अनर्थ हो जाएगा, मुझे महाराज को सूचना देनी होगी।
4: महारानी,
6: असंभव, ये कैसे हो सकता है रानी, हमारी पुत्री ऐसा नहीं कर सकती। ओह, अब क्या होगा, किस दुष्ट ने ऐसा कर्म किया, क्या उसे अपने प्राणों का तनिक भी भय नहीं? ओह, कन्या का पिता होना सचमुच दुखदाई है। चलिए महारानी, हम अभी राजकन्या से यथार्थ की जानकारी लेते हैं।
0: प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री।
5: पापिन, कुल कलंकनी,

0: आखिरकार तूने अपने शील का खंडन क्यों किया?
1: कौन है वो जो अपने प्राणों के मोह को छोड़कर इस दुर्ग समान अंतपुर में आने का दुस्साहस करता है?
0: बोल, सत्य बोल।
2: आप क्रोधित ना हो, अपनी पुत्री पर विश्वास रखें। आपके दिए संस्कार मैं भूली नहीं हूँ। माँ, यहाँ आने वाला पुरुष कोई साधारण मानव नहीं है, साक्षात विष्णु है। वही प्रतिदिन रात्रि के समय गरुड़ पर चढ़कर यहाँ आया करते हैं।
1: क्या कह रही हो पुत्री, ये कैसे संभव है? स्वयं नारायण यहाँ आते हैं? आपने हमें इस बात की जानकारी पहले क्यों नहीं दी? हम भी प्रभु के दर्शन कर लेते।
2: नहीं पिता महाराज, उन्होंने हमें निषेध किया था। मेरे अलावा वो किसी को दर्शन नहीं दे सकते, ना ही बात कर सकते हैं। मैं उनसे गंधर्व विवाह कर चुकी हूँ। पिताश्री, यदि आपको मेरी बातें असत्य लगती हैं, तो आज ही रात्रि में छिपकर आप स्वयं अपने नेत्रों से नारायण के दर्शन कर सकते हैं।
0: महाराज, हम धन्य हो गए। आपकी भाग्य वृद्धि हो, साक्षात नारायण से हमारी कन्या ने गंधर्व विवाह किया है। ये तो अत्यंत हर्ष का विषय है।
1: आप सत्य कहती हैं महारानी। आज हम दोनों भगवान नारायण को रात्रि में छिपकर खिड़की से देखेंगे।

0: महारानी, रात का पहला पहर तो बीतने को आया और अभी तक कोई नहीं आया है।
1: धैर्य रखें महाराज, वो देखिए महाराज, गरुड़ पर साक्षात विष्णु आकाश मार्ग से आ रहे हैं। वाह, अद्भुत।
0: हाँ महारानी, हम और हमारा कुल धन हो गया। इस ब्रह्मांड में मुझसे बढ़कर धनी और भाग्यवान कोई नहीं है। हमारी संतति का उपभोग स्वयं नारायण कर रहे हैं। हमारा संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होगा। अब मैं सारे संसार का स्वामित्व लूंगा और सभी मेरे दास होंगे। मेरा जमाता स्वयं विष्णु भगवान है। सारे सीमावर्ती राजागण मेरे अधीनस्थ होंगे।
2: राजा तो उन्मादित हो गए, सभी राज्यों पर चढ़ाई करने लगे, सभी के साथ युद्ध छेड़ दिया और वीर राजाओं के हाथों परास्त होने लगे।

0: पुत्री, तुम्हारे जैसी कन्या और विष्णु जैसे जामाता के रहते हैं, क्या यह संभव है कि राजागण मुझसे युद्ध करें और मुझे किले में बंदी बनाने का दुस्साहस करें? तुम जामाता से कहो कि मेरे शत्रुओं का विनाश कर दे, नहीं तो कल सूर्य उदय तक वो हमारे दुर्ग को नष्ट कर देंगे।
1: जी पिताश्री,

0: सुंदरी, रात्रि के इस मधुर बेला में तुम्हारा साथ कितना आनंददायक है। परंतु तुम शांत क्यों हो? कोई चिंता?
1: भगवान, आपके रहते मेरे पिता शत्रुओं से घिरे हुए हैं, ये कैसे संभव है? आप कृपया उनके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश कर दीजिए प्रभु।
0: सुभगे, तुम्हारे पिता के शत्रुओं की संख्या ही कितनी है? तुम निश्चिंत रहो, मैं क्षण मात्र में अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उनको तृण की तरह छिन्न भिन्न कर डालूंगा।
1: हाँ भगवान, हाँ,

0: नहीं करेंगे तो उनकी सहायता और कौन करेगा। कल प्रातःकाल दुर्ग में विनाश हो जाएगा प्रभु। दुर्ग के अंदर ईंधन रसद समाप्त हो चुके हैं। मेरी अवस्था देखिए, मेरी अवस्था को देखते हुए आप जैसा उचित समझे वैसा ही करें।
1: सोचता हूँ दुर्ग के टूट जाने पर तो राजकन्या भी छूट जाएगी, ये तो और भी उत्तम होगा। मैं आयुध गरुड़ पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से प्रकट हो जाऊंगा। संभव है कि मुझे वासुदेव समझकर शत्रुपक्ष भयभीत हो जाए और राजा की सेना उसे परास्त कर दे। और अगर मेरे प्राण भी चले जाएं तो क्या। प्रिय, मेरे रहते तुम्हारी आंखों में आंसू, ये मेरे लिए असहनीय है। अब मैं तभी तुम्हारा दर्शन करूंगा जब संपूर्णतः शत्रुओं का विनाश हो जाए। तुम अपने पिता महाराज से कहो कि प्रातः काल वो सेना के साथ निकलकर शत्रु पक्ष से युद्ध करें। मैं आकाश से उनके शत्रुओं को निस्तेज कर दूंगा, वे आसानी से परास्त हो जाएंगे।
0: प्रभु, प्रभु।
2: कौलिक के वचन को सुनकर राजपुत्री ने अपने पिता के पास जाकर सारा वृत्तांत सुना दिया। पुत्री की बात को सुनकर राजा बड़े प्रभावित हुए। उधर कौलिक भी शंख, चक्र, गदा तथा पद्म को लेकर गरुड़ पर चढ़कर आकाश मार्ग से युद्ध करने के लिए चल दिया। उधर एक मजेदार घटना घटी। त्रिकालदर्शी ने ध्यान लगाकर सारी घटना जान ली। उन्होंने गरुड़ से कहा,
3: हे गरुड़, क्या तुम्हें विदित है कि कौलिक काट के गरुड़ पर चढ़कर मेरा रूप धारण करके राजकन्या के पास जाया करता है?
4: हाँ देव, मैं उसके प्रत्येक कृत्य को जानता हूं। उसका साहस अद्भुत है, परंतु अब क्या किया जाए।
3: मरने का निश्चय करके प्रतिज्ञाबद्ध होकर वह कौलिक आज युद्ध क्षेत्र में गया है, और यह निश्चित है वह आज वीर क्षत्रियों के हाथ से आहत होकर मृत्यु को प्राप्त होगा।
4: किंतु भगवान, उसके मरने के बाद सभी लोग ये कहने लगेंगे कि क्षत्रियों ने मिलकर वासुदेव और गरुड़ दोनों को पराजित कर दिया। इस अपवाद के फैलते ही लोग हमारी अर्चना बंद कर देंगे। कोई उपाय कीजिए ना प्रभु।
3: आप सत्य कहते हैं गरुड़देव। आप तत्काल जाकर उस काष्ठमय गरुड़ के शरीर में प्रवेश करें।
4: जी।
3: सभी शस्त्रों को सजग करके मैं भी कौलिक के शरीर में प्रवेश करता हूं, जिससे वो शत्रुओं का विनाश कर सके।
2: और फिर स्वयं नारायण एवं गरुड़ ने सारे शत्रुओं को क्षण भर में परास्त कर दिया। राजा और प्रजा दोनों धन्य धन्य होने लगे।

0: वाह, आनंद ही आनंद है। ये तो मेरे पूर्व जन्मों का फल ही है कि तीनों लोकों के स्वामी आज मेरे जमाता है। उनके कारण ही मैं सीमावर्ती राजाओं को परास्त कर सका। प्रजा भी अत्यंत प्रसन्न है।
1: पिताश्री प्रणाम। आज वो शुभ घड़ी आ गई है जब आपके जमाता आपसे मिलना चाह रहे हैं।
0: क्या, अहो भाग्य, अहो भाग्य, आज मुझे प्रभु के दर्शन होंगे। प्रभु आइए, प्रभु पधारिए।
2: मुझे लज्जित न करें, मैं आपसे कुछ कहने आया हूं।

और फिर कौलिक ने महाराज को शुरू से अंत तक सारी घटना सुना दी। कौलिक के सत्य कथन को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने सोचा, ये शत्रुओं का विनाश करने वाला वीर, इससे सुयोग्य दामाद हमें कोई नहीं मिलेगा। उसने राजकन्या से कौलिक का विवाह करवा दिया। दमनक ने ये कथा सुनाकर कहा कि षड्यंत्र सुनियोजित ढंग से किया जाए तो ब्रह्मा को भी ज्ञात नहीं होता।

आगे करकट और दमनक क्या करेंगे ये आप सुनेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंचतंत्र की तीसरी कड़ी। ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। भारत और यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच अबू धाबी में हुए। धार की भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में रखी माँ बागदेवी की प्रतिमा को वापस भारत लाने के प्रयास किए जाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिक विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजों से असंतुष्ट छात्रों के लिए दो चरणों में समीक्षा की सुविधा दी है। सभी आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे और हर चरण में सिर्फ एक आवेदन मान्य होगा। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 37 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से मात दी। आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में केकेआर और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोता बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की।

0: हिंदी मातृभाषा नहीं अभिव्यक्ति है, यह मातृभूमि पर मिटने वालों की भक्ति है। मैं पुनः दोहराती हूँ कि हिंदी मातृभाषा नहीं अभिव्यक्ति है, यह मातृभूमि पर मिटने वालों की भक्ति है। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ आपकी बहन स्मृति और मैं लेकर आई हूँ आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा, जिसमें होंगी ढेरों बातें और संगीत। तो बिना देर किए शुरू करते हैं कार्यक्रम महिला सभा। श्रोताओं, किसी व्यक्ति की पहचान उसके नाम मात्र से नहीं होती है, उसकी पहचान उसके कर्मों से, उसके स्वभाव से, उसके पहनावे से और उसकी भाषा से होती है। जब हम कभी बाहर घूमने जाते हैं और वहाँ टूरिज्म को देखते हैं, तो उनके बिना बताए ही उनके पहनावे से और उनकी भाषा शैली से उनके निवास स्थान का अंदाजा लगा लेते हैं। भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख माध्यम है, जिसका जन्म सदियों पूर्व हुआ है। हाँ, मौखिक भाषा तक पहुँचने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी रही है। हमारी हिंदी भाषा भारत की राजभाषा, सांस्कृतिक धरोहर की संवाहक है, एकता का सूत्र है, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो 14 सितंबर 1949 को आधिकारिक दर्जे पर आई और ये दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बन गई। यह भारतीय संस्कृत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाती है और देश के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ती है। श्रोताओं, भारत की भाषाई विविधता हमारे देश सबसे बड़ी धरोहरों में से एक है। हमारी भारतीय भाषाओं का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसका इतिहास अत्यंत समृद्ध भी है। आइए अपनी भाषा के मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। पहला, संवैधानिक स्थिति। भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 आधिकारिक भाषाओं को शामिल किया गया। इनमें हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, कन्नड़, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत एवं अन्य भाषाएं शामिल हैं। भाषाई परिवार। भारत की भाषा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, जैसे गद्य भाषा एवं पद्य भाषा। हमारी भाषा पर बहुत सी पुस्तकें भी लिखित हैं। ये पुस्तकें NCERT, ICSE या राज्य बोर्ड के तहत तैयार की जाती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में सक्षम बनाना है और साथ ही व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलने लिखने की कला सिखाती है। अब आइए बात कर लेते हैं भारतीय भाषा की पुस्तक योजना के बारे में। तो भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री और पुस्तकों को बढ़ावा देना है। आइए जानते हैं इसके उद्देश्य। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं में सुलभ बनाना है। यह योजना सुनिश्चित करती है कि छात्रों को उनकी अपनी भाषा में ज्ञान प्राप्त हो सके, जिससे विषय की समझ बेहतर हो। अनुवाद और मूल लेखन इसके तहत अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। साथ ही क्षेत्रीय लेखकों को मूल सामग्री लिखने को प्रेरित किया जाता है। उच्च शिक्षा पर ध्यान। यह योजना विशेष रूप से इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून और विज्ञान जैसे तकनीकों पाठ्यक्रमों की पुस्तकों को स्थानीय भाषाओं पर उपलब्ध कराने पर जोर देती है। डिजिटल उपलब्धता। पुस्तकों को न केवल प्रिंट रूप में बल्कि ई-बुक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाता है, ताकि दूर दराज के छात्र भी इसका लाभ उठा सके और अपनी भाषा का भी महत्व समझे। अपनी भाषा अपनी पहचान, यही है भारत की शान। श्रोताओं, हमारी बातें अभी और होंगी, उसके पहले सुनते हैं यह गीत, जिसे आवाज दी है सुनिधि चौहान और करीना कपूर ने।
1: A daughter is a daughter. All...

0: तो इस गीत के बाद मैं स्मृति पुनः प्रस्तुत हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा में। श्रोताओं, आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जब हमारे पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, तब से आज तक आकाशवाणी जन जन तक देश विदेश की खबरों, संगीत, आवश्यक जानकारी व मनोरंजन करती आई है। आज भी बहुत से लोग हैं जो रेडियो को बड़ी ही उत्सुकता के साथ सुनते हैं। तो एक ऐसी ही श्रोता हमारे बीच हैं, पुष्पा सिंह जी, जो रीवा जिले के माँ गायत्री शक्तिपीठ की ट्रस्टी हैं, जिन्हें सुनते हैं एक भेंट वार्ता के माध्यम से। तो आइए सुने यह भेंट वार्ता।
1: श्रोताओं, आज हमारे बीच मौजूद हैं पुष्पा सिंह जी, जो कि रेडियो की बहुत अच्छी श्रोता हैं और आज भी रेडियो से इनका बहुत ही गहरा लगाव है। पुष्पा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्ते बहन स्मृति जी, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप रेडियो के लिए मुझसे कुछ जानना चाह रहे हैं और मुझे बहुत ही खुशी है। और रेडियो रेडियो का तो कोई बराबरी नहीं कर सकता, चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन रेडियो की बात ही अलग थी। हम तो बचपन से रेडियो के इतने शौकीन थे कि कोई भी काम करते थे तो रेडियो ही चला के काम करते थे और आपका पता ही नहीं चलता था कि क्या हमारा काम पूरा हो गया। और हम बड़े प्रेम से सारे काम हमारे होते थे और खासकर महिलाओं के कार्यक्रम, महिलाओं के लिए जो आते थे। और मैं गीतों की बहुत शौकीन थी, चाहे वो फिल्मी हो चाहे भजन हो, उनको मैं बहुत अच्छे से सुनती थी और मैं बहुत शौक थी। हालांकि मुझे विविध भारती के तो सारे ही प्रोग्राम बहुत पसंद थे, चाहे बिना का गीत माला हो, चाहे हवा महल हो, हवा महल की कहानियाँ आज भी हम सुनते हैं, कभी भी मन हो जाता है। मैं टीवी के बजाय रेडियो को देख सुनना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि उससे हमारे काम भी होते हैं। टीवी तो हमको देखना पड़ता बैठ के, लेकिन रेडियो में हम काम भी करते रहते हैं और हम सब सुनते भी रहते हैं।
1: तो यानी कि इसमें कोई समय की बर्बादी नहीं होती है।
2: हाँ, समय की हमारी बर्बादी नहीं होती है बहन, और जो है हमारी काम भी अच्छे से होते रहते हैं। और कई बार हवा महल का जो प्रोग्राम आता है, पुरानी जो छोटी छोटी सी कहानी, अपने पति पत्नी की आपसी वार्तालाप, इतना मेरे को पसंद आता है और हम लोग उसके लिए बड़े बेकरार रहते थे। और बिना का गीत माला, कौन सा गाना टॉप पे आएगा, ये कौन सा गाना, ये बड़ी उत्सुकता हमारे मन में रहती थी। और फौजियों के लिए कार्यक्रम भी, वो भी बहुत पसंद था। मैं रेडियो की इतनी बड़ी प्रशंसक हूँ कि मैं क्या बताऊँ, कितनी तारीफ करूँ। हर प्रोग्राम ही उसके सब बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे समाचार हो, चाहे बिना का गीत माला हो, और चाहे हवा महल हो, या छोटी छोटी कहानियाँ हो, या महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम होता है उसमें तरह तरह के व्यंजन बनाना भी बताते हैं, बहने तो बहुत पसंद आते हैं। कई बार हम लोग बहुत ट्राई करते थे कि आज ये आया है, बना के देखते हैं, क्योंकि पहले ज़माने में ये तो होता नहीं, गूगल तो होता नहीं था, गूगल तो होता नहीं था, तो हम रेडियो पर जो आती थी व्यंजन विधि उसको सुनते थे और फिर बनाने का प्रयास करते थे।
1: जी जी,
2: तो बहुत अच्छा लगता था हमें, बहुत ही, मतलब कहाँ तक मैं उसकी तारीफ करूँ। आज भी हम उसी तरह से रेडियो के प्रशंसक हैं, चाहे कितना ही भी आ गया है, जब यहाँ बहुत सारी चीजें आ गई हैं,
1: आधुनिकीकरण आया है,
2: लेकिन उसका मुकाबला आज भी नहीं है।
1: आज भी नहीं
2: है। आपसी बहनों की जो चर्चा होती है।

0: जब दो बहनें आपस में बात करती हैं तो लगता है कितनी अपनत्व है कितना। और फरमाइशी प्रोग्राम में गांव-गांव से टीवी में कहाँ आता है, गांव से आज भी हम जब सुनते हैं ना फरमाइशी प्रोग्राम तो जो बताते हैं ना, हम तो किसानी का काम करते हैं, हम तो सिलाई का काम करते हैं, हम तो खेत में बैठ कर रेडियो सुन रहे हैं, तो इतना अपनत्व लगता है कि हम पूरे भारत से जुड़े हुए हैं। फरमाइशी प्रोग्राम जो है उसमें जो आता है इतना अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही अच्छा लगता है कोई ये सब अपने जुड़े हुए हैं, सब हमारे ही हैं, कहाँ कहाँ से कितना जाते हैं, अपने अपने पत्र भेजते हैं, कितनी खुशी होती है जब उनके पत्र मतलब पढ़ते हैं,
1: पढ़े जाते हैं हमारे नाम पढ़े जाते हैं, तब
0: बहुत खुशी होती है। मैं भी पहले बहुत पत्र लिखती थी, एक आध बार मेरा भी नंबर आया है, और मैं भी पहले रेडियो में प्रोग्राम देती थी, तो गीत में भी मैंने प्रोग्राम दिया है अपना, और चर्चा में वैदिक संस्कृति के ऊपर भी मेरा एक प्रोग्राम हुआ था कि भारतीय नारी जब और अब, इसमें हमारा प्रोग्राम हुआ था। तो रेडियो का तो कोई वो ही नहीं है,
1: बिल्कुल
0: तोड़ नहीं है, चाहे कितना भी आधुनिकता आ जाए और कितना ही हो जाए, लेकिन रेडियो हमारे लिए आज भी उतना ही आवश्यक है और बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छी बात है कि हमारे किसी काम पर उससे इफेक्ट नहीं पड़ता,
1: बिल्कुल
0: नहीं पड़ता है, चाहे हमारे काम भी चलते रहते हैं और हम सुनते भी रहते हैं।
1: बिल्कुल पुष्पा जी, आपने अच्छे से जानकारी दी, आप वाकई में रेडियो की एक अच्छी श्रोता हैं, और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने की खुशी में आज आपसे हमारी बात हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए दी, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी।
0: मेरी तरफ से भी बहन स्मृति बहन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके उत्सुकता को व्यक्त कर सकूं और आपके लिए कुछ थोड़ा सा अपना समय दे सकूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: तो बहनों, अभी हमने सुनी है भेंटवार्ता जिसमें बात कर रही थी पुष्पा सिंह जी। श्रोताओं, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है भारतीय भाषा के बारे में, तो हमारी भाषा का कोई तोड़ तो नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगी हर प्रांत की, हर क्षेत्र की भाषा की अपनी अलग पहचान होती है, एक रस होता है, और साथ ही भाषाओं में और अधिक रस कब पड़ता है, जब कोई लेखक या शायर अपने शब्दों में या भाषा को मिश्रित करता है तो लोग मंत्रमुग्ध होकर भाषा का आनंद लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही शायरा सकीला बानो भोपाली के बारे में, जो शायरा होने के साथ साथ कवियत्री और मंच संचालिका भी थी। उनका जन्म 1940 में भोपाल में हुआ था। वो खास तौर पर उर्दू शायरी और मुशायरों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुत के लिए जानी जाती थी। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे उस दौर की पहली मशहूर महिला शायरों में से एक थी जिन्होंने बड़े बड़े मुशायरों में मंच संभाला और अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी आवाज, अंदाज और हास्य से भरी शायरी लोगों को बहुत पसंद आती थी। सकीला बानो भोपाली ने देश विदेश के कई मुशायरों में भाग लिया और उर्दू साहित्य को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें मुशायरों की मलिका भी कहा जाता है। उनकी शायरी में प्यार, समाज, महिलाओं की भावनाएं, जिंदगी के अनुभव झलकते थे। वे कई फिल्मों एवं रेडियो कार्यक्रमों से भी जुड़ी रहीं। आइए सकीला बानो के बारे में कुछ और सटीक जानकारी प्राप्त करते हैं। सकीला बानो को कम उम्र में ही संगीत और शायरी में रुचि थी, इसलिए उन्होंने बचपन से ही शायरी लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी कव्वाली को केवल धार्मिक मंचों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि मनोरंजन और सामाजिक संदेश का माध्यम भी बनाया। उनकी गायकी में उर्दू शायरी, सूफी अंदाज और हल्का भी शामिल होता था। वो अपनी तेज आवाज, आत्मविश्वास और मंच संचालन के लिए मशहूर थी। चूंकि उस दौर में महिला का मंच तक पहुँच पाना एवरेस्ट चोटी तक पहुँचने से कम नहीं था, इसलिए उनके रास्ते में भी बहुत सारी रुकावटें आईं, लेकिन सकीला बानो हार न मानी। उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से लोगों का मन जीता और महिला कलाकारों के लिए नई राह बनाई, और इस तरह लोगों के मन में अपनी छाप छोड़ने के बाद सन 2002 में सकीला बानो की मृत्यु हो गई, लेकिन आज भी लोग सकीला बानो को बड़े सम्मान से याद करते हैं। तो आइए हम भी उनके सम्मान में सुनते हैं ये कव्वाली।

बहनों, गर्मी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। तेज धूप और चुभती गर्मी ने इंसान का हाल बेहाल किया है। घर से बाहर निकलना दुर्लभ होता जा रहा है। ऐसे में हमें खुद की सुरक्षा का ध्यान बढ़ा देना चाहिए, जैसे कि घर से बाहर निकलते वक्त चेहरे को सफेद कपड़े से ढक कर रखें और पानी की बोतल साथ रखें। और हाँ, धूप से लौटने पर एक सांस में ज्यादा पानी ना पिएं, थोड़ा थोड़ा करके पिएं। साथ ही मसालेदार खाने से थोड़ा परहेज करें और ठंडक वाले भोजन को अपनी डाइट में शामिल करें, जैसे दही, छाछ, खीरा, ककड़ी, नींबू, पुदीना, खिचड़ी या मूंग दाल, बेल का शरबत आदि। इसी कड़ी में हम आज जानेंगे मुनगे की कढ़ी बनाने की विधि। तो सबसे पहले जान लेते हैं कढ़ी को बनाने की सामग्री। सामग्री है 1 कप खट्टा दही, 2-3 चम्मच बेसन, 2 साबुत लाल मिर्च, राई छोटा चम्मच, मुनगा 8-10, हल्दी, सरसों का तेल, मेथी, करी पत्ता, लहसुन व नमक। अब आइए जानते हैं इसे बनाना कैसे है। तो सबसे पहले मुनगे को छीलकर छोटे छोटे लगभग 2-2 इंच के टुकड़े कर लें और तेल में फ्राई कर लें। अब एक बर्तन में दही, बेसन व पानी का मिश्रण तैयार करें। इसके बाद कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गर्म करें और राई, मेथी दाना, साबुत लाल मिर्च, लहसुन तथा हल्दी का तड़का लगाएं। तड़का ठीक से सुनहरा हो जाने पर दही बेसन के मिश्रण को भी कढ़ाई में डालें और अंदाजे कि मिश्रण न ज्यादा गाढ़ा हो और न ज्यादा पतला, और बड़े चम्मच से धीरे धीरे चलाते रहें। कढ़ी में उबाल आने पर मुनगे के टुकड़े को डाल दें, साथ ही स्वाद अनुसार नमक भी डालें और ठीक से पकाएं। अब इसे चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, यह दोनों में ही लाजवाब लगती है और सेहत से भरपूर होती है। खास करके गर्म के मौसम में मुनगे की कढ़ी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो बहनों, अंत में सुने एक और गीत, जिसे आवाज दी है शंकर महादेवन ने।

बहनों, अभी हमने सुना ये गीत जिसे आवाज दी थी शंकर महादेवन ने, और इसी गीत के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक दीजिए अपनी बहन स्मृति को इजाजत। नमस्कार।

श्रोता बहने भी सुन रही थी कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: कवि हेमंत देवलेकर,
2: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है। हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाजें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाए। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
3: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दें नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। प्रस्तुत है लोक संगीत, कलाकार हैं मणिमाला सिंह और साथी।

0: मणिमाला सिंह और साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन 3 पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है सुगम संगीत। कलाकार है मुकुल सोनी।

मुकुल सोनी के गाए इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है फिल्म संगीत।

शंकर जयकिशन के संगीत से सजा गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था हसरत जयपुरी ने। और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, आवाज लता मंगेशकर की। गीत संगीत एक बार फिर हसरत जयपुरी और शंकर जयकिशन का। फिल्म है आरज़ू।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म आरजू के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत भी करेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करनी होंगी।
2: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।
1: आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सोशल मीडिया संदेश में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार बेहतर निगरानी, व्यापक परीक्षण, बेहतर उपचार सुविधाओं और व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यम से डेंगू नियंत्रण प्रयासों को मजबूत करना जारी रखे हुए है। प्रदेश के कटनी जिला चिकित्सालय सहित सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मरीजों के निशुल्क डेंगू और मलेरिया की जांच की जा रही है। जबलपुर में आज न्यायपालिका से जुड़ा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सेमिनार शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीश शामिल हो रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजनरी एम्पावरिंग जस्टिस वाया यूनाइटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन विषय पर आधारित इस सेमिनार में न्यायपालिका में टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंटीग्रेशन को लेकर चर्चा की जा रही है। धार जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आज सुबह श्रद्धालुओं और अलग अलग समितियों के पदाधिकारियों ने शांतिपूर्ण माहौल में दर्शन और पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने कल ऐतिहासिक फैसले में भोजशाला को राजा भोज के समय का वागदेवी का मंदिर माना और हिंदू पक्ष को यहां पूजा का अधिकार दे दिया है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में आज शनि जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। 13 साल बाद एक विशेष संयोग बना है, जहां शनि जयंती, शनिचरी अमावस्या और वट सावित्री व्रत एक ही दिन मनाए जा रहे हैं। इस महासंयोग के मौके पर शनि मंदिरों और पवित्र नदी घाटों पर तड़के से ही लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आगरमालवा जिले में शनि जयंती पर शनि मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। सतना जिले के चित्रकूट में श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा लगा रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए राज्य के 37 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर, उज्जैन और मंडला में रात में भी तापमान सामान्य से अधिक बना रहेगा। भोपाल, ग्वालियर, रतलाम, धार और देवास सहित कई जिलों में तेज लू चलने की संभावना जताई गई है। विश्व कप T20 से पहले भारतीय

0: महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के सदस्यों ने शनिवार सुबह उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर सहित अन्य खिलाड़ियों ने भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी सर्किल जेल के मुलाकाती क्षेत्र में लीगल एंड हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया, जिसमें बंदियों और परिजनों को निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसी गंभीर अनुवांशिक रक्त विकारों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से आज रायसेन में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सीबीएसई ने कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2,00,000 से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
0: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थी, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सग्रम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, AI, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
5: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
0: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में

0: गणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
1: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री GUDC और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेस्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए AI के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जाँच के आदेश दिए। CBSE ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है आपकी फरमाइश।

आपकी फरमाइश का पहला गीत आशा भोसले और भूपेंद्र सिंह की आवाज में। हसन कमाल के लिखे इस गीत को संगीत दिया है बप्पी लहरी ने। फिल्म है एतबार।

एतबार फिल्म का गीत अभी आपने सुना और इसकी फरमाइश हमें सीतामणि बिहार से भेजी थी। अकरम हुसैन, बेगम इशरत अकरम, रुबीना, आरिज, अरहान, हमजा और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा की भी यही पसंद थी। इसी गीत को सुनना चाहा था बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद अजीज की आवाज में। इंदिवर की रचना है राजेश रोशन का संगीत और फिल्म है आखिर क्यों। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय ने। भागचंद साहू, अजय साहू, राज साहू, करिश्मा, प्रेमबाई और साहू परिवार के सभी सदस्यों ने राजेंद्र नगर गंज बासौदा विदिशा से ये पत्र भेजा है। खुरई तिगड्डा ग्राम कल्याणपुर वीर से फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं मनीष कुमार पाराशर, परी, आकांक्षा, राधिका, नीना, खुशी, प्रेम नारायण, हीराबाई, हेमंत, अभिषेक, मोहित, मयंक, अनि

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अगला गीत जगजीत सिंह की आवाज में। फिल्म राही के लिए इस गीत को लिखा है नक्श लायलपुरी ने। संगीत जगजीत सिंह का है और फरमाइश करने वाले श्रोता हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला खां, नसीम बेगम, आयशा खां, हादिया अस्मा, सालेहा, शोएब और उनके परिवार के सभी सदस्य। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दतरेगी से भागवत वर्मा। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से एमएम राजावत, मधु, राशि, रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और राजावत परिवार के सभी सदस्य। तो पेश है आप सबकी पसंद का ये गीत।

और अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत भूपेंद्र सिंह की आवाज में। फिल्म है एक नया रिश्ता। इस गीत को सुनवाने की फरमाइश हमें लिख भेजी है बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने। फरमाइशी पत्र प्रमिलागंज आलौट जिला रतलाम से आया है। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश की फरमाइश है। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू निहारिका और हार्दिक और वंश बत्ता ने इस गीत को सुनना चाहा है। कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली की भी यही पसंद है।

एक नया रिश्ता। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह की आवाज में। इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अब सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के हैग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। गृहमंत्री अमित शाह आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान श्री शाह विभिन्न समीक्षा बैठकों में हिस्सा लेंगे। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिक विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। CBSE ने 12वीं के नतीजों से असंतुष्ट छात्रों के लिए दो चरणों में समीक्षा की सुविधा दी है। सभी आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 37 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, देवास के लिए तेज लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं सांध्यकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी, जो आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। शाम 6:00 का समय रहेगा आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्षों के गौरवशाली सफर पर आकाशवाणी भोपाल की विशेष प्रस्तुति का तीसरा भाग। इस विशेष भेंटवार्ता में आप सुनेंगे यादें, अनुभव और बदलता प्रसारण परिदृश्य विषय पर आकाशवाणी के पूर्व सहायक निदेशक कार्यक्रम श्री अनिल श्रीवास्तव से ली गई भेंटवार्ता।

7:21 का समय रहेगा ग्राम सभा कार्यक्रम का। 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 से चित्रपट संगीत का आनंद आप ले सकेंगे। ये थे सांध्यकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:15 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। अब मीडियम वेव पर यह प्रसारण यहीं विराम पाता है। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर। शाम के 5 बजने को है। मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: पेशित घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र लीक से जुड़े एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञान और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। और आईपीएल में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से मात दी। आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में केकेआर और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। युवा श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की।

दोस्तों, आजकल ड्रोन सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत जरूरी हो गए हैं। ड्रोन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और इसमें युवाओं के लिए ढेर सारे रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां कम निवेश में अच्छी कमाई और तेज तरक्की संभव है। कैसे, जानते हैं हमारी आज की युवाणी में। दोस्तों, आकाशवाणी के रीवा केंद्र से मैं आपकी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। स्वीकारिए मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। दोस्तों, ड्रोन का इस्तेमाल अब कई क्षेत्रों में हो रहा है। कृषि में किसान ड्रोन से दवा का छिड़काव करते हैं जिससे समय और पैसे दोनों बचते हैं। डिलीवरी कंपनियां भविष्य में ड्रोन से सामान पहुंचाने की योजना बना रही हैं। आपदा प्रबंधन में बाढ़ या भूकंप के समय ड्रोन से बचाव कार्य किया जाता है। इसके अलावा फिल्म निर्माण, रक्षा, निगरानी, मैपिंग और सोलर प्लांट जांच जैसे कामों में ड्रोन का बड़ा रोल है। तो इसमें क्या क्या जॉब्स मौजूद हैं, ये जानते हैं। दोस्तों, इसमें है ड्रोन पायलट, ड्रोन ट्रेनर, ड्रोन टेक्नीशियन और रिपेयरिंग, डेटा एनालिस्ट जो कि ड्रोन से ली गई तस्वीरों का विश्लेषण करते हैं, ड्रोन सॉफ्टवेयर डेवलपर, ड्रोन सर्विस कंपनी शुरू करने वाले उद्यमी। दोस्तों, भारत सरकार ने ड्रोन नियम 2021 बनाकर इस क्षेत्र को आसान बना दिया है। अब 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति DGCA से लाइसेंस लेकर ड्रोन उड़ा सकता है। कई ITI, पॉलिटेक्निक और प्राइवेट संस्थान सस्ते कोर्स चला रहे हैं। इसमें 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप जॉब या अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कमाई की बात करें तो शुरुआत में 20,000 से 40,000 रुपए महीना आसानी से मिल सकता है। अनुभव के साथ 1,00,000 रुपए तक सैलरी या प्रति प्रोजेक्ट अच्छी कमाई संभव है। गांव कस्बों में भी कृषि ड्रोन सर्विस देकर आप अच्छा व्यवसाय चला सकते हैं। तो इसमें तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। दोस्तों, 2025 से 2030 के बीच ड्रोन इंडस्ट्री भारत में हजारों करोड़ का कारोबार करने वाली है। इसलिए अगर आपको टेक्नोलॉजी, उड़ान और नई चीजें सीखना पसंद है तो ड्रोन क्षेत्र आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। तो दोस्तों, आज पढ़ाई के साथ साथ ड्रोन कोर्स करके आप खुद को भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। मेहनत और सही ट्रेनिंग के साथ ये क्षेत्र न सिर्फ रोजगार देगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा भी बनाएगा। तो अब आप भी अपने ख्वाबों की उड़ान भरिए एलिसा मेंडोसा और मोहित चौहान के गाए हुए इस खूबसूरत गीत के साथ।

दोस्तों, आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में संतुलित जीवन शैली मतलब बैलेंस्ड लाइफस्टाइल या हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी हो गई है। संतुलित जीवन का मतलब है काम, आराम, स्वास्थ्य, परिवार और खुशी के बीच सही तालमेल बैठाना। जब हम इन सब को संतुलित मतलब बैलेंस्ड रखते हैं, तब हम स्वस्थ, खुश और सफल रहते हैं। तो अगर आप भी हेल्दी, हैप्पी और सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। इनमें सबसे पहले है आपकी फिजिकल हेल्थ मतलब शारीरिक स्वास्थ्य। तो रोज कम से कम 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज करें, चाहे वॉकिंग हो, योगा हो या फिर जिम। साथ में अच्छा और पौष्टिक खाना खाएं। ज्यादा जंक फूड से बचें। रात को 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। आपने सुना होगा, तन चंगा तो मन चंगा। इसके बाद आती है आपकी मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक स्वास्थ्य। अब क्योंकि तनाव आजकल बहुत आम है, तो रोज 10 से 15 मिनट ध्यान मतलब मेडिटेशन या गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। बुक्स पढ़ें, म्यूजिक सुने या अपना कोई शौक पूरा करें। और हाँ, निगेटिविटी से दूर रहें और छोटी छोटी खुशियों को इम्पोर्टेंस दें। अब है आपके काम और आराम के बीच का संतुलन मतलब वर्क लाइफ बैलेंस। हाँ, काम तो जरूरी है, लेकिन काम के अलावा परिवार के साथ समय बिताएं, दोस्तों से मिलें और छुट्टियां मनाएं। ऑफिस के बाद फोन बंद करके परिवार के साथ डिनर करें। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है, वरना बर्नआउट हो जाता है। आपके रिश्ते और सामाजिक जीवन मतलब रिलेशनशिप्स एंड सोशल लाइफ का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। अच्छे रिश्ते हमारी जिंदगी को मजबूत बनाते हैं। माता पिता, लाइफ पार्टनर और बच्चों के साथ समय बिताएं और जरूरतमंदों की मदद करें। इससे आपके मन को शांति मिलेगी। और ये सब होगा समय प्रबंधन मतलब टाइम मैनेजमेंट से। आप हर दिन का प्लान बनाएं, जरूरी काम पहले करें और नहीं बोलना सीखें। दोस्तों, हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जीने वाले लोग ज्यादा एनर्जेटिक और क्रिएटिव होते हैं और बीमारियों से दूर भी रहते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और वो अपनी लाइफ को मजे से जीते हैं। तो जब वो अपनी लाइफ को इतने अच्छे से जीते हैं, खुश रहते हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव से शुरुआत करें। रोज एक नई अच्छी आदत डालें। सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश ना करें, बस कोशिश करें कि जीवन के हर पहलू को थोड़ा थोड़ा समय मिले, क्योंकि हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। जब हम बॉडी, माइंड, वर्क एंड रिलेशनशिप्स को बैलेंस रखते हैं, तब लाइफ मीनिंगफुल और जॉयफुल बन जाती है। तो आइए आज से ही हम सब मिलकर संतुलित जीवन मतलब हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल की ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाएं। और अब आपको सुनवाते हैं हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की खूबसूरत आवाज में ये मशहूर गीत।

0: और दोस्तों अब आपको सुनवाते हैं शिवांजलि तिवारी से आकाशवाणी के 90 साल होने पर हुई हमारी बातचीत के कुछ अंश।
1: मैं तो बचपन से ही इसके साथ बड़ी हुई हूँ। पुराने जमाने में टीवी मोबाइल कुछ नहीं था, तब गांव कस्बे में आकाशवाणी ही सबसे बड़ा साथी था। मेरे दादाजी कहते थे, बेटा आकाशवाणी झूठ नहीं बोलता। आज के फेक न्यूज वाले समय में तो एक कितनी बड़ी बात है। 1947 की आजादी, 1962 का चीन युद्ध, 1971 की जंग, सब कुछ आकाशवाणी ने ही बताया। अब तो स्मार्टफोन आ गए, रील्स ने सब बदल दिया, लेकिन फिर भी आकाशवाणी का अपना स्वाद है। लोकल भाषाओं में कार्यक्रम, क्षेत्रीय गाने, संस्कृति, बातें, ये सब मोबाइल वाले एप्स में कहाँ मिलेगा। मेरी माँ अभी भी दोपहर को महाभारत या पुरानी कहानियाँ सुनती है, शाम को युवावाणी, महिला सभा, चौपाल, गृह लक्ष्मी, यह सभी कार्यक्रम हमारा पूरा परिवार सुनता है। 90 साल में आकाशवाणी ने बहुत कुछ देखा है, ट्रांजिस्टर से लेकर अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तक, लेकिन जो चीज नहीं बदली है वो है विश्वसनीयता और भारतीयपन। आज भी दूर दराज के गांवों में जहां इंटरनेट नहीं पहुंचा, वहां रेडियो आज भी राज करता है। 90 साल मुबारक हो आकाशवाणी। उम्मीद है अगले 90 साल भी आप हमारा ऐसे ही साथ देते रहेंगे। आज इस तरह से आपसे बातें करके आपका हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।
0: दोस्तों अभी आप शिवांजलि तिवारी को सुन पा रहे थे, जिन्होंने आकाशवाणी को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और अब आपको सुनवाते हैं सोनू निगम की खूबसूरत आवाज में ये मशहूर गीत।

दोस्तों, इस गीत के साथ समय हो चला है हमारे आज के विशेष स्तंभ हमारी धरोहर का, जिसमें आज हम आपको बताएंगे मोरते चित्रकला के बारे में। दोस्तों, मोरते चित्रकला एक ऐसी कला है जिसमें कलाकार बिना जीवित चीजों के चित्र बनाता है। इसमें फूल, फल, किताबें, बर्तन, बोतल, खिलौने या

घर में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को सजाकर उनका चित्र बनाया जाता है। इसे इंग्लिश में स्टिल लाइफ पेंटिंग कहा जाता है। ये चित्रकला मुख्य उद्देश्य वस्तुओं के आकार, रंग, प्रकाश और उनके छाया को सुंदर तरीके से दिखाना होता है। मूर्ति चित्रकला सीखने से बच्चों और कलाकारों की देखने और समझने की क्षमता बढ़ती है। जब कोई कलाकार किसी वस्तु को ध्यान से देखता है, तब उसे उसकी बनावट, रंग और आकार का सही ज्ञान हो पाता है। यही कारण है कि ये चित्रकला कला सीखने की शुरुआत के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इस कला में सबसे इम्पोर्टेंट बात है संतुलन और सजावट। कलाकार पहले वस्तुओं को अच्छे से सजाता है, फिर पेंसिल से हल्की रूपरेखा बनाता है, उसके बाद रंगों का उपयोग करके चित्र को आकर्षक बनाया जाता है। प्रकाश और छाया का सही उपयोग चित्र को जीवंत बना देता है। दोस्तों, मूर्ति चित्रकला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये धैर्य और एकाग्रता भी सिखाती है। इस कला को बनाने में समय और ध्यान दोनों की जरूरत होती है, इसलिए मन को शांत करने में भी ये मदद करती है। आज के समय में स्कूलों, आर्ट कॉम्पिटिशन और प्रदर्शनियों में मूर्ति चित्रकला का विशेष महत्व है। कई कलाकार इस कला के माध्यम से अपनी कल्पना और रचनात्मकता को लोगों तक पहुंचाते हैं। कहा जा सकता है कि मूर्ति चित्रकला एक सरल, सुंदर और उपयोगी कला है। ये हमें साधारण वस्तुओं में भी सुंदरता देखने की प्रेरणा देती है और हमारी कला प्रतिभा को निखारती है। ये कोई आज की नहीं है, ये हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। इसी के साथ वक्त हो चला है हमारा आपसे विदा लेने का। तो जाने से पहले अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा ईमेल एड्रेस है yuvvanireeva@gmail.com। तो स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और निरोगी काया का ध्येय लिए विदा दीजिए अपनी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला को। नमस्कार, शुभ संध्या।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी। आज की युवाणी आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: कवि श्री राग तेलंग।
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीत में संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आपकी पहचान आपके विचार, अब हर घर तक पहुंचेंगे बार बार। बढ़ेंगे ग्राहक, तरक्की होगी कमाल। विज्ञापन देने का सही पता आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:33 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं आदमी सड़क का फिल्म का गीत। आवाज मोहम्मद रफी के है, वर्मा मलिक ने इस गाने को लिखा है और संगीत दिया है रवि ने।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज जबलपुर में आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार में कहा कि भारत की न्यायपालिका को अब अस्पतालों की तरह 24 घंटे काम करने वाली व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना होगा। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र लीक से जुड़े एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा गुरुनाथ वंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में आज शनि जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। 13 साल बाद एक विशेष संयोग बना है जहाँ शनि जयंती, शनिचरी अमावस्या और चट और वट सावित्री व्रत एक ही दिन मनाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के शहडोल, चंबल, रीवा, जबलपुर, सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। खंडवा, रतलाम सहित कई जिलों में लू का प्रभाव रहा। और आईपीएल में आज शाम 7:30 ईडन गार्डन्स के केकेआर और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्षों के गौरवशाली सफर पर आकाशवाणी भोपाल की विशेष प्रस्तुति, विशेष भेंट वार्ता, यादें, अनुभव और बदलता प्रसारण परिदृश्य। इस विषय पर आकाशवाणी के पूर्व सहायक निदेशक श्री अनिल श्रीवास्तव से अमिता त्रिवेदी की बातचीत।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 वर्ष और उसका स्वर्णिम सफर, ये हम सब के लिए एक बहुत गौरव का विषय है और जो इसके साक्षी बन रहे हैं, साक्षी रहे हैं, उनके लिए कुछ अतिरिक्त खुशी का विषय हो जाता है। और उस अतिरिक्त खुशी में भी थोड़ी सी खुशी और ऐड कर रहे हैं कि आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं अनिल श्रीवास्तव जी। आप यूं तो रिटायर्ड ADP रहे हैं, लेकिन इनका अनुभव आकाशवाणी के साथ लगभग 5 दशकों का है। और जब भी अनिल श्रीवास्तव जी को याद किया जाता है तो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, एक बेहतरीन कमेंटेटर के रूप में सबसे पहली छवि बनती है। आप कवि हृदय भी रखते हैं और बढ़िया कविताएं करते हैं और कला के कई रंगों से जुड़े हुए हैं, तो

0: सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं सर।
1: बहुत
0: नमस्कार।
1: बहुत धन्यवाद अमिता जी कि आपने मुझे आमंत्रित किया,
0: और आपका आना मुझे भी व्यक्तिगत रूप से उन पुराने दिनों की तरफ ले जा रहा है जहां से हम लोगों ने अपने नौकरी की शुरुआत की, और बहुत कुछ देख के, बहुत कुछ आपसे जानकर चीजों को आगे बढ़ाया है। लेकिन हम उससे भी पहले समय की बात करना चाहेंगे कि रेडियो के साथ आपका जो साथ था और जो 5 दशक का एक लंबा समय है, इसकी शुरुआत क्या किसी खास घटना या किसी खास शौक से जुड़कर हुई, या ये एक सहज प्रक्रिया थी?
1: जी हाँ, आपने बिल्कुल मेरी दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया, क्योंकि जब मैं छोटा था, छोटा मतलब बहुत बच्चा नहीं था, करीब 14-15 साल का था, तो मुझे रेडियो सुन के ऐसा लगता था जैसे कि मतलब मैं सामने से किसी को सुन रहा हूँ और ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर बाद में जब ट्रांजिस्टर आ गया तो मेरे पिताजी ने एक ट्रांजिस्टर खरीद के मुझे दिया, और उस ट्रांजिस्टर को मैं रजाई के अंदर रख कर रात में सुना करता था। जब BSc पास किया, मैंने ग्रेजुएट हो गया
0: जी।
1: तो मैं ऐसे ही मार्केट में अपने एक फ्रेंड की दुकान में बैठा था, तो वहाँ एक अनाउंसमेंट आ रहा था रेडियो पर कि कैजुअल न्यूज रीडर, कैजुअल कॉम्पियर यू वाणी के लिए चुने जा रहे हैं
0: जी।
1: तो मैंने एक कॉपी का पेज फाड़ के, तो उस पेज पर मैंने एक छोटा सा आवेदन लिख के स्टेशन डायरेक्टर को यहाँ पर भेज दिया।
0: अच्छा।
1: और मैं भूल भी गया, मुझे अचानक कॉल आया कि आप वॉइस टेस्ट के लिए आइए, और मुझे खुशी है कि मेरा वॉइस टेस्ट और रिटर्न एग्जाम में सिलेक्शन हो गया। पहले तो मैं कैजुअल कॉम्पियर बना युवाणी का, कैजुअल अनाउंसर भी रहा कुछ दिन, फिर कैजुअल न्यूज रीडर था। और उस समय शुरुआत हुई थी MSc की, MVM कॉलेज भोपाल में मैं पढ़ता था, तो मैं BHEL से साइकिल पर आया करता था MVM, और यहाँ पर न्यूज़ जो है वो 2 बार प्रसारित होती थी, सुबह और शाम को, जैसे आज भी होती है। तो मैं दोनों बुलेटिन के लिए आता था, और साइकिल से सुबह सुबह यहाँ पर, फिर कॉलेज जाता था, फिर कॉलेज से यहाँ आता था, फिर यहाँ से घर जाया करता था। तो वो एक जो अपने आप में एक चाहत थी ना, अपने आप में एक इच्छा थी, वो पूरी हो रही थी, इसलिए ना कहीं थकान होती थी ना कहीं कुछ। आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि जो पहला कैजुअल कॉम्पियर में मुझे 10 रुपए रोज मिलते थे, 14 दिन की बुकिंग एक साथ होती थी।
0: अच्छा,
1: तो वो 140 रुपए जो है ना 1972 में मेरे लिए बहुत बड़ी अमानत थी। ऐसा लगता था जैसे मैं बहुत अमीर हो गया। अपने स्टूडेंट कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में, मैं रोज उनको कुछ खिलाता पिलाता रहता था, तो बड़ा अच्छा लगता था कि मेरे पास अपने पैसे हैं। और धीरे धीरे वो करके जब मैं न्यूज रीडर बना तब 22 रुपए रोज था।
0: जी जी।
1: तो ये समय जो है मैंने देखा, और इसी से मेरी शुरुआत हुई।
0: यहाँ पे 2 प्रश्न मेरे मन में आ रहे हैं। एक तो मैं ये जानना चाहूंगी कि चूंकि आप भोपाल में ही रहे, यहीं से पढ़ाई की आपने, तो भोपाल और आकाशवाणी का सफर लगभग लगभग साथ चला है
1: जी,
0: तो किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं?
1: देखिए अमिता जी, मैं आपको बताऊं कि मैं जुड़ा रेडियो से वो भोपाल से, और जो मैंने अवकाश प्राप्त किया वो भी भोपाल से
0: जी।
1: तो भोपाल का अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरी जिंदगी में रहा है। लेकिन इस बीच मैं पूरे भारत के 10 केंद्रों पर ट्रांसफर हुआ
0: जी।
1: 10 केंद्रों में शिमला भी था, जलगांव भी था, गोवा भी था, जबलपुर भी था, अंबिकापुर भी था, इस तरह से हर क्षेत्र के कई अच्छे अच्छे रेडियो स्टेशन, टूरिस्ट स्पॉट्स वाले स्टेशन वहाँ पे मैंने सर्व किया
0: जी।
1: और मुझे बड़ी खुशी है कि हर जगह अलग अलग जगह होने की वजह से अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, तो उससे मैं जुड़ता गया, जिसका फायदा कहीं ना कहीं हमेशा होता है। और वही कारण है कि आज भी घूमने की इच्छा मुझे हमेशा रहती है कि भारत के हर क्षेत्र को मैं घूमूं, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो समुद्र हो, जो भी क्षेत्र हो। तो आज भी वो भगवान की दया से वो बरकरार है, और मैं लगातार घूमने में विश्वास करता हूँ।
0: वैसे भी शायद ऐसा कहा जाता है, कहीं मैंने पढ़ा था कि आप एक किताब के 20-22-50 पेज पढ़िए और 1 किलोमीटर की यात्रा कर लीजिए, आपका अनुभव लगभग बराबर का
1: बिल्कुल
0: होगा।
1: सही आपने कहा है कि ये ऐसा ही है, और खास तौर से जो गोवा का अनुभव था मेरा, और जहाँ मैं सबसे लंबे समय तक रहा, आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं 10 साल गोवा में रहा।
0: अच्छा।
1: 10 साल गोवा में रहने की वजह से कोंकणी, मराठी और अंग्रेजी का जो वहाँ पे वर्चस्व है, उससे मैं जुड़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई यहाँ की संस्कृति पूरे

0: भारत से अलग है, लेकिन फिर भी सब में एकता का भाव जो है वही है। और जो चीज़ आज हम हर राज्य में करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे हम UCC के नाम से जानते हैं
1: जी,
0: गोवा ऐसा प्रदेश है जहाँ की शुरू से UCC लागू है
1: जी।
0: तो ये एक ऐसा है कि जिसको कि देख के आप कह सकते हैं कि वहाँ की जो परंपराएं हैं उनको भी पूरे देश में लागू करने से काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा, ऐसा लगता है।
1: ये फायदा तो बहुत बार समय के साथ ज्यादा मुखरित हो पाता है
0: जी।
1: लेकिन आपसे ये जरूर हम जानना चाहेंगे, या यूं कहिए कि ये फायदा लेना चाहेंगे कि 72 से लेके 2026 तक का जो वक्त है
0: जी,
1: इसमें आपने 10 रेडियो स्टेशंस
0: जी
1: का अनुभव भी पाया है और अलग अलग पदों पर कार्य किया है, तो यदि हम क्रमिक बदलाव की बात करते हैं तो वो क्या क्या चीज़ें थीं जो समय के साथ बदलती गईं और उसमें हमारे लिए क्या कुछ और बेहतर हुआ, हमारे लिए यानी रेडियो के प्रसारण की दृष्टि से।
0: देखिए, रेडियो के प्रसारण की दृष्टि से यदि कहा जाए तो जिस समय मैं आया उस समय केवल पत्रों पर आधारित ही जो प्रतिक्रियाएं थीं वो हम लोग प्राप्त करते थे
1: जी।
0: और उस समय भी हमें बड़ा आश्चर्य होता था कि पूरे पूरे कमरे के जो रैक्स होते थे वो पूरे पूरे पोस्टकार्ड से भरे रहते थे
1: जी।
0: तो हमें ये छांटना मुश्किल होता था कि ये कौन से पत्र हम शामिल करें कौन से नहीं शामिल करें। लेकिन ये क्रम जो है काफी सालों तक चला
1: जी।
0: और हर क्षेत्र में, चाहे वो जिस केंद्र में भी मैं रहा, ये करीब करीब 80s-90s तक ये क्रम चलता रहा।
1: हालांकि अभी भी
0: है,
1: चल रहा
0: अभी
1: है,
0: भी है, लेकिन
1: एक
0: अब
1: धार के रूप
0: जी
1: में।
0: हाँ, अब सोशल मीडिया के इतने प्लेटफॉर्म आ गए हैं कि लोग ये सोचते हैं कि पत्र लिखने से अच्छा है कि हम अपनी बात तुरंत पहुंचा दें, तो इस कारण से ये एक बदलाव देखा। दूसरा, आज हम लोग ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं
1: जी।
0: पहले हम लोग जिसको आउटसाइड ब्रॉडकास्ट कहते थे, ओबी रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग बड़ी बड़ी मशीनें लेके जाया करते थे, जो आज आप सोच भी नहीं सकते हैं उतनी बड़ी बड़ी मशीनें जो है ले जाना पड़ता था रिकॉर्डिंग करने के लिए। किसी भी व्यक्ति की यदि बाहर रिकॉर्डिंग करनी है, वो आने में सक्षम नहीं है स्टूडियो, तो हमें वो मशीनें लेके जाना पड़ता था और उनकी रिकॉर्डिंग करते थे और फिर प्रसारित करते थे
1: जी।
0: मैं आपको ये बताऊं कि 72 से 76 तक तो मैं कैजुअल रहा, लेकिन 76 से मैं नियमित आकाशवाणी का एम्प्लॉई हो गया था और मेरी पहली पोस्टिंग अंबिकापुर में हुई थी, जो बिल्कुल ट्राइबल जगह थी और उस समय तो बिल्कुल ही ट्राइबल थी। मैं बल्कि मजाक में कहा करता था ये 250 सड़क का शहर है क्योंकि वहाँ 2 सड़क मेन थी और एक छोटी सी सड़क थी जिससे आकाशवाणी का रास्ता था
1: जी।
0: तो ये 250 सड़क का शहर जो है जहाँ मैं आया हूँ, और भोपाल से ही गया था, तो शुरू में तो बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ के लोगों की प्रतिक्रियाएं देखी, क्योंकि वहाँ लोग सोच नहीं सकते थे कि आकाशवाणी भी यहाँ आ सकता
1: है।
0: हम लोग जब सड़क पे आकाशवाणी के कुछ लोग जाया करते थे तो लोग दरवाजा खोल खोल के देखा करते थे, वो देखो आकाशवाणी के लोग जा रहे हैं। और जिस दुकान में भी घुसते थे उस दुकान में इतनी खातिर होती थी कि यदि हमें कोई चीज पसंद नहीं भी है तो भी खरीदनी पड़ती थी।
1: अच्छा,
0: तो ये जो है एक हम लोग को बड़ा अच्छा अनुभव वहाँ पे मिला। और वहाँ जब 77 में मैं अंबिकापुर में था तो पहली प्रधानमंत्री की यात्रा वहाँ मोरारजी देसाई जी की थी।
1: अच्छा,
0: जशपुर एक जगह है अंबिकापुर के पास, तो जशपुर में वो आ रहे थे तो वहाँ मेरी ड्यूटी लगाई गई थी। मैं 1 साल पुराना था तो मुझे इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन एक पैक्स इंचार्ज भी साथ में थे और 3 दिन पहले जशपुर की यात्रा शुरू कर दी थी हम लोगों ने वहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि वो ट्राइबल एरिया है, जंगलों से होके जाना पड़ता था। तो वहाँ जब पहुँचे हैं, फिर रिकॉर्डिंग हुई है वहाँ पर उनकी, तो वो मेरी पहली एक VIP रिकॉर्डिंग थी जो मुझे हमेशा याद रहती। उसके बाद तो मैंने लाल किला और राजपथ से जब कमेंट्री की तो सारे ही प्रधानमंत्रियों को देखा सामने से, लेकिन वो जो पहली हमने जो कवरेज किया था वो एक अपने आप में एक अलग अनुभव था।
1: अनुभवों की इस यात्रा में ऐसी ही कोई और घटना या कोई एक ऐसा संस्मरण जो आपकी कार्य प्रणाली को नई दिशा देता हो या एक नए मोड़ से गुजरा हो, कुछ ऐसी याद है? और
0: देखिए, यादें बहुत हैं
1: जी,
0: लेकिन जब अंबिकापुर से मैं जबलपुर आया तो जबलपुर उस समय बहुत बड़ा शहर लगता था।
1: अच्छा,
0: और वहाँ की चकाचौंध, जब मैं अंबिकापुर जाया करता था तो स्टेशन से देखा करता था ट्रेन से कि कितना बड़ा शहर है। और जब वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई अंबिकापुर के बाद में, तब वहाँ का एक अनुभव अलग था। वहाँ पे लोग स्टूडियो में आराम से आया करते थे और बड़े बड़े हरिशंकर परसाई जैसे हास्य लेखक उनकी रिकॉर्ड

0: रिकॉर्डिंग करने का मौका मिलता था और भवानी प्रसाद जी का रिकॉर्डिंग करने का मौका मिलता था। इस तरह जो भी लोग आते थे जबलपुर, वहाँ पे मेरे साथ में मेरे साथी लक्ष्मेंद्र चोपड़ा भी उस समय मेरे ही साथ थे, तो हम दोनों मिलके जो हैं वो बहुत प्रोग्राम बनाया करते थे। और बदलाव की दृष्टि से कहूँ तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया था जिसका नाम था बोलता खत।
1: अच्छा।
0: बोलता खत में ये था कि हम रोज किसी भी एक रिश्ते के खत लेते थे, जैसे माँ बेटे को लिख रही है, या बेटा पिता को लिख रहा है, या बहन को भाई लिख रहा है, या जीजा साली को लिख रहा है, या पत्नी पति को लिख रही है। तो वो बोलता खत में पत्र जो है वो 2 मिनट का पत्र होता था।
1: अच्छा।
0: और बिल्कुल जैसे कोई उस समय चिट्ठी आया करती थी, जिस तरह आप धीरे धीरे चिट्ठी पढ़ते हैं ना, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, इस तरह से जो पढ़ते हैं ना, उसी स्टाइल में वो प्रोग्राम मैं पेश करता था।
1: अच्छा।
0: और उसके बाद उससे संबंधित एक गाना, तो वो प्रोग्राम बहुत पॉपुलर हुआ उस समय। तो मैं बता रहा हूँ कि क्या महत्व था पत्रों का उस समय, कि उससे संबंधित हमें एक कार्यक्रम भी रखना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था लोगों के दिल में भी, और लोग उससे जुड़े बहुत ज्यादा।
1: जी, श्रोताओं को प्रसारण से जोड़ना, श्रोताओं को आकाशवाणी से जोड़ना और जुड़े रखना। जुड़ते तो श्रोता बहुत तेजी से हैं, क्योंकि निश्चित रूप से जो चीज लगातार आपके घर तक पहुंच रही है, उसने अपनी पैठ बना ली है, वो जुड़ाव तो रहता है। लेकिन ये जुड़ाव बरकरार रहे, उन्हें नया कुछ मिलता रहे, उन्हें उनके आसपास का मिलता रहे, और वो बदलाव के साथ भी चीजों को महसूस करते रहें, इस सारी प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए किस तरह की कार्य प्रणाली हो और किस तरह की एक सोच होनी चाहिए आज भी?
0: देखिए, उस समय जो एक नई प्रणाली शुरू की गई थी, 2-way ट्रांसमिशन, आज हम फोन इन प्रोग्राम बोलते हैं जैसे, या हम दूसरी तरह से लोगों से बात कर सकें, तो उस समय ये प्रोग्राम जब शुरू किया गया तो लोगों को बहुत पसंद आया कि केवल ये नहीं है कि रेडियो अपनी बात कह रहा है, और किसी ने कहा भी है कि कम्युनिकेशन वो नहीं होता जो हम बोलते हैं, कम्युनिकेशन वो होता है जो हम श्रोता को समझा पाते हैं या श्रोता समझ पाता है, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। तो जब ये 2-way ट्रांसमिशन का प्रचलन शुरू हुआ, तब ये बहुत पसंद किया जाने लगा रेडियो में। लोग इंतजार करते थे कि हम अपनी बात जो है कैसे कहें, किसी एक विषय को भी कभी कभी रख देते थे, कभी कोई मनोरंजन की बात को विषय रख देते थे, कभी किसी की कोई भी समस्या हो उसकी बात हम करते थे, और फिर उसका हम सेग्रीगेशन करते थे और बताते थे इस तरह की समस्या का समाधान आपको इस दिन हम बताएंगे, इस तरह की समस्या का समाधान हम आपको इस दिन बताएंगे, ताकि लोग हर दिन जुड़े रहें रेडियो से। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। आज हमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम था उस समय के हिसाब से, लेकिन उस समय चूंकि वही साधन थे, जैसे आज हम मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते, उस समय हम पत्रों के बगैर नहीं रह सकते थे। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चेंज था जो आज भी कई जगह चल रहा है, बल्कि विविध भारतीयों में फोन इन प्रोग्राम आज भी चल रहे हैं, यहाँ भी चल रहे हैं, सब जगह चल रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कदम था।
1: प्रोग्रामर की दृष्टि से वो क्या चीज आप महसूस करते हैं जो आज के समय में होनी चाहिए और जो हमारे इस गौरवशाली इतिहास को और ऊंचाइयां दे सकती है?
0: देखिए, डेविड विलियम एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, सोशल साइंटिस्ट
1: जी,
0: उन्होंने कहा था यदि आप लोगों से जुड़े रहना चाहते हैं, यदि आप अपने मन को हल्का रखना चाहते हैं, यदि आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो रेडियो सुने।
1: अच्छा।
0: तो ये एक बात जो है वो 100 साल पहले कही गई है, मतलब रेडियो के आविष्कार के जस्ट बाद में, तब उन्होंने कहा था, क्योंकि आपको पता है कि मार्कोनी ने 1901 में रेडियो का आविष्कार किया। शुरुआत रेडियो तरंगों की तो 1887 से हो गई थी,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन वो केवल समुद्र में संदेश पहुंचाने के लिए होता था। जब रेडियो का आविष्कार हुआ, तब अमेरिका और फ्रांस ने इसका प्रसारण शुरू किया, खासतौर से सबसे पहले एफिल टावर से म्यूजिक प्रसारित किया गया था। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रेडियो से जुड़ाव की इम्पोर्टेंस जो है वो कब समझी गई थी, और आज हम यदि उसी रेडियो को उसी तरह बनाए रखना चाहते हैं, तो आज तो हमारा मोटो भी यही है कि मनोरंजन भी होना चाहिए, सूचना भी होनी चाहिए, शिक्षा भी होनी चाहिए, तो ये चीज़ें जो हैं उसको ही एक तरह से आगे बढ़ा रही हैं।
1: शिक्षा और सूचना की बात यदि हम करते हैं, और मनोरंजन की भी कहिए, तो मनोरंजन थोड़ा सा व्यक्तिगत होता जा रहा है, क्योंकि स्मार्टफोन सबके हाथ में है और साधन बहुत सारे हैं, और सोशल मीडिया के कारण सूचनाओं का भी एक विस्फोट है
0: जी।
1: तो इस दौर में वो क्या चीज हो सकती है जो प्रभावी मनोरंजन या

0: स्वस्थ मनोरंजन दे और सटीक सूचनाएं समय तक पहुंचा सके।
1: देखिए, सबसे पहले हमें अपना विश्वास श्रोताओं के मस्तिष्क में बनाए रखना होगा या बनाना होगा, अगर कहीं लगता है कि कम हो रहा है। यदि वो विश्वास बना रहेगा तो वो जो हम सूचना प्रदान कर रहे हैं उसी पर विश्वास करेंगे। आज इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। आज देख रहे हैं कि यदि लोगों के घुटने में दर्द हो रहा है तो आप खोलेंगे तो आपको घुटनों के दर्द की ही सारी दवाएं मिल जाएंगी। अब वो कितनी सच्ची है कितनी झूठी है किसी को नहीं मालूम, लेकिन यदि आकाशवाणी से कोई चीज प्रसारित होगी और उसमें जो चीज बताई जाएगी उस पर जो विश्वास लोग करेंगे, तो ये विश्वास बनाए रखने का जो काम है ये हमें अपना बनाए रखना चाहिए। और हमें किसी से एक होड़ लगा के कंपटीशन या प्रतियोगिता में नहीं शामिल होना है।
0: जी,
1: लोग हमसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम जो हैं वो अपनी तरह से प्रसारण करें, उसी से हमारी पहचान बनेगी और वही पहचान हमें आगे ले जा सकती है।
0: आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो आपका कमेंट्रेटर वाला एक पक्ष था, उस पक्ष की तरफ जुड़ने की कोई खास वजह रही या ये आपके शौक का ही विस्तार था और उस प्रक्रिया में आप शामिल हुए?
1: नहीं, ये एक नकल एक्चुअली मैं शुरू से नकल करने की सोचता था। जब वो कोई बोलता था रेडियो पे, खास तौर से उस समय जसदेव सिंह वगैरह की आवाज़ सुनते थे तो वो ऐसा लगता था कि मैं क्या बोल सकता हूँ, तो अकेले में बहुत बोलता था। लेकिन जब मैं शिमला में 1988 में गया, शिमला मेरी पोस्टिंग हुई जलगांव से, तो वहाँ एक स्टेशन डायरेक्टर थे प्रेम प्रकाश सेतिया
0: जी,
1: आज नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि तुमसे जब बात करता हूँ तो ऐसा लगता है कि तुम बोल सकते हो। तो वहाँ का स्टेटहुड डे था हिमाचल प्रदेश का,
0: जी जी,
1: कांगड़ा में, तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ वहाँ बोलो और मैं देखता हूँ जो होगा मैं निपटूंगा। उन्होंने जो विश्वास दिलाया उससे मेरे मन में और विश्वास आया और मैंने वो कमेंट्री की और बहुत अच्छी रही। और वो जब कमेंट्री रिकॉर्ड होके उन्होंने कहा मैं इसको दिल्ली भेज रहा हूँ, दिल्ली भेजा तो मैं नेशनल कमेंटेटर के रूप में ही पहली बार में ही अप्रूव हो गया।
0: अच्छा,
1: तो उसके बाद तो फिर मौकों की कमी नहीं थी। लेकिन मेरा ये था कि मैं केवल नॉन स्पोर्ट्स कमेंट्री करता था और उसमें कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण आयोजन नहीं है भारत का जिसकी की कमेंट्री मैंने ना की हो, चाहे वो रथ यात्रा हो, फिल्म फेस्टिवल हो, टोटल सोलर एक्लिप्स हो, या मथुरा की जन्माष्टमी हो, आपने राम जन्म भूमि से कमेंट्री हो राम जन्म की, राजपथ से रिपब्लिक डे की कमेंट्री, रेड फोर्ट से स्वतंत्रता दिवस की कमेंट्री, तो हर तरह की कमेंट्री मैंने की। और प्लस कुंभ मेला जितने भी आयोजित हुए हैं, चाहे वो उज्जैन में हुए हों इस पीरियड में, चाहे इलाहाबाद में, तो वो मैंने सबकी कमेंट्री लाइव की है, तो उससे एक बड़ा विश्वास रहा।
0: जी, वास्तव में लाइव कमेंट्री का रोमांच आज भी अलग तरह का होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और जितना लाइवली या जितना सजीव वर्णन अपन कर पाते हैं और लोगों तक उसका असर पड़ता है या वो प्रभावित होते हैं, वो वास्तव में एक बहुत बड़ी कला होती है। तो इतनी सारी लाइव प्रसारण के बीच में क्या कोई घटना या कोई ऐसी बात है जिसे आप सुनने वालों के साथ शेयर करना चाहेंगे?
1: देखिए, सबसे ज्यादा कमेंट्री मैंने रथ यात्रा की है।
0: जी,
1: और रथ यात्रा आपको पता है कि 1.5 किलोमीटर की एक सड़क है जिसको कि बड़ी सड़क बोलते हैं, ग्रैंड रोड बोलते हैं, और वहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा लोग उस 1.5 किलोमीटर की सड़क पे समा जाते हैं। अब आप टीवी में जब कमेंट्री कर रहे हैं तो वहाँ आप बोल रहे हैं कि यहाँ बहुत लोग हैं, तो फ्रेम में जितने लोग दिखते हैं उतने ही लोग कल्पना नहीं कर पाते उतनी, जितना दिखता है उनको उतने ही देख पाते हैं। लेकिन जब हम रेडियो में बोलते हैं ना कि मैं देख रहा हूँ कि 1.5 किलोमीटर की इस सड़क पर 10 लाख दर्शनार्थी श्रद्धालु कतारबद्ध होकर यहाँ पर खड़े हुए हैं कि कब रथ बाहर आए, कब भगवान जगन्नाथ उनको दर्शन देने के लिए स्वयं बाहर आए, तो ये जब चीजें हम बोलते हैं ना तो लोगों की कल्पना अथाह कल्पना हो जाती है। लोग समुद्र जैसी कल्पना करने लगते हैं कि क्या ह्यूमन सी बन गया है क्या वहां पर। हर तरह से जो कल्पना का एक विषय है वो जो रेडियो देता है ना वो कोई और माध्यम दे ही नहीं सकता।
0: आपके एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय कह लीजिए या एस्पेक्ट की बात हो सकती है, वो ये है कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन वाला कार्य भी बहुत लंबे समय तक संभाला है।
1: जी,
0: तो एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोग्रामर के लिए कितना आसान या मुश्किल हो सकता है, या क्या कुछ चीजें हो सकती हैं जो प्रोग्रामर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है?
1: देखिए, ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेटर कोई एक

0: व्यक्ति नहीं हो सकता।
1: जी
0: आप अगर हैं एडमिनिस्ट्रेटर तो जब तक आपके सबॉर्डिनेट्स या आपके साथी या आपके जो हायर बॉसेस आपका साथ नहीं देंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर कोई अच्छा कहला रहा है एडमिनिस्ट्रेटर तो वो लकी इसलिए है कि उस समय उसके साथ अच्छे लोग भी थे और वो अच्छे लोगों के कारण वो नाम उसका हो रहा है, लेकिन रियली क्रेडिट जो है उनको जाता है जो उनके साथ काम कर रहे थे या जो उनको ऊपर से सपोर्ट कर रहे थे। तो इसलिए मैं कभी नहीं कहूँगा कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ मैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अच्छी टीम के साथ मैंने काम किया है, ये मेरी किस्मत अच्छी थी और इस वजह से लोग अगर किसी चीज़ के लिए याद करते हैं। ख़ासतौर से मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो आरटीआई में था।
1: जी जी।
0: जो आरटीआई में मैं पूरे मध्य प्रदेश में बल्कि दिल्ली तक में लोग मुझसे राय मांगा करते थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम अगर अपील में गए हों तो हम जीते ना हों, मतलब एक भी केस ऐसा नहीं है मेरे कार्यकाल में कि हम लोग ना जीते हों। मतलब मैं समझता हूँ वो थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है। कहते ना अगर आपको समय के साथ चलना है तो आपको अपडेट होते रहना पड़ता है। उस समय मेरी उम्र 60 हो चुकी थी करीब करीब, लेकिन अपडेट होने के लिए भी कोई उम्र नहीं होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो चलता रहता है क्रम, और वही कारण है कि जो आज आप कह रही हैं उसका क्रेडिट सबको है।
1: तो ये माना जा सकता है या यूं कहिए कि मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी एक टीम वर्क है।
0: जी बिल्कुल।
1: और हमारी अच्छी टीम ही अच्छे प्रशासन की नींव रख सकती है या प्रशासन दे सकती है,
0: बिल्कुल
1: मान सकते हैं। इस समय मतलब वर्ष 2026 में जो रेडियो का एक 90 वर्षीय उत्सव मन रहा है, इसको लेके क्या विचार या क्या भावना आपके मन में आती है?
0: बहुत अच्छी बातें दिमाग में आती हैं, क्योंकि 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो बना, प्रसारण तो उससे पहले शुरू हो गया था 23 जुलाई 1927 में बॉम्बे में, जो आईबीसी कंपनी थी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी एक, उसने शुरू किया था। लेकिन 1935 में बीबीसी से एक व्यक्ति यहाँ भेजे गए थे जिनका नाम लॉयनल फील्डन था। लॉयनल फील्डन ने यहाँ पे जो पहले यहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष थे, सीईओ जिसे कह सकते हैं आज की उसमें, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो बनाने में उनका श्रेय है। और 1936 में 8 जून को भारतीय रेडियो यानी कि ऑल इंडिया रेडियो के नाम से प्रसारण शुरू हुआ, और उस समय केवल 9 रेडियो स्टेशन थे पूरे भारत में। आज़ादी के समय 3 चले गए पाकिस्तान में, 6 भारत में रह गए, और आज के लोकल रेडियो स्टेशन मिला के 500 से ऊपर रेडियो स्टेशन है, 23 भाषाएं, 146 बोलियां इनमें प्रसारण करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब क्रेडिट वाली बात है कि इतने पीरियड में इतना बढ़ जाना। आज हमें लगता है 90 वर्ष बहुत लंबे हैं, लेकिन जो हमारे अचीवमेंट्स आप देखेंगे वो उससे बहुत बड़े हैं। तो 90 वर्ष में आसान नहीं है इतना कुछ फैलाना जो हमने करके दिखाया है, और इसी कारण आज हम श्रोताओं के मन में रच बस गए हैं,
1: उनके घर का उनके परिवार का एक हिस्सा सा बन गए हैं।
0: जी। क्योंकि रेडियो जो है वो ऐसा है कि यदि कोई भी समस्या आती है, कोई भी मुसीबत का समय आता है, चाहे वो भूकंप हो, तूफान हो, सुनामी हो, कुछ हो, उस समय कोई माध्यम काम नहीं आते हैं, लेकिन रेडियो अपना प्रसारण जारी रखता है, बल्कि रात दिन जारी रखता है ताकि लोगों को अपडेटेड सूचना मिल सके। तो ये एक बहुत बड़ा काम है और इसके कारण रेडियो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता।
1: भोपाल के परिदृश्य में यदि बात करते हैं तो कई सारी प्रमुख घटनाएं हुई हैं, जैसे गैस ट्रेजेडी वाला समय गुजरा है या प्रधानमंत्री की मृत्यु के समय का दौर रहा है, तो इस समय में क्या आपका कार्यकाल आकाशवाणी भोपाल में रहा है?
0: नहीं, इत्तेफाक से मैं उस समय यहाँ नहीं था, मैं जलगांव में था, लेकिन मेरा मन जो है वो भोपाल में ही था उस समय भी, क्योंकि मेरा पूरा परिवार भोपाल में था।
1: अच्छा।
0: मैं अकेला जलगांव में था उस समय।
1: जी।
0: लेकिन उस समय भी रेडियो ने, जो आकाशवाणी भोपाल ने कार्य किया, रात दिन यहाँ से प्रसारण हुए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वैसी मुसीबत तो भगवान ना करे कभी और आए, लेकिन बहुत बड़ी मुसीबत थी जिसमें कि कितने लोग ने अपने प्राण दिए, तो ये एक बहुत बड़ा कार्य था जो आकाशवाणी ने करके दिखाया था।
1: एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि रेडियो को आपदा नियंत्रण के लिए भी बहुत बेहतर उपयोग में लाया जाता है, या यूं कहिए कि वो एक उसका स्तंभ बन गया है, जिस तरह वो अच्छी खबरें, सही खबरें लोगों को पहुंचा रहा है, ठीक उसी तरह आपदा प्रबंधन

0: भी रेडियो का एक बहुत बड़ा आस्पेक्ट है, तो उससे जुड़ी हुई कोई घटना आपके जहन में है क्या?
1: वही तो मैंने कहा ना कि आपदा के समय जो है वो रेडियो बहुत बड़ा, जैसे कि गुजरात में जब भूकंप आया था उस समय भी रेडियो ही केवल चल रहा था और रेडियो ने ही लोगों को सारी सूचनाएं दी। और सुनामी जब आया था दक्षिण में तो उस समय भी यही हाल था, मतलब रेडियो ही सुन रहे थे लोग, कि उसी पर विश्वास था लोगों को। तब सोशल मीडिया नहीं था इतना, ना इतने प्राइवेट चैनल थे
0: जी।
1: तो ऑल इंडिया रेडियो का जो उस समय योगदान था वो कभी भी कोई नहीं भूल सकता। तो ऐसा विशेषकर मेरे साथ तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी समस्या मूलक जगह पर मैं रहा हूँ और उस समय कुछ ऐसी घटना हुई हो, लेकिन हमेशा रेडियो से जुड़े रहने के कारण जहाँ भी कोई समस्या आई है तो रेडियो के बारे में सब कुछ जानना जो है, उत्सुकता जो है वो हमेशा रही, इसलिए जानकारी हमेशा रही।
0: निश्चित रूप से चलते चलते हम ये ज़रूर आपसे जानना या लेना चाहेंगे कि वो क्या शुभकामनाएं आप हमें, आकाशवाणी को और सुनने वालों को देना चाहेंगे जो इस उत्सव की बेला में महत्वपूर्ण हो जाती है।
1: देखिए, सबसे बड़ी बात वही है जो मैंने पहले कही कि हमें एक दूसरे से जुड़े रहना है और उस जुड़े रहने के बीच में हम जो भी नया से नया होगा वो हम श्रोताओं के बीच लाएंगे। एक चीज़ और है, अभी एक नई टेक्नोलॉजी है DRM टेक्नोलॉजी
0: जी।
1: DRM टेक्नोलॉजी के सेट्स भी आने लगे हैं और उससे भी आज डिजिटल प्रसारण हो रहे हैं। DRM का मतलब है डिजिटल रेडियो मुंडियाल। DRM जो टेक्नोलॉजी है ये एक आकाशवाणी ने अपनाई है। तो इस तरह की जो नई नई टेक्नोलॉजी हैं इनको अपनाते रहेंगे हम, लोगों से जुड़े रहेंगे, लोगों से जुड़ने का पूरा प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे श्रोता हमारे साथ बंधे रहेंगे। और ऐसा मैं सोचता हूँ और मेरी शुभकामनाएं भी सभी श्रोताओं के साथ हैं, आप लोगों के साथ हैं जो आकाशवाणी में इस समय कार्य कर रहे हैं, कि वो अपने आप को श्रोताओं से जोड़े रखें।
0: श्रोताओं का जुड़ाव, श्रोताओं का विश्वास और श्रोताओं से संबंधों का ही आधार रेडियो है। लेकिन यहाँ पर न चाहते हुए भी एक प्रश्न और पैदा हो रहा है कि जिस तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, क्या उसमें प्रोग्राम या कार्यक्रमों की संवेदनाएं और जगह कम होती जा रही है या उन्हें किसी नए रूप में, नए डिजाइन में सामने आना?
1: देखिए, हमेशा नए डिजाइन में आपको आना ही पड़ेगा। जब तक आप पुराने उसमें रहेंगे तब तक आप नहीं जुड़ पाएंगे। देखिए, समय आगे बढ़ता जाता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता
0: जी।
1: यदि आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो समय आपको पीछे छोड़ देगा। और इस चीज़ को हमें हमेशा समझना है और शायद हम अभी तक समझे भी हैं इसको, तो इसीलिए हम साथ रहे हैं
0: जी।
1: और ऐसा ही हमें अपना संबंध बनाए रखना होगा, अपनी टेक्नोलॉजी को हमेशा परिमार्जित करते रहना पड़ेगा।
0: ये टेक्नोलॉजी चाहे तकनीकी हो या कार्यक्रमों के प्रसारण की।
1: जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
0: समय सीमित है और समय ही बार बार ये इशारा कर रहा है कि इस बातचीत को विराम दिया जाए, अन्यथा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपकी उपस्थिति में जहन में आ रही हैं कि जिन्हें जाना और पूछा जाना चाहिए। लेकिन आपके इस कीमती वक्त का हम आपको धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बीच बीच में यूं ही मार्गदर्शन और आपकी शुभकामनाएं हमें मिलती रहेंगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अमिता जी, और हमें आपने श्रोताओं से एक बार फिर जुड़ने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्षों के गौरवशाली सफर पर आकाशवाणी भोपाल की विशेष प्रस्तुति, और इसमें आपने सुना यादें, अनुभव और बदलता प्रसारण परिदृश्य। इस विषय पर आकाशवाणी के पूर्व सहायक निदेशक अनिल श्रीवास्तव जी से अमिता त्रिवेदी की बातचीत आप सुन रहे थे। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:30 हुए हैं और ये समय है फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत में हम आपको सबसे पहले आप सुनवा रहे हैं गंगा की सौगंध फिल्म का एक गीत। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और साथियों की हैं। अनजान ने इस गाने को लिखा है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

फिल्म अंजाम से आवाज़ें हैं आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। विश्वेश्वर शर्मा का लिखा हुआ ये गाना है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म मेरे सनम से। आवाज़ें हैं आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। मजूर सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, ओपी नय्यर का संगीत है।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म गरम मसाला से, आवाज़ एक बार फिर आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की है। मजरूर सुल्तानपुरी का लिखा गाना है, आर डी बर्मन का संगीत है, सुनते हैं ये गीत।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बेराग का एक गाना। आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की हैं। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

0: कौन है?
1: आशिक,
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।
2: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दौरे के तीसरे चरण में कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के पास गणना प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करने का विकल्प भी होगा। शिक्षा मंत्रालय ने बीच में ही स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले, विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की भी समीक्षा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आत्मनिर्भरता भारत की अगली पीढ़ी की विकास यात्रा तय करेगी। नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश क्वांटम तकनीक, डीप टेक फाइनेंसिंग और उद्योग आधारित शोध के जरिए नवाचार संचालित विकास के नए दौर की ओर बढ़ रहा है। कार्यक्रम में अनुसंधान विकास, नवाचार, RDI निधि योजना के तहत 5 परियोजनाओं के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। IPL क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। सबसे पहले आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों पर एक नजर डालते हैं। रात 8 आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत चित्र भारती। ये कार्यक्रम होगा 9:30 पर। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। साथ ही आप सुनेंगे 10 शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे पंडित केवल्य कुमार गौरव का गाया ख्याल गायन। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। और 7:21 पर किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा होगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होगा। और 7:45 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होगा। ये थे आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रम। और अब हम नजर डालते हैं कल यानी रविवार को प्रसारित होने वाले आकाशवाणी मध्य प्रदेश के मुख्य कार्यक्रमों पर। 11 आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 12 का समय है आपकी फरमाइश का। और 12:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत पंचतंत्र की चौथी कड़ी। एक बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम, 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम और युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा और ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होंगे। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं दोपहर 2:00, 2:50 पर, शाम 5:33 पर, 6:00 और रात 8:30 पर। 2:30 पर बच्चों का कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होगी। 8:00 हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुर्खियों में और 8:15 पर आप सुनेंगे डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। इसमें आप सुनेंगे पीएम श्री योजना, इस विषय पर जानकारी वाचक हैं अमिता त्रिवेदी और प्रस्तुतकर्ता मनीष गजभिये। रात 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा और रात 10:00 आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवासरी सभा। कलाकार होंगे विवेक सोनकर, इनका आप सुन सकते हैं बांसुरी वादन। ये कार्यक्रम भी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। और कल सुबह प्रसारित होने वाले आकाशवाणी भोपाल के मुख्य कार्यक्रम इस तरह हैं। सुबह 7:20 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। 8:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होता है सुरमई सवेरा। लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 9:15 पर। इसमें कलाकार हैं रहीमुद्दीन, इनसे आप सुनेंगे भोजपुरी गीत। और 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहान। 10:00 आप सुन सकते हैं जिले की चिट्ठी और 10:05 पर हम आपको सुनवाएंगे सामुदायिक गान शिक्षण पाठ। इसमें आप सुनेंगे असमिया गीत, रचना सतीश दास की है।

10:30 पर फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं और कल शाम 7:21 पर हम आपको सुनवाएंगे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा और 7:30 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले आज और कल के मुख्य कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत की न्यायपालिका को 24 घंटे काम करने वाली व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाना होगा, कहा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में आज शनि जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय ऊर्जा

0: संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा, आज भारत में हर महीने 20 बिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी पूरी दुनिया में हो रहे डिजिटल ट्रांजैक्शन में आधे से ज्यादा सिर्फ भारत में हो रहे हैं।
1: आज भारत में हर महीने 20 बिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी पूरी दुनिया में हो रहे डिजिटल ट्रांजैक्शन में आधे से ज्यादा केवल भारत में हो रहे हैं। और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है।
0: उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि भारत की न्यायपालिका को अब अस्पतालों की तरह 24 घंटे काम करने वाली व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना होगा। डिजिटल बदलावों के इस दौर में आम नागरिकों का भरोसा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। आज जबलपुर में आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार में उन्होंने कहा कि तकनीकी प्लेटफॉर्म ऐसे हों जिन्हें ग्रामीण और तकनीक से कम परिचित लोग भी आसानी से समझ सकें। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री बेघवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की यह पहल साधारण नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले डिजिटल पुलिस नेटवर्क के उदाहरण के रूप में चंडीगढ़ का नाम लिया जाता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश मिसाल बनेगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि विज्ञान और तकनीकी ने मानव जीवन को सरल बनाया है और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने में न्यायपालिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: खास करके आज के समय में जब FIR से लेकर के बीच की बहुत सारी कड़ी होती है, फॉरेंसिक लैब से लेकर के कई सारे प्रकार के तंत्र रहते हैं, उन सब के आधार पर हम त्वरित गति से जो जिसकी आवश्यकता उसको लाभ मिले उस तक मदद पहुंचाए। क्योंकि न्याय का मतलब ही है विलंब से छुट्टी, न्याय का मतलब ही है अन्याय से मुक्ति।
0: शिक्षा मंत्रालय ने देश में स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में जीव विज्ञान के प्रश्नपत्र लीक से जुड़े एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका है। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा newsoneair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सोशल मीडिया संदेश में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार बेहतर निगरानी, व्यापक परीक्षण, बेहतर उपचार सुविधाओं और व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यम से डेंगू नियंत्रण प्रयासों को मजबूत करना जारी रखे हुए है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि डेंगू बीमारी से बचाव के लिए स्वच्छता, जागरूकता और सतर्कता बहुत जरूरी है। स्वच्छ वातावरण ही स्वस्थ जीवन का आधार है। प्रदेश के कटनी जिला चिकित्सालय सहित सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शिविरों का आयोजन कर मरीजों की निशुल्क डेंगू और मलेरिया की जांच की गई। धार जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक बोधशाला में प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आज सुबह श्रद्धालुओं और अलग अलग समितियों के अधिकारियों ने शांतिपूर्ण माहौल में दर्शन और पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने कल ऐतिहासिक फैसले में भोजशाला को राजा भोज के समय का वाग्देवी का मंदिर माना और हिंदू पक्ष को यहां पूजा का अधिकार दे दिया है। धार जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने कहा कि शहर में शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं।
4: शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो, आम जनता अपना रूटीन वर्क रेगुलर जो रूटीन वर्क कार्य करे वो कर सके, किसी प्रकार का कोई भय ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए लगातार शहर में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। लगभग 1000 का फोर्स हमें उपलब्ध कराया है जिसको विभिन्न फिक्स पैकेट और सेंसिटिव एरियाज में लगाया गया है। देखिए जैसे कि सीसीटीवी सर्वेलेंस के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से, सोशल मीडिया पर लगातार पुलिस की नजर बनी हुई है। किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि या कोई भी इस पर पोस्ट करता है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
0: राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में आज शनि जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। 13 साल बाद एक विशेष संयोग बना है जहां शनि जयंती, शनिचरी अमावस्या और वट सावित्री व्रत एक ही दिन मनाए जा रहे हैं। इस महासंयोग के मौके पर शनि मंदिरों और पवित्र नदी घाटों पर तड़के से ही लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आगरमालवा जिले में शनि जयंती पर शनि मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के शहडोल, चंबल, रीवा, जबलपुर, सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। खंडवा, रतलाम सहित कई जिलों में लू का प्रभाव रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान खंडवा, रतलाम सहित कई जिलों में लू चलने की संभावना जताई है। वहीं डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांडुर्णा जिलों में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के मुख्य अभियंता शैलेंद्र शुक्ला द्वारा सागर जिले के खुरई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया गया। बच्चों में मानसिक क्षमता, स्मरण शक्ति और ब्रेन एक्सेस कौशल हेतु आगरमालवा में 5 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए आयोजित 10 दिवसीय प्रशिक्षण का आज समापन हो गया। खंडवा में डोड वाली अमावस्या आज श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। सीहोर के बुधनी सिविल अस्पताल में पोषण टोकरी वितरण कार्यक्रम किया और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। शिवपुरी कलेक्टर ने आज बिछोर में सनघट्टा सिंचाई परियोजना अंतर्गत सनघट्टा डैम का निरीक्षण किया। नीमच जिले में आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर जमुनिया कला के औषधालय परिसर में योग एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुना जिले में किसानों को कृषि संबंधी विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से जिले के विकास खंडों में कृषि रथ के माध्यम से जागरूकता अभियान का शुभारंभ आज किया गया। मंडला में आयोजित आदि उत्सव के दूसरे दिन रामनगर में जनजाति संस्कृति, इतिहास और गौरवशाली विरासत की छटा देखने को मिली। संपर्क अभियान 2026 के अंतर्गत अशोकनगर जिले में 11 स्थानों पर विद्युत समस्या समाधान शिविरों का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

चौपाल के इस सवे सुनेन का हमार मनसुख भाई के जथा जोग राम राम राम जोहार। भैया बहनी देखी अपने भारत देश में अलग अलग राज्यन के अलग अलग स्थापना दिवस है। आज हुआ का 16 मई और अजुआ के तारीख का 1975 में 22वें राज्य के रूप में सिक्किम शामिल भ रहा। यह दिन राज्य में चोग्याल राजशाही के अंत

और भारतीय लोकतंत्र में एक पूर्ण राज्य के रूप में विलय के जश्न मनावा जाता है। मनोज हुए के दिन 2026 16 मई का 50वां स्थापना दिवस मनावा जा रहा है। आज सवेरे से गान तान हुन चलन लाग सिक्किम में उत्सव मनावा जा रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। और सिक्किम दिवस के ऐतिहासिक महत्व यह है कि 36वें संवैधानिक संशोधन के जौन माध्यम से सिक्किम भारत के 22वां राज्य बना। गंगटोक और पूरे राज्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम, परेड, आधिकारिक समारोह आयोजित किए जाता है। और कौनों प्रदेश के उत्सव होते ना तो ओमा यह होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम। और सिक्किम राज्य के विशेषता यह है कि यह भारत के पहल पूर्ण जैविक राज्य आए। यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक खूबसूरत हिमालय राज्य आए। भैया बहनी देखी, अंगूठा के आकार के सिक्किम राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीनी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, दक्षिण पूर्व में भूटान से लगा है। सिक्किम नाम ग्याल राजतंत्र द्वारा शासित एक स्वतंत्र राज्य रहा, परंतु प्रशासनिक समस्या के कारण और भारत में जब विलय भा और जनमत के कारण 1975 में जब यह विलय होगा तब एकर यह सिक्किम नाम पड़ गया। और सिक्किम की जनसंख्या जो ही तो भारत के राज्यन में सबसे कम है और क्षेत्रफल में गोवा के बाद सबसे कम है। मानो बहुत छोट का राज्य आइया। भैया बहनी सिक्किम अपने छोट आकार के बावजूद भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी मानो बहुत विविधतापूर्ण है। कंचनजंघा एक नाम सुने हैं ना, दुनिया के सबसे ऊंची चोटी आए। सिक्किम के उत्तरी पश्चिम भाग में नेपाल के सीमा पर है या और एक पर्वत चोटी माँ प्रदेश के कई जगहन माँ आसानी से देखा जा सकत है। या बहुत साफ सुथरा और प्राकृतिक सुंदरता हियन के राजनीति की स्थिरता और विशेषता कारण सिक्किम भारत के देखी हाँ प्रमुख पर्यटन केंद्र हुआ है। पर्यटन केंद्र में एकर गिनती होती। सिक्किम के नागरिक जौन हाँ वो सवय मुख्य त्योहारन जैसे दीपावली, दशहरा इनका मनावा था और कुछ और पाश्चात्य राग संगीत हियन के घरन में अपना पचन का सुने को मिल जाई। और सिक्किम के घर जौन हो था तो हियन के बड़े बांस के ढांचा पर लचीले बांस के आवरण डार के बनाए जा था। आवास का उष्मा के संरक्षण करे के निता गाय के गोबर से लेप करा था। भैया बहनी देखी अब अपना पीछे सोचत हो कि मनसुख भाई बस बत कहाँ में लगे रही। अरे नहीं हम जानी ला के आसनीचर आए ना रंबस वाला दिन आज खूब लोकगीतन के भरमार हुई। वैसा तो अपना पंचे रोज सुनी थे चौपाल में लोकगीत और हद गवैया ऐसा पधारन लाग हमा अपने साथी लोगन के साथ। और जैसा सिक्किम दिवस के खुशी में जगह जगह उत्सव मनावा जा रहा है आई हमहू पंचे खुशी मनाई थे। का कही थी कोमल बहिनी ले मनाई शामिल होता है।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।

0: तुमसे तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
1: भैया बहनी, देखी आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण हुई गए हैं। इन अवसर पर विशेष कार्यक्रम हो रहे हैं, तो हमहू पंचे चौपाल की यादें गांव की बातें लई मनई या सुने एमा मनई बतकहाँ चलाई लागे अधिवक्ता ब्रिजभूषण मिश्रा जी से।
2: अपना परिजन सबका राम राम राम जोहार। अपना परिजन जानी थे कि आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो चुके हैं, तो आकाशवाणी के 90 साल की सफ़र कैसन रहा, वो गांव तक कैसन पहुंचल रही, कैसन होकर पकड़ रही, यह हम जानी थे। आज हमारे साथ मौजूद हैं अपने यहाँ के अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता एडवोकेट ब्रिजभूषण मिश्रा जी, जिनकर उम्र लगभग 58 बरिस ही है। उन्हीं से जानी थे कि अपना रेडियो के बारे में कितना सुनन, कितना जानन, कितना अनुभव करन। ले सुनी थे अपना के हमारे कार्यक्रम में, अपना के बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद प्रणाम। क्योंकि रेडियो का क्या कहे, रेडियो तो एक ऐसा समय रहा कि टीवी सीवी घरे में राहत नहीं रही।
2: हाँ,
3: टीवी के आए के बाद रेडियो में कुछ फर्क पड़ा है, पर कुछ लोग अजुआ वो भाई रेडियो के शौकीन हैं। हमू रेडियो रखे हैं, चौपाल है, जागत गांव हमार, ये मेर के कार्यक्रम कुछ कुछ जब लहान लागत थे तो सुनी थे हमू
2: जी।
3: और पहले तो रेडियो सब कुछ रहा, समाचार खातिर हुआ रहा, दर दरबार के आधार हुआ रहा। गांव में हमार गोविंद पंडित जी एक जन शिक्षक रहे, बाबा रिश्ता के यहाँ
2: जी जी,

0: आपन स्कूल और रेडियो लेके जात रहे हैं साइकिल पे चला, रेडियो हाँ। उनका टंगा रहा है, और जब बीच के छुट्टी हो पीरियड मना रहा तो उतनी देर उनका स्कूलों में रेडियो चल जात रहा
1: जी,
0: इतना इतना शौक रहे। एक जने राम आधार कक्कू रहे, चौपाल के कार्यक्रम के इतना आदि रहे कि चौपाल के टाइम में चाहे भैंसी लगावे खुद पाछे लगावे। हम खुदा नवमी में जब पढ़ाते रहन

0: कदर तो रही रेडियो के मधुरताओ जौन ओकर उद्घोषक वगैरह रही
1: जी जी
0: बहुत मधुर वाणी में उनकर उद्घोषणा रहत रही। रीमा आकाशवाणी हमारे जानू में चालू भय है जब हम जानू खोई चुपन
1: हाँ 77 में
0: हाँ तो मने हम समझे लायक हो गए रहन है
1: जी।
0: मरजातपुर हमारे नगीचे नठ गाँव है
1: हाँ।
0: नवा नवा रेडियो खरीदी ने एक जन उपाध्याय जी
1: जी
0: आओ उनकर मन लड़का खरीद के दीता
1: हाँ।
0: सुनत रहे कौनो कार्यक्रम लाते चौपालय आए
1: हाँ।
0: तो भाई चले के जू ना
1: हाँ।
0: राम राम गुरमेट के चढ़ बैठे रेडियो का सुनाओ
1: अच्छा मनो उनकर मन रहा के वो बताओ
0: ना जाए
1: ये ना जाए
0: हां चलत रह जाए ना पैसा लगा के दादू ले आवा है
1: हां
0: का भे हां कोई गई ये ना पूछी पे इतना जरूर है कि रेडियो हमारे पचन के आधार स्तंभ है समाचार माध्यम बहुत बढ़िया रहा जानकारी बहुत बढ़िया रहा समसामयिक घटनाक्रम पर चर्चा रहबा करा
1: जी
0: खेती बाड़ी पर चौपाल में बात कही सुनाबे के चलन रही उस समय जबकि बात बताई ला है तो बैजू भाई गजाधर भाई ई मेयर के नाम से
1: जी
0: चौपाल हो भाई बैजू भाई अपने नगीचे के हैया वहीं पे पहले नहीं जान रहन के ही है के हाँ बैजू भाई उनका हाँ। नाम कुछ वो ऐसा है दूसर
1: हाँ, दूसर है
0: तो बाद में जानन के ई बैजू भाई अपने नंठे के आए
1: जी
0: ऐसन स्थिति रही रेडियो
1: आज तो लगभग रेडियो लोग सुना था
0: रेडियो सुना था रेडियो के अबहिनो क्रेज है पर नई पीढ़ी में टीवी मोबाइल ज्यादा चढ़ेगा है बाकी रेडियो के क्रेज
1: अब तो मोबाइलों में आवे लागे रेडियो
0: हाँ पर
1: न्यूज न्यूज ऑन एयर ऐप डाउनलोड कर ले तो मैं पूरे हिंदुस्तान के आकाशवाणी केंद्र अपना सुन सकी थे लाइव सुन सकी थे
0: तो अपना के आओ रेडियो पर बत कहा कर अब इतना बचपन में लाई जाए दिन ही सब कहा कि हम बहुत लड़का बाया सो गए यहाँ माने नौवीं पढ़त में हम जेब खर्चा के पैसा से 90 रुपया के रेडियो खरीदे रहा है अब ही ना याद है
1: बिल्कुल
0: पटवारी रहे तो 5 रुपया 10 रुपया 2 रुपया दे दे रहे खर्चा का हम कुछ कंजूस और हम तो हम से कुछ न कुछ बचा ली जैसे कि हमारे एक ठे आदत रही मदद करे के घिन है ये बहिना हमारे भैया है तो एक ठे लड़का के हम मदद यू कर रहा है हमारे सु पाछे पाछे पढ़त रहा कदैला के लड़का है
1: जी जी
0: तो हुआ कुछ गरीब रहा हो मांगे आवे खेती के सीजन भर में आवे तो ओका कुछ बनना उगल्ला तो कुछ ओका सरकारी फीस बहुत का नहीं रही
1: हाँ।
0: तो ऐसे कबो 80 रुपया कबो 90 रुपया मेरे से
1: चली
0: हम देता हूँ रहा
1: अपना हमसे बतकहाओ करें और बहुत बड़ी बात अपना बताएं रेडियो के बारे में के बचपन में हम कुर्चा के पैसा बचाए के रेडियो खरीदें और नेगाँव में हमका रेडियो मिला और गांव में जे लोग रेडियो के शौकीन रहें तू कैसन खेते किसानी में अपन रेडियो ले जाते रहें स्कूल ले जाते रहें हाँ अपना के आकाशवाणी रीवा में बहुत बहुत धन्यवाद
0: प्रणाम।
2: अब हमने देखी या सुनन आकाशवाणी रीवा के विशेष कार्यक्रम चौपाल की यादें गांव की बातें। भैया बहनी हर व्यक्ति चाहत है कि शांति के साथ जीवन व्यतीत होए चाहे देश के लोग हों या विदेश के। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का विश्व शांति दिवस के रूप में मनावा जाता है। विश्व शांति दिवस संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में घंटी बजाए के कीन जात। यह घंटी अफ्रीका के छोड़ के सगले महाद्वीपन के लोगन के द्वारा दान कीनगे सिक्कन से बनी है। घंटी के किनारे में लिखा है पूर्ण शांति अमर रहे। भैया बहनी अंतर्राष्ट्रीय शांति की नीता अलग अलग वर्ष अलग अलग थीम रखी गए है जिसन के 2022 में नक्सलवाद का अंत करो शांति स्थापित करो 2023 में शांति के लिए कार्य वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा 2024 शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना 2025 एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए कभी कार्रवाई करें और यह वर्ष यानी 2026 में एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए अभी कार्रवाई करें। यह थीम है सभी को शांति मिले और देश दुनिया में अगर हर जगह शांति रही तो लोग अमन चैन और खुशी से रही और मनाई ले राजकुमार तिवारी के भगत के आनंद ले और खुशी मनाई

भैया बहनी देखी मिजाजी मनई तो बोला पंचे बहुत दिखे हो पै ताल तलैया मिजाजी न सुने हो न दिखे हो उमा गगरी नहीं बूढ़े दे प्राची शराब के या गीत के जौन भाव है ये सुन के जरूर अपना पंचे समझ जाप।

भैया बहनी, देखी को नहीं चाहे कि मनई सुखी रहा, समृद्ध रहा, और एक नीता सब अपन कर्तव्य करे के साथ साथ देवी देवतन से मनौती मागत। रविमाला सिंह और साथी भवानी अम्बे मैया से ऐसे ने कुछ अपने गीत के माध्यम से वरदान मांग रही।

भैया बहनी देखी, आजकल पर्यावरण चौगिर्दा प्रदूषित हो रहा है। एका बचाव बहुत जरूरी है। पर्यावरण जागरूकता गीत संगीता मिश्रा और लई मनई साथी से सुनाए।

भैया बहनी देखी अब यह रंभस के हमारा आखिरी गीत रहा, और जे लोग रंभस में पधारे सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जब आकाशवाणी परिवार अपना पचन को बुलावे तो अपना पचे अवबय करी। अब देखी जान ली काल के मौसम के बारे में जनबही, तो मौसम विज्ञान विभाग भोपाल के मौसम विज्ञान केंद्र से रीवा जिला और ओके आसपास के क्षेत्रन के बारे में जौन जनबही मिली है वह या के आसमान में तो देखी छुटपुट बादल छाए रह सका था एकर पूर्वानुमान है, और जौन अधिकतम तापमान है वह 42 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहे के संभावना है। आज तो देखवे भय रहन कि आंधी तूफान एकदम से बिल्कुल आ गया रहा है, तो मौसम का देखत कीन जौन में के तापमान है तो घरे से कम निकली ओकर सुरक्षा बचाव जरूर करी। अब देखी चले के जूना होल लागी तो कागज कलम रखें हो, चले से पहले लिख ली कार्यक्रम के पता चौपाल केर चिट्ठी द्वारा उपनिदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा मध्य प्रदेश, पिन है 48600001। तो यही पता पर रही अपना पंचन के पाती के परिखाओ। अब दई आज्ञा चौपाल के सबे सुनैयन का हमार मनसुख भाई के राम राम जय जवान जय किसान।

0: की घड़ी में 8 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा, भारत नीदरलैंड संबंधों में नया अध्याय पर चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सज्जनहार, जो कि पूर्व राजनयिक हैं। डॉक्टर अशोक, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत धन्यवाद निखिल जी।
2: अशोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नीदरलैंड्स में हैं और बहुत ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड्स में क्या कहा।
4: साथियों, आज का भारत एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आपने हाल में देखा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी और सफल AI समिट भारत ने आयोजित की। उससे पहले G20 की सफल समिट भी भारत ने आयोजित की थी, और ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं था। ये आज के भारत का मिजाज बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम भारत ने चलाया। दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम में से एक भारत ने चलाया। जिस स्केल पर भारत डिजिटलाइजेशन कर रहा है वो अभूतपूर्व है। दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भारत चला रहा है। और हाँ, चांद पर भी भारत वहां पहुंचा जहां पहले कोई नहीं पहुंच पाया था।
2: ऐसे समय में जब तमाम हम चीजें देख रहे हैं, वर्ल्ड में कई सारी चीजें नजर आ रही हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है कितना महत्वपूर्ण है और इसके मायने क्या हैं?
3: विश्व में बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा जो ये वाला जो दशक है शायद ये आपदा का दशक माना जाएगा, डेकेड ऑफ क्राइसिस माना जाएगा, क्योंकि इतने ज्यादा यहाँ पर आपदाएं आई हैं। एक तो पहले कोविड आया, उसके बाद युद्ध आया, और अभी हम देख रहे हैं जो एनर्जी

0: सिक्योरिटी के ऊपर क्या पूरे विश्व में बहुत इसमें तंगी आ रही है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की 5 देशों की यह यात्रा है, 15 मई से 20 मई तक ये हो रही है। कल प्रधानमंत्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अबू धाबी में थे, वहां पर उनके राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। केवल 2.5 घंटे का वहां पर उनका पड़ाव था, परंतु बहुत ही जिसे कहा जाए ठोस बात हुई और अपने संबंधों को बहुत तेजी से आगे लेकर जाया गया। और 4 देश जो हैं वो यूरोप के देश हैं। नीदरलैंड्स पहला पड़ाव है जहां पर कि वो आज हैं और कल यहां से स्वीडन में जाएंगे, फिर स्वीडन के बाद 2 दिन वहां पर रुककर गोटेनबर्ग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग को एड्रेस करेंगे, और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन जो कि मोदरातना पार्टी से हैं उनके साथ उनकी बातचीत होगी। उसके बाद वो नॉर्वे जाएंगे ओस्लो में, जहां पर कि उनकी बातचीत होगी नॉर्वे के प्रधानमंत्री जॉन स्टोर के साथ, और वहां पर भी जैसे नीदरलैंड्स में उनकी मुलाकात हुई है अभी वहां के राजा और रानी के साथ, वहां नॉर्वे में भी वहां भी उनके किंग और क्वीन के साथ उनकी मुलाकात होगी। वहां पर नॉर्डिक समिट भी वहां पर ऑर्गेनाइज करेंगे, और उसके बाद आखिरी पड़ाव होगा उनका इटली में 19 और 20 तारीख को। और सभी जगह जहां जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी अपने द्विपक्षीय संबंधों को तो उसमें और ऊर्जा मिलेगी, परंतु मेरे विचार से एक संदेश पूरे विश्व को भी जाएगा, जो भारत जो बदलता हुआ परिपेक्ष है उसमें बहुत ही एक्टिव है और अपने हितों को आगे ले जाने के लिए बहुत तेजी, बहुत ऊर्जा और बहुत सक्षमता से काम कर रहा है।
1: अशोक जी, आज प्रधानमंत्री ने बोला है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। एक बड़ा स्टेटमेंट है उनका ये। आपको क्या लगता है कि कोविड महामारी और जो जारी संघर्ष है, ऊर्जा संकट जैसी चुनौतियां हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है?
0: देखिए, बहुत ऐसे विषय हैं जिनमें कि हम नीदरलैंड के साथ अपने संबंधों को, सहयोग को बढ़ाते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो। जैसे हमारे सेक्रेटरी वेस्ट ने कल जब उन्होंने इसके ऊपर बातचीत की, जो प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है उसको फोकस कहां पर रहेगा, तो उन्होंने कहा 3 T's पर रहेगा, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टैलेंट, क्योंकि हमारा टैलेंट वहां पर हर यूरोप के देश में जाता है। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने यहां से जाते हुए कही, उन्होंने कहा ये जो सारा उनकी यात्रा हो रही है 4 देशों में, यूरोप के देशों में, वो इंडिया EU फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो कि बिल्कुल ही एक ऐतिहासिक सहयोग जो अग्रीमेंट है, वो इस साल के पहले 26 जनवरी को उसको पूरा किया गया। आपके सभी सुनने वालों को ये मालूम होगा बातचीत की शुरुआत, नेगोशिएशंस की शुरुआत 2007 में हुई थी, तो मतलब 19 साल के बाद इसको हम तोड़ तक पहुंचा पाए हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व में जो बदलाव हो रहा है सबको चाहिए, और यही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भी कहा, जो हमको सप्लाई चेन ऐसी चाहिए जो कि रिलायबल हो, जो कि स्टेबल हो, जो कि ट्रांसपेरेंट हो, और दोनों ये बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। भारत की अर्थव्यवस्था $4 trillion से ऊपर है, यूरोपियन यूनियन के सभी देशों को अगर देखा जाए तो उनकी पूरी अर्थव्यवस्था करीब $20 trillion के आसपास है, तीसरी सबसे विश्व में बड़ी अर्थव्यवस्था है, और जो इनका सहयोग होगा तो इन देशों के लिए बेहतर तो होगा, परंतु पूरे विश्व में व्यापार को स्टेबिलाईज करने में इसका बहुत ही बड़ा योगदान होगा।
1: अशोक जी, अभी आपने 3 T's का जिक्र किया, और यूरोप की जब हम बात करते हैं तो लगातार बदलते हुए व्यापार नियम देखने को मिलते हैं, कार्बन टैक्स, सप्लाई चेन की बात होती है, जलवायु परिवर्तन, जल प्रबंधन, और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की जो भू राजनीतिक चुनौतियां हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी भी चर्चा में एक एजेंडा के केंद्र में रहती हैं। तो भारत और नीदरलैंड्स अपने साझेदारी को ऐसे में किन रणनीतिक स्तर तक ले जा सकते हैं?
0: इंडिया EU फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है, ये उसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है, परंतु हमको ये भी देखना है क्योंकि अगर पर्यावरण की रक्षा करनी है तो हमारे अपने हित में है, और आपने देखा होगा जो चाहे वो SDG 2030 के हो या फिर हमने अपना जो एक कमिटमेंट दिया है कार्बन फ्री, कार्बन न्यूट्रल अपनी इकोनॉमी को बनाएंगे बाय 2070, और हमने बहुत सारे ऐसे मापदंड किए हैं जो कैसे हम ग्रीन एनर्जी 2030 तक हम कैसे अपने 45% एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को हम ग्रीन एनर्जी के द्वारा करेंगे। भारत ने इन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की थी, आपको याद होगा 2015 में जब कॉप पेरिस में हुआ था, तो वो एक क्षेत्र है जिसमें हम आगे चल रहे हैं। दूसरा टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है, ग्रीन एनर्जी का क्षेत्र है, और जो इंडो पैसिफिक है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने अपना एक पोजीशन दिया है इंडो पैसिफिक के ऊपर, जिसमें वो कहते हैं जो हमको फ्री, ओपन, स्टेबल, प्रॉस्परस

0: इंडो पैसिफिक की मांग है उनकी। नेदरलैंड्स तो अपनी गाइडलाइंस उन्होंने दी हैं, इंडिपेंडेंटली दी हैं 2020 में, और भारत का जो स्टांस है वो बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, और इसीलिए उसमें हम उनके साथ सहयोग करते हैं। और टेक्नोलॉजी जहां बात है, स्टार्टअप्स की जहां बात है, भारत बहुत इसमें अग्रणी श्रेणी में आ गया है, बहुत तेजी से इसमें काम कर रहा है। और चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो, चाहे वो UPI हो, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया, जो करीब विश्व में जितना भी ये डीलिंग होती हो कैशलेस ट्रांजैक्शंस की, तो उसमें विश्व में आधे से ज्यादा भारत में होती है हमारे यहाँ। तो हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, और इन सब में जो यूरोपियन देश हैं, ये सब ही बहुत ही अग्रणी श्रेणी में हैं, और इनके साथ काम करके दोनों देशों के हितों को
1: जी
0: बहुत फायदा हो सकता है।
1: अशोक जी, भारत और स्वीडन की अब हम बात करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अगले अपने दौरे में स्वीडन पहुंचेंगे, तो वहां भी साझेदारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की बात जरूर होगी। तो इस यात्रा से क्या चीजें निकल करके आने वाली है, अगर मैं तकनीकी निवेश, रणनीतिक सहयोग और यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों की बात करूं?
0: जहां तक टेक्नोलॉजी है और इनोवेशन है, उसमें तो बिल्कुल सबसे आगे है, अग्रणी है। मैं रक्षा के क्षेत्र में भी वो बहुत आगे है, और अभी हमने ये 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, उसमें
1: जी
0: उनकी जो सबसे बड़ी कंपनी है साब, जो कि ग्रिपन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती है, उनका यहाँ पर अभी पिछले साल इन्वेस्टमेंट हुआ है भारत में, जो कि हमारे रक्षा के संबंधों को बहुत आगे लेकर जाएगा। ग्रीन ट्रांजिशन में भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं स्वीडन के साथ, और इनको आगे और जोर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी जब बातचीत होगी, जैसे मैंने कहा, गोटेनबर्ग में एक समिट को एड्रेस करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन, उसके साथ साथ यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन वो भी वहां पर होंगी, उनसे भी बातचीत होगी। तो जो हमारा India-EU फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है,
1: जी
0: उसको भी आगे कैसे ले जाया जाए, इस क्षेत्र में कैसे आगे ले जाया जाए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। देखिए, ये वाले देश हैं जो नॉर्डिक कंट्रीज, जिन्हें कहा जाता है, पांच देश हैं, आइसलैंड है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है और डेनमार्क है। इनके पास ये छोटे देश हो, उनकी छोटी जनसंख्या हो, छोटा इनका क्षेत्रफल हो, परंतु टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये बिल्कुल ही अग्रणी है। और स्वीडन तो और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो पहला इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ था वो 2018 में स्वीडन ने ऑर्गेनाइज किया था, दूसरा वाला 2022 में डेनमार्क में हुआ था, और अभी जब नॉर्वे में फिर से तीसरा India-EU नॉर्डिक समिट होगा, तो इसमें पांच देश के, जो पांच देश मैंने गिनाए हैं, उन सभी देशों के प्रधानमंत्री वहां पर आएंगे, उनसे बातचीत होगी, और अपने संबंधों को इन सभी क्षेत्रों में
1: जी
0: आगे कैसे और ले जाया जाए और कैसे गहरा किया जाए, उसके ऊपर बातचीत होगी।
1: अशोक जी, बदलती हुई जो हमारी ब्लू इकोनॉमी, जिसमें हम तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समुद्री संसाधनों के इस्तेमाल की बात हो, सस्टेनेबल फिशरीज की हम बात करते हैं, ऑफशोर विंड और ग्रीन शिपिंग, जो कि आज के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में नॉर्वे के साथ हमारी जो साझेदारी बढ़ रही है, उसको और प्रगाढ़ करने में प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, जहां तक आप नॉर्वे की बात करते हैं, और स्वीडन और फिनलैंड भी काफी हद तक उसी क्षेत्र में आते हैं, डेनमार्क भी उसी क्षेत्र में आता है, ये सब देश वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में वो चलते हैं। नॉर्वे में फॉसिल फ्यूल्स, गैस, ऑयल बहुत अधिक मात्रा में है, जो कि उनके नॉर्थ सी से, वहां से ऑफ सी जो उनके एक्सप्लोरेशन है, उससे लेकर उसका वो प्रयोग करते हैं। आपके सुनने वालों को ये मालूम होगा, जो जब रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप ने रूस से तेल लेना, गैस लेना बंद कर दिया था,
1: जी
0: तो तब नॉर्वे और डेनमार्क से बहुत मात्रा में यूरोप के देशों को यह सप्लाई हुआ था, और नॉर्वे में 95% से ज्यादा जो वहां पर वाहन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, मतलब वहां पर फॉसिल फ्यूल के से नहीं चलते हैं।
1: जी
0: और इसीलिए जब हम भी अपनी एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लू इकोनॉमी की आपने बात की है, और ब्लू इकोनॉमी में भी नॉर्वे बहुत ही अग्रणी है। फिशरीज में वो बहुत ही उसको माहिरता हासिल है। हमारे अपने क्षेत्र में तो हम, जिसे कहा जाए, पायरेसी है, मरीन डोमेन अवेयरनेस है, साउथ चाइना सी में है, जिसमें हम क्वाड के माध्यम से हम सहयोग करते हैं और देशों के साथ। तो ये इन देशों के साथ भी उन्होंने कैसे इस दिशा में उन्होंने कैसे प्रगति की है, उसको हम देख सकते हैं, उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। जब हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, तो हमारे लिए वाटर सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण हो
1: बिल्कुल
0: जाता है, और वाटर के मामले में चाहे

0: नेदरलैंड्स हो, नॉर्वे हो, फिनलैंड, ये सभी देश, स्वीडन हो, इन्होंने बहुत ही अच्छी प्रगति की है जिनके साथ हम बड़ा अच्छा अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं।
1: जी अशोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के अंतिम चरण में इटली पहुंचेंगे और इटली के साथ हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको नई गति मिली है हाल के वर्षों में। तो ऐसे में शिप बिल्डिंग की बात हो, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, या फिर इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे क्षेत्रों में काम करने की बात हो, तो इटली के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे पूछूं तो इस दौरे का प्रधानमंत्री का क्या महत्व है?
0: जी, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर हम 2023 में, क्योंकि जॉर्जिया मलोनी वहां की प्रधानमंत्री हैं,
1: जी
0: उनके साथ बड़े अच्छे संबंध हैं प्रधानमंत्री मोदी के, अगर देखा जाए 2023 से लेकर अभी तक 2026 तक 3 सालों में दोनों प्रधानमंत्री करीब 7 बारी एक दूसरे से मिल चुके हैं।
1: जी
0: प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल में 3 बारी वहां पर गए हैं, परंतु ये पहली बार उनका द्विपक्षीय वहां पर दौरा है, तो इसीलिए इसके ऊपर भारत और इटली के सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि इटली सबसे एक बड़ी अर्थव्यवस्था है यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी इससे बड़े होंगे, परंतु इटली भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है, उससे हमारा सहयोग बड़ा अच्छा होता जा रहा है। अगर आप देखें यूरोपियन पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए 2024 में, तो वहां पर जर्मनी की पार्टीज हैं, फ्रांस की पार्टीज हैं, वो इतना अच्छा नहीं कर पाई, परंतु जॉर्जो मेलोनी की जो पार्टी है उन्होंने बड़ा अच्छा किया है, तो उनकी शक्ति जो है यूरोप में वो काफी बड़ी है, और भारत और इटली के बीच में, चाहे वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात,
1: जी
0: तो उसमें भी प्रधानमंत्री मेलोनी बहुत ही एक्टिवली एंगेज्ड हैं, क्योंकि जो इटली के यहाँ पर मैरिटाइम एरियाज हैं, वेनिस है, जेनोवा है, फ्लोरेंस है, बहुत ही ये महत्वपूर्ण इसमें काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री की यात्रा हमारे दोनों देशों के संबंधों को और यूरोप और भारत के संबंधों को आगे ले जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगी।
1: अशोक जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद निखिल जी।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में गीत। इसमें बहुत सारी आवाजें हैं, इसमें आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं, और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गाना है, आरडी बर्मन का संगीत है, और ये फिल्म का नाम है कालिया। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने आशा भोसले, और दूसरी आवाज़ है इसमें आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफ़ी, नहीं शब्बीर कुमार की आवाज़ है। फिल्म का नाम है आग ही आग, फिल्म का नाम आग ही आग, और अनजान ने इस गाने को लिखा है। बप्पी लहरी का संगीत है, सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म नागिन से। आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं। फरमा मलिक ने इस गाने को लिखा है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं नीरज का लिखा हुआ गाना, रोशन का संगीत, फिल्म का नाम नई उम्र की नई फसल, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की।

और अगला गाना लिया है हमने, एक बहुत ही खूबसूरत गाना है जिसको आखिरी ख़त से हमने लिया है। गीत लिखा है कैफ़ी आज़मी ने, खय्याम ने इसको संगीत से सजाया है। आखिरी ख़त फिल्म का नाम है, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है।

ये गाना था आए दिन बहार के आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बेटी बेटे का एक गाना। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत है, आवाज़ एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी की। यह है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, और थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: भारत के संविधान की प्रस्तावना।
1: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की

0: एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे भारत के संविधान की प्रस्तावना।

0: एक आवाज जिसने बदल दिया वक्त का सफर, एक सुर जिसने जोड़े हर दिल से रिश्ते, और अब पूरा कर चुका है अपना गौरवशाली 90 साल का सफर। हाँ श्रोताओं, यह है आपका अपना आकाशवाणी। 90 वर्षों से हर दिल की आवाज।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को हैं और ये समय होता है समाचार संध्या का, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। तो कृपया प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
3: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात

0: मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्रपत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष

0: रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
1: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा एक में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश

का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के शाह विलियम अलेक्जेंडर और मलका मैक्सिमा से मुलाकात की। जनाब मोदी नीदरलैंड्स के वजीर आजम रॉब जेटन के साथ बाहमी बातचीत करने वाले हैं। उम्मीद है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस दौरे से भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान वसीतर ताल्लुकात उस्तवार होंगे। हाल ही में भारत और यूरोप के दरमियान आजाद तिजारत का समझौता भी हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान तैयार करने वाली कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक और नीदरलैंड्स सेमीकंडक्टर साजो सामान तैयार करने वाली अहम कंपनी एएसएमएल ने भारत में चिप तैयार करने के सिलसिले में इश्तराक का ऐलान किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड्स के दौरे के दौरान इस मुआहदे का ऐलान किया गया। एएसएमएल लिथोग्राफी इक्विपमेंट के जुमरे में इजारादारी रखती है, जो छोटे साइज के जदीद सेमीकंडक्टर की तैयारी में अहमियत का हामिल है। ये इश्तराक भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान कलीदी शराकतदारी को मुस्तहकम करने की समत एक अहम कदम है, जिनमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी समेत अहम टेक्नोलॉजी शामिल हैं। एएसएमएल के सदर और सीईओ क्रिस्टोफे फोके ने कहा कि भारत के तेजी से वसत पा रहे सेमीकंडक्टर के शोबे से कई अहम मौके नुमाया हो रहे हैं और वो खित्ते में तवील मुद्दती शराकतदारी कायम करने के लिए पुरअज़्म हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने गुजरात के दौरे के दौरान जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने सीनियर अहदेदारान के साथ अहमदाबाद और गांधीनगर में कई मीटिंगें की और शहरी बुनियादी ढांचे से मुतालिक प्रोजेक्टों और उनसे वाबस्ता कामकाज का जायजा लिया। जुनूब मगरबी जोन के दफ्तर में जनाब शाह ने गांधीनगर लोकसभा हल्के की जानिब से अंजाम दिए जा रहे तरक्याती कामों और पौधे लगाने के काम का जायजा लिया। उन्होंने सरखेज गांधीनगर कॉरिडोर की जदीदकारी और घाट लोदिया गोटा चांद लोदिया थलतीज समेत झीलों के इलाकों को एक दूसरे से मरबूत करने के सिलसिले में अहदेदारान के साथ तबादला ख्याल भी किया और इन कामों में तेजी लाने की हिदायत दी। जनाब शाह ने गांधीनगर लोकसभा हल्के से नौ मुंतखबा 70 म्यूनिसिपल काउंसिलों से भी मुलाकात की। महाराष्ट्र में आज पुलिस के सुप्रिंटेंडेंट एम नरेश ने कहा है कि ऑपरेशन अंतिम प्रहार के नाम से नक्सल मुखालिफ मुहिम के तहत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 दीगर के खुद सुपुर्दगी किए जाने के बाद गढ़चिरौली जिले से नक्सलियों का खात्मा हो गया है। मीडिया को तफसील बताते हुए जनाब नरेश ने कहा कि गिरफ्तार किए गए नक्सलियों पर मजमुई तौर पर 64 लाख रूपये का इनाम था। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने उनके पास से हथियारों समेत 65 लाख रूपये नकद भी जब्त किए। उन्होंने कहा कि डिविजनल कमेटियों के अरकान समेत 5 नक्सलियों ने गढ़चिरौली पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी की। उन पर कुल 38 लाख रूपये का इनाम था। इस दौरान पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ने वजाहत की कि हालांकि गढ़चिरौली से सरगर्म नक्सली खत्म हो गए हैं, लेकिन नक्सली सोच मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई है। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक केस में बायोलॉजी के सवालात लीक करने से वाबस्ता एक सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मनीषा गुरुनाथ मंधारे नाम की यह मुलजिम महाराष्ट्र में पुणे की एक सीनियर बॉटनी टीचर है। सीबीआई के मुताबिक वो नीट यूजी 2026 के इम्तिहान के अमल में शामिल थी और इम्तिहानात के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने उसे एक माहिर के तौर पर मुकर्रर किया था। सीबीआई ने कहा है कि उसने पुणे की मनीषा वाघमारी के जरिए नीट इम्तिहान के मुमकिन उम्मीदवारों को यकजा किया था और पुणे की अपनी रिहायशगाह पर इन तलबा के लिए खसूसी कोचिंग क्लासेस का एहतमाम किया था। उसे इस महीने की 14 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। अब तक इस केस के सिलसिले में दिल्ली जयपुर गुरुग्राम नासिक पुणे और अहल्यानगर से 9 मुलजिमों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 5 मुलजिमों को अदालत में पेश किया गया और तफसीली पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस तहवील और रिमांड पर भेज दिया गया। जिन दीगर 2 मुलजिमों को कल गिरफ्तार किया गया था उन्हें भी पुणे की अदालत में पेश किया गया और राहदारी रिमांड हासिल करके उन्हें दिल्ली ले जाया गया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सीबीआई ने मुल्क में 6 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई भी की है। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस में मुबैना बड़े मुलजिम पीवी कुलकर्णी और एक और मुलजिम मनीषा वाघमारे को 10 दिन के लिए सीबीआई की तहवील में भेज दिया है। खसूसी सीबीआई जज अजय गुप्ता ने इन दोनों को सीबीआई की तहवील में दे दिया है। इससे कबल जांच एजेंसी ने यह दलील पेश की थी कि मजीद छानबीन और वसीतर साजिश का पता लगाने के लिए इन दोनों को कौमी राजधानी से बाहर ले जाने की जरूरत है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने इस साल 1 जुलाई से 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए 3 जबानों के पढ़ने को लाजमी करार दे दिया है। बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 और स्कूली तालीम 2023 से मुतालिक निसाब के कौमी तरीक़ेकार से मुताबकत रखते हुए 3 में से कम अज़ कम 2 मकामी जबानें होनी चाहिए। सीबीएसई ने वजाहत की है कि 10वीं जमात में तीसरी जबान के लिए कोई बोर्ड इम्तिहान नहीं होगा और उसने मजीद कहा कि R3 के लिए सभी जायजे का अमल मुकम्मल तौर पर स्कूल पर मबनी और दाखिले होगा। बोर्ड ने कहा कि R3 में तलबा की कारकर्दगी CBSE सर्टिफिकेट में मजकूर होगी। CBSE ने यह भी इतला दी कि R3 की वजह से किसी भी तालिब इल्म को 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान देने से रोका नहीं जाएगा। स्कूली तालीम और खानदगी महकमे ने मुल्क में बीच ही में बच्चों के पढ़ाई छोड़ने या स्कूल न जाने के मामले पर तबादला ख्याल के लिए आज एक मीटिंग तलब की, जिसमें खासतौर पर 14 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र के बच्चों के ताल्लुक से इस तरह के रुझान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS की मुजवजा नई पहल के लिए अमल दरामद से मुतालिक हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। स्कूली तालीम और खानदगी महकमे के सेक्रेटरी संजय कुमार की सदारत में ये मीटिंग हुई। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: स्कूली तालीम और ख्वानदगी की महकमे के सेक्रेटरी संजय कुमार ने मीटिंग के दौरान बताया कि दस्तियाब आदद शुमार के मुताबिक पहली क्लास में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से सिर्फ 62 12वीं क्लास तक पहुंचते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 14 से लेकर 18 साल तक की उम्र के 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे सरे 10 स्कूल नहीं जा रहे हैं। सेक्रेटरी मौसूफ ने कहा कि इक्तसादी मुश्किलात, घरेलू जिम्मेदारियां और रोजी रोटी से मुतालिक चैलेंज उन बड़ी वजूहात में शामिल हैं जिनकी वजह से बच्चों को तालीमी निजाम बीच में ही छोड़कर अलग होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि असल तवज्जो बच्चों को बाजाब्ता स्कूलिंग में फिर शामिल करने पर होनी चाहिए और जो रेगुलर स्कूल वापस नहीं आ सकते उनके लिए सीखने के मुतबादिल होने चाहिए जिनमें NIOS और स्टेट ओपन स्कूल शामिल हैं। फौरी इकदाम की जरूरत पर जोर देते हुए जनाब कुमार ने कहा कि कम अज कम सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सतह तक हर बच्चे को तालीम तक रसाई होनी चाहिए जो मकामी इकतसादी मौाक़े के मुताबिक रोजगार मिलने के हुनर से हम आहंग हो। नई दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: भारत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे के तहत गैर कानूनी तौर पर तश्कील दी गई सालिसी की अदालत की जानिब से दिए गए ताजा फैसले को मुस्तरद कर दिया है और इसे बिला जवाब करार दिया है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि नाम निहाद सालिसी अदालत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे की अमूमी तशरीह के मामलों पर फैसला सुनाया था और साथ ही उन्होंने ये बात दोहराई कि भारत मजकूरा सालिसी इदारे को कानूनी एतबार से दुरुस्त तस्लीम नहीं करता। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे को मअतली की हालत में रखने के भारत के फैसले में कोई तब्दीली नहीं आई है। भारत और पाकिस्तान ने सितंबर 1960 में दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे पर दस्तखत किए थे जो दरियाए सिंध के पानी में हिस्सेदारी और इसके इस्तेमाल से मुतालिक था। पिछले साल पहलगाम में दहशतगर्दों के हमले के बाद भारत ने मजकूरा मुआहदे को मअतली की हालत में रखने का फैसला किया था और ये कहा था कि ये कदम बैन अल-अक़वामी कानून के तहत उसके इक़्तदार आला के हकूक़ के ऐन मुताबिक है और ऐसा उस वक्त तक नाफिज रहेगा जब तक कि पाकिस्तान सरहद पार से फैलाई जाने वाली दहशतगर्दी के लिए मदद व एआनत बंद नहीं कर देता। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कल के लिए अंडमान और निकोबार जजायर जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और शिमाल मशरक के हिस्सों में भी कल इसी तरह का मौसम रहेगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अगले हफ्ते बीजिंग के अपने 2 दिन के दौरे में चीन के रहनुमा शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। एक बयान में क्रेमलिन ने कहा है कि सदर पुतिन इस महीने की 19 और 20 तारीख को यह दौरा करेंगे और ये चीन और रूस के दरमियान 2001 के दोस्ती के मुआहदे के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर हो रहा है। इसराइल का कहना है कि उसने हमास के मिलिट्री विंग के लीडर इज़ुद्दीन अल हद्दाद को हलाक कर दिया है, जिसका 7 अक्टूबर 2023 के हमलों में अहम रोल था, जिसके बाद गजा में जंग शुरू हो गई थी। इसराइली फौज ने बताया कि

0: हद्दाद कल गजा शहर में एक फिजाई हमले में मारा गया। फौज ने बताया कि वह हमास की मिलिट्री क्यादत में आखिरी सीनियर कमांडर था, जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास की जानिब से किए जाने वाले हमलों में कलीदी रोल अदा किया था। गांधीनगर में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की संजना ने खवातीन के 77 किलोग्राम के जुमरे में कांसे के 3 तमगे जीते। संजना ने स्नैच जुमरे में 96 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क जुमरे में 124 किलोग्राम का वजन उठाया और मजमूई तौर पर 220 किलोग्राम का वजन उठाकर कांसे के 3 तमगे हासिल किए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज बैंकॉक में मलेशिया के गो सी जिफई और नूर इजुद्दीन को सेमीफाइनल में 19-21, 22-20 और 21-16 से हराकर मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। कल फाइनल में भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी से होगा। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स भरोसेमंद और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निजाम कायम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वजीर अजम ने 21वीं सदी में भारत को मौकों की सरजमीन करार दिया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की कंपनी एएसएमएल ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर दस्तखत किए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस के बड़े मुलजिम पीबी कुलकर्णी और साथी मुलजिम मनीषा वाघमारे को 10 दिन के लिए सीबीआई तहवील में भेज दिया है। भारत ने दरिया सिंह से मुतालिक आबी मुहदे पर सालिसी अदालत के फैसले को गैर कानूनी करार देकर इसे मुस्तरद कर दिया है। और गांधीनगर में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में खवातीन के 77 किलोग्राम जुमरे में भारत की संजना ने कांसे के 3 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
2: Count, camera.

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: तारंगा तेरी याद में।
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजातरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जी.डी. माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकोड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाई चाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 M.V. रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म A.V. मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब यहाँ जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म S.M. श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: खबर है।
1: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिलेक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था।
2: दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है।
1: इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी।
2: तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा।
1: फिल्म दो कलिया एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
3: चल चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी।
1: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी। दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जे ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

0: क्योंकि जिक्र केएस सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली।
1: जूली, आई लव यू।
0: सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन 1967 में आई मलयालम फिल्म कुचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजु का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता के अभिनय वाली फिल्म फर्क।
2: मस्त

फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाईच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक दूजे के लिए।

0: सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगागारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राजखोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक थी।

0: क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
2: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं, और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक।

0: माँ है।
1: मेरे पास माँ है।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटनीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।
2: तू न रोना के तू है।

मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख से

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपनी बेटी से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: पर माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के सैफाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे परवाना आजादी से उनकी मौत चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हें मुझे छोड़ के जा रहे हो?
2: विजय, बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।

फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है, एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है, नए सिरे से अपनी पहचान बनाती है। सन 2018 में आई बधाई हो, इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक

0: 90 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है, वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमी पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं।
0: फिल्म एबीसीडी 2।

0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में मां का किरदार।
1: मेरे पास मां है,
0: ये था लघु रूपक मेरे पास मां है, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

0: संगीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।

0: ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश।
1: दर आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
2: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं। क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक

0: लिख रहा माया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो LB लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नयन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: ओहो,
0: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नयन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नयन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता। मैंने मेरे हाथ में किधर है
1: जी।
0: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।

0: मुझे खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा, और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और मैं चला रहा हूं, और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना, मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे, मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है।

0: पहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग। स्मृति शेष। एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका

0: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। पंडित कैवल्य कुमार गुरव सुप्रसिद्ध संगीत तज्ञ पंडित संगमेश्वर गुरव के सुपुत्र है। उन्होंने अपने संगीत की शुरुआत 15 वर्ष की आयु में मराठी नाट्य संगीत से किया। इसके उपरांत उन्होंने ख्याल गायकी के ओर रुख किया और अपने पिता एवं गुरु पंडित संगमेश्वर गुरु के मार्गदर्शन तथा वर्षों की कठिन एवं निरंतर साधना के माध्यम से किराना घराने की परंपरा को आत्मसात किया। उनकी संगीत साधना केवल एक घराने तक सीमित नहीं रही, उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा कर विभिन्न घरानों की शैली, तकनीक और भावधारा का गहन अध्ययन किया तथा उसे अपने गायन में सफलतापूर्वक समाहित किया। उनकी इसी विशिष्ट साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें 32 वर्ष की आयु में भारत सरकार द्वारा टॉप ग्रेड कलाकार का सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बीकॉम, संगीत में बीए तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से संगीत में एमए स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त किया है और आपको कर्नाटक सरकार का राज्य पुरस्कार, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी राष्ट्रीय सम्मान ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप देश और विदेश में कई प्रमुख मंचों पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित कैवल्य कुमार गुरव। पंडित कैवल्य कुमार गुरव इज अ रिनाउंड म्यूजिशियन एंड डिसाइपल ऑफ पंडित संगमेश्वर गुरव। ही स्टार्टेड हिज म्यूजिकल जर्नी एट द एज ऑफ 15 विद मराठी नाट्य संगीत। After that, he turned towards khayal singing and through the guidance of his father and guru, Pandit Sangameshwar Gurav, absorbed the traditions of Kirana Gharana through rigorous practice and dedication. His musical practice was not limited to just one gharana. He travelled across India, deeply studying the styles, techniques and emotional expressions of various gharanas and successfully incorporated them into his singing. As a result of this exceptional dedication, he was honored with the title of Top Grade Artist by the Government of India at the age of just 32. Pandit Kaivalya Kumar Gurav has performed his music not only across India but also in many countries around the world. He has been awarded an honorary doctorate by Sorbonne University, Paris of France. Dr. Kaivalya Kumar Gurav has been honored with more than 200 awards worldwide.
0: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित जडेश होगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे हैं। पंडित कैवल्य कुमार गुरव अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग दुर्गा से कर रहे हैं। इसमें तीन रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल, रस कानारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पिया से। उसके बाद द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर। आइए सुनते हैं राग दुर्गा।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित जडेश हुगार एंड ऑन द हारमोनियम बाय डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी। पंडित कैवल्य कुमार गुरव बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विथ राग दुर्गा, रूपक ताल, रस कान्हारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पियासे, द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग दुर्गा। पंडित कैवल्य कुमार गौरव जी अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग आभोगी। इसमें दो रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।
1: दैट वॉज राग दुर्गा। नाउ यू विल लिसन टू राग अभोगी। रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित जडेश हुगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया गया।
1: That was Raag Abhogi. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to a vocal recital by Pandit Kaivalya Kumar Gurav. He was accompanied on the tabla by Pandit Jadesh Hugar and on the harmonium by Dr. Sudhamshu Kulkarni. This program was recorded earlier in the studios of Akashwani Dharwad and relayed from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसे महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts, and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21st sadi ka Bharat avsaron ki bhoomi hai. Bharat technology driven bhi hai aur humanity driven bhi hai. Bharat jitna ancient hai utna hi modern ban raha hai. और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा
3: Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he is attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praised the contribution of the Indian diaspora. Later, Prime Minister Narendra Modi met King Willem-Alexander and Queen Maxima of Netherlands during the second leg of his five-nation visit. Prime Minister Narendra Modi was today presented with the historic 11th century Chola copper plates by authorities of Leiden University during his official visit to the Netherlands. The return of the priceless artifacts marks a landmark moment in India-Netherlands cultural cooperation and heritage restitution. The Prime Minister reached the Netherlands last night on the second leg of his five-nation tour. After concluding his visit to the Netherlands, Mr. Modi will travel to Sweden tomorrow. India and Sweden share a legacy of

0: to CBI custody for 10 days. Special CBI Judge Ajay Gupta ordered the remand after the probe agency submitted that the DO needed to be taken outside the national capital for further investigation and that the larger conspiracy had to be investigated. In IPL cricket, chasing a target of 248 runs, Gujarat Titans were 177 for 1 in 16 overs against Kolkata Knight Riders in Kolkata when reports last came in. Put into bat first, Kolkata Knight Riders posted 245 for 2 in the stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:10 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल सादी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर इसी मीटर बैंड पर हम फिर हाजिर होंगे। तो अब इजाजत दीजिए जावेद खान को। जय हिंद।